आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है और इस महीने की 17 तारीख तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अभियान 2022 में शुरू हुआ था और अब एक बड़े जनभागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से

0: भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वो अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाया, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूँ चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
0: श्री मोदी ने कल अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और सेकंड लेडी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर बधाई देते हुए शुभकामनाएं भी व्यक्त की। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कल आबिदजान में कोटी डी आइवर के राष्ट्रपति अलासानी उटारा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और कोटी डी आइवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह पुदुचेरी के गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। दोपहर में श्री शाह मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री शाह दो दिन के दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे थे। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति दर्शाता है। झारखंड में JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध के सिलसिले में आज राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच अगले दौर की वार्ता होगी। झारखंड सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी जारी किया है। इसके माध्यम से छात्र और सभी संबंधित पक्ष अपने सुझाव भेज सकते हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 1,47,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। सरकार ने बताया है कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। उधर जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा से जुड़े मार्गों की मरम्मत और प्रतिकूल मौसम को देखते हुए इस यात्रा को आज से बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से स्थगित कर दिया गया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में आज भारत की अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। ये मुकाबला दक्षिण कोरिया के आसन में भारतीय समय अनुसार सुबह 7:30 बजे से खेला जाएगा। अश्मिता ने कल सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं क्यू हान ने दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की जी किम को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: Good morning. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi and US Vice President J.D. Vance discussed ways to further deepen India-US comprehensive global strategic partnership across key areas. Mr. Modi received a phone call from Vice President Vance yesterday. In a social media post, Mr. Modi said they noted the sustained momentum in the high-level engagements and reaffirmed their commitment to further strengthening cooperation in trade, defence, critical and emerging technologies, energy security and critical minerals. Both the leaders also exchanged views on regional and global development.

0: தீரை இசை நிகழ்ச்சி நிறைவுற்றது. தொடர்வது ஆர் சவேரே டெல்லியிலஞ்சல்.
1: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे.

हमारा तिरंगा हमारे अतीत के गौरव को, हमारे वर्तमान की कर्तव्य निष्ठा को और भविष्य के सपनों का भी एक प्रतिबिंब है।

0: सुप्रभात, आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूं आपके साथ फरहतनाज और मेरे साथ हैं सायरा मुश्तबा। आज पूरा हिंदुस्तान एक ही रंग में रंगा है, केसर सफेद और हरा रंग, क्योंकि आज से शुरू हो रहा है हर घर तिरंगा अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जुलाई 2022 को इस अभियान की शुरुआत की थी और तब से ये दिन हर वर्ष मनाया जाने लगा।
1: नमस्कार आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस वेरी वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ आज सवेरे एंड स्पेशल ऑफ कोर्स

0: Because from today, the Har Ghar Tiranga campaign is starting. And this year, Farhat, it's even more special because we all know that Vande Mataram, our national song, has completed 150 years. So obviously, everywhere where the Tiranga would be unfurled, it will be accompanied by our national song, Vande Mataram.
1: जी, और बिल्कुल, तिरंगा सिर्फ एक झंडा ही नहीं, ये हमारे शहीदों का सम्मान है, हमारी पहचान है, और शायद इसीलिए वतन पर मिटने वालों के लिए फिराक गोरखपुरी ने लिखा था, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने में नामे आजादी.
0: क्या बात है, एंड दैट्स वेरी ट्रू, बिकॉज यू नो फरहत, समटाइम्स व्हेन वी आर लिविंग इन आवर ओन कंट्री, देन वी गेट यूज्ड टू सीइंग द नेशनल फ्लैग एवरीवेयर, बट द मोमेंट वी स्टेप आउट ऑफ आवर कंट्री, और कहीं भी हम लोग को अपना फ्लैग दिखता है, कहीं भी हम लोग को हिंदी सुनाई देती है, अपनी लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज आप बोलते हैं वो सुनाई देती है, देन इट जस्ट फिल्स अप योर हार्ट विद सो मच ऑफ जॉय एंड प्राइड, एंड दैट इज व्हेन यू रियलाइज दैट इंडीड इट्स नॉट जस्ट अ फ्लैग, एज यू राइटली सेड, इट इज आवर identity. So on that note, Farhat, let's start today's Aaj Savere, where we bring an amalgamation of news, and of course, since you know, this is the first show, news magazine of the day, so hum log jo hai aapke apne shaharon ki bhi khabar de denge taki aapko pata ho ki ha hamare shahar mein aajkal kya chal raha hai in our metro news section. And yes, the last section for which every listener and even we wait for is when we pay tributes to some of the personalities who either have their birthdays or birth anniversaries.
1: हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ी खबर से इसके बारे में और हम अपने श्रोताओं को बता देते हैं कि इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ ही मनाया जा रहा है. 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भी मनाया जाएगा. दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी इस अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित करेंगे. इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी. इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे. ये रिले 15 अगस्त को फिजी के शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा और ये अभियान चलेगा 17 तारीख तक.
0: That's right. And Prime Minister Narendra Modi received a phone call from US Vice President J.D. Vance yesterday. In a social media post, Mr. Modi said, they discussed ways to further deepen India-US comprehensive global strategic partnership across key areas. They noted the sustained momentum in the high-level engagements and reaffirmed their commitment to further strengthening cooperation in trade, defense, critical and emerging technologies, energy security and critical minerals. Both the leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest.
1: और सर, आपको बता दें कि भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी हासिल की है. देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है. श्री जोशी ने यह भी कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति को दर्शाता है.
0: The centre has notified the appointment of 30 judges for High Courts of Madras, Calcutta, Madhya Pradesh and Karnataka, with Madras High Court receiving the largest share of new appointees. According to a notification issued by the Ministry of Law and Justice, the appointments include 20 advocates and 10 judicial officers. Of the total, 15 judges have been appointed to the Madras High Court, 8 to the Calcutta High Court, 6 to the Karnataka High Court and 1 to the Madhya Pradesh High Court.
1: जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुई बारिश के कारण पहलगाम और बालटल दोनों मार्गों पर अमरनाथ यात्रा आज से स्थगित कर दी गई है. मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए यात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है. कल जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से किसी भी नए यात्रा जत्थे को रवाना नहीं किया गया.
0: The flood situation in Assam remained grim, with the toll reaching 99 as one more death was reported and over 1.47 lakh people are still affected. The Assam Disaster Management Authority bulletin said the latest fatality was reported from Golaghat district. Bulletin said that 12 districts of Shonitpur, Nagaon, Golaghat, Shivasagar, Hojai, Darang, Jorhat, Dhemaji, Charaideo, Korbi, Onglong, Lakhimpur and Bishwanath remained affected by the deluge. The state administration is operating 53 relief camps, sheltering more than 8,000 displaced people. Another 41 relief distribution centers are also functional.
1: और सारा, वहीं मौसम विभाग ने भी आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश पूर्वोत्तर क्षेत्र में आज तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है. वहीं जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी

0: और कराईकल में भी आज तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। कल नई दिल्ली में तेज बारिश हुई और आज भी राष्ट्रीय राजधानी में बारिश की संभावना व्यक्त की गई है।
1: The United States is considering ending a provision that gives certain foreign workers up to 60 days to find a new job after losing their employment. The proposal is currently under review by the White House Office of Management and Budget and has not yet become a rule.

0: healthy only if people cooperate with the government's efforts. And Farhat, I think this holds true not just for Hyderabad. I think monsoons to pure desh mein aaye hue hain. So it's very important that all of us probably take care ki kahin bhi pani jo jama na ho, you know, because this is the season where infections and viruses, they are in abundance. So one has to be very, very careful. So Farhat, this was the buzz that I had from these three cities of Chennai, Bengaluru and Hyderabad. What is the latest you have from Mumbai, Delhi and Kolkata?
1: जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली सरकार के सभी 13 जिलों में बाल भिक्षुक मुक्त दिल्ली चाइल्ड बेगर फ्री अभियान शुरू करने जा रही है और इस अभियान का उद्देश्य है भीख मांगते पाए जाने वाले बच्चों की सुरक्षा करना और उनके भविष्य को सुरक्षित करना। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने भी बताया कि यह अभियान उन संगठित गिरोहों की भी पहचान करेगा और उनका पर्दाफाश करेगा जो बच्चों को भीख मांगने के लिए मजबूर करते हैं। और स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतर्गत प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय कल से 12 अगस्त तक वंदे मातरम अ टाइमलेस ट्रिब्यूट टू द मदरलैंड कार्यक्रम आयोजित करेगा। वंदे मातरम पर कल विशेष प्रदर्शनी शुरू हुई है जिसमें दुर्लभ दस्तावेज और तस्वीरें भी प्रदर्शित की गई। आज बहुभाषी सुलेख प्रदर्शन और 11 अगस्त को दिल्ली एनसीआर के करीब 20 विद्यालयों के बीच समूह गायन प्रतियोगिता होगी। कार्यक्रम का समापन 12 अगस्त को विजेता स्कूल, संग्रहालय के अधिकारियों और CISF बैंड द्वारा सामूहिक गायन के साथ होगा और यह आयोजन वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने और स्वतंत्रता संग्राम में इसके योगदान को समर्पित है। और अब मुंबई का रुख कर लेते हैं। मुंबई के यशवंत राव चौहान केंद्र में कल आयोजित वान रंग कार्यक्रम को भरपूर उत्साह मिला जिसमें स्कूली और कॉलेज के छात्रों ने वारली और गोंड कला पर कार्यशालाओं में भाग लिया। वारली कला कार्यशाला में छात्रों को रचना, प्रतीकवाद, गति और कहानी कहने का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हुआ। और बात अब पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार आज भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ शहर के दो स्थानों पर आधिकारिक राजकीय समारोह के माध्यम से मनाएगी। पहला समारोह राइटर्स बिल्डिंग पोकमेंट में होगा सुबह 11:30 बजे से और इसके बाद दूसरा समारोह होगा कोलकाता मैदान में मातंगिनी हाजरा प्रतिमा के आधार पर 11:45 पर। सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों और पर्यटन विभागों के माननीय राज्य मंत्री श्रीमती पूर्णिमा चक्रवर्ती राज्य सरकार की ओर से दोनों आधिकारिक कार्यक्रमों में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और अब आइए महानगरों के मौसम का हाल जान लेते हैं। तो सबसे पहले सारा, हमने शुरुआत में बता ही दिया है कि राजधानी दिल्ली में आज भी बारिश हो सकती है, लेकिन आइए तापमान के बारे में हम अपने श्रोताओं को बता देते हैं। न्यूनतम तापमान रहेगा 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में भी बारिश का दौर रहेगा। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान लगभग 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।
0: सो फरहत, अब तो सावन का महीना शुरू हो गया है, तो अब नहीं तो कब होगी बारिश? आई थिंक एंटायर कंट्री इज यू नो हैविंग रेन्स एंड ऑलमोस्ट सिमिलर वेदर एंड चेन्नई विल ऑफ कोर्स विल हैव सम रेन टुडे एंड द स्काई वुड रिमेन जनरली क्लाउडी थ्रू आउट द डे। टेम्परेचर्स आर एक्सपेक्टेड टू रेंज फ्रॉम 27 to 36 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द डे एंड इट्स गोइंग टू बी क्वाइट humid also in Chennai. Bengaluru looks a bit more pleasant with a generally cloudy sky with light rain or drizzle. Temperatures likely to stay between 20 and 29 degrees Celsius. While Hyderabad will have rain, thunder showers, even a dust storm is expected there. Temperatures will likely range between 24 and 31 degrees Celsius. So it's set to be another warm day there as well, but with some light showers. And now when we come to that section, when we remember some of the important days that happened, important events that happened on this day. So let's take our listeners to the year 1173. Way back then on this day, construction started on the Leaning Tower of Pisa. Also on this day in 1810, Napoleon annexed Westphalia as part of the first French Empire. In 1831, the first US steam engine train ran from Albany in New York. And in 1898, Rudolf Diesel of Germany obtained the patent for his internal combustion engine that was later known as the diesel engine.
1: और सारा 1925 में आज ही के दिन काकोरी कांड की घटना जो है वो घटित हुई थी।
0: That's right. Government treasury from the postal train was looted near काकोरी station. तो इसके बाद जो है काकोरी बहुत ज्यादा नुमाया हो गया। ऑफकोर्स अगर आप लखनऊ और अवध वालों से पूछे तो काकोरी के कबाब भी बहुत मशहूर है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द काकोरी कांड एज इट केम टू बी नोन इन द एनल्स ऑफ हिस्ट्री दैट हैपेंड टुडे। एंड काकोरी इज अ स्मॉल टाउन दैट इज अराउंड 22

0: kilometers away from Lucknow, and the loot was actually by the members of Hindustan Socialist Republic Association. Also on this day, 1942, the August Kranti Divas that commemorated the mass civil disobedience movement against British rule in India was observed.
1: और 1945 में आज ही के दिन अमेरिका ने जापान के नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया था.
0: Yes, indeed, a very sad day, and in fact, a day that should not be forgotten in history, because agar hum log bhool jate hain, to hum log dohrate hain itihas ko. But we should remember that on this day in 1945, a US B-29 bomber dropped an atomic bomb on Nagasaki, Japan, jiske aaj tak uske jo effects
1: hain, wo dekhne ko mil jata hai.
0: Yes, absolutely. Also on this day in 1966, the heroes of the 1942 Quit India movement, they were officially honored at a special public rally that was held at the historic Red Fort.
1: सन 2007 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मरम्मत के महत्वपूर्ण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों की टीम लेकर अंतरिक्ष यान एंडेवर ने अपने अभियान पर निकला. और इसके अलावा सन 2012 में भारतीय सेना ने परमाणु हमला करने में सक्षम अग्नि 2 बैलिस्टिक मिसाइल का आज ही के दिन सफल परीक्षण किया था.
0: And now, Farhat, when we remember some of the personalities who either have their birthdays, birth anniversaries or death anniversaries, toh is fehrist mein sabse pehla naam mere paas hai Acharya Shiv Pujan Sahai ka. It's his birth anniversary, a very noted Hindi and Bhojpuri novelist, editor and prose writer. He contributed in pioneering modern trends. His autobiographical story, Mata Ka Achal, also featured in NCERT Hindi textbook Kritika for the 10th grade. He was also conferred with the Padma Bhushan Award by the Government of India.
1: और सारे इन्होंने लक्ष्मी, मनोरंजन और पाटलिपुत्र में पत्रिकाओं में भी इनके जो लेख थे प्रकाशित हुए. इसके अलावा शिव पूजन सहाय ने 1934 में वार्षिक पत्र बालक का संपादन किया था. स्वतंत्रता के बाद शिव पूजन सहाय बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के संचालक भी रहे और बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से प्रकाशित साहित्य नामक शोध समीक्षा प्रधान त्रैमासिक पत्र के वो संपादक भी रहे.
0: राइट फरहत, एंड अ वेरी नोटेड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हिज वाज दैट ही एक्चुअली आल्सो edited Rangbhumi of Premchand, because in 1924 he moved to Lucknow to join the editorial department of Dulare Lal Bhargav's Madhuri, and that is where he worked with Munshi Premchand and edited his Rangbhumi and some of his other stories. In 1925 though, he returned to Calcutta, engaged in editing short-lived journals such as Samanvay, Mauji, Golmaal and Upanyas Tarang. Finally, he moved to Varanasi in 1926 to work as a freelance editor.
1: और अब आइए याद कर लेते हैं विख्यात गणितज्ञ, पुस्तकालय अध्यक्ष और शिक्षा शास्त्री शियाली राम अमृता रंगनाथन को, जिन्हें भारत में पुस्तकालय विज्ञान का अध्यक्ष का जनक माना जाता है. ऐसा रंगनाथन ने कोलन वर्गीकरण और क्लासिफाइड कैटलॉग कोड बनाया. पुस्तकालय विज्ञान को महत्व प्रदान करने और भारत में इसका प्रचार प्रसार करने में उनका सक्रिय योगदान रहा. और अब हम याद कर रहे हैं आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध गद्यकार, उपन्यासकार, व्यंग्यकार, पत्रकार, दूरदर्शन धारावाहिक लेखक, जनवादी विचारक, फिल्म पटकथा लेखक, उच्च कोटि के संपादक, कुशल प्रवक्ता और स्तंभ लेखक मनोहर श्याम जोशी को. दूरदर्शन के प्रसिद्ध और लोकप्रिय धारावाहिकों बुनियाद, नेताजी कहें, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हम लोग के कारण वो भारत के घर घर में प्रसिद्ध हो गए थे. उन्होंने धारावाहिक और फिल्म लेखन से संबंधित पटकथा लेखन नामक पुस्तक की भी रचना की. और 1987 में जब टेलीविजन पर बुनियाद सीरियल का प्रसारण हुआ, तब ये भारत में टेलीविजन धारावाहिकों के लिए कसौटी बन गया. उंगली पर गिने जा सकने वाले चंद धारावाहिकों को छोड़ दें तो तब से लेकर अब तक कोई भी धारावाहिक इस ऊंचाई को नहीं छू सकता. तो क्यों ना इसको फिर से एक बार याद किया जाए. सारा
2: कहीं

0: भूषण पुत्र, तुम लोग जाना चाहो तो जाओ, तुम्हें मैंने कभी नहीं रोका।
1: आप कैसी बात करते हो माताजी? जब भी जाएंगे सब इकट्ठे जाएंगे।
2: यही सुनते सुनते तो जुलाई से सब चैंबर आ गया। पता नहीं किसका इंतजार कर रहे हैं। 15 अगस्त को ही पता चल गया था कि सासू जी।
0: कुछ नहीं पता चला था। अगर पता चल गया होता तो मैं यहाँ इंतजार करने को तो नहीं ना कहती।
2: तहखाने में सासू जी की छड़ी मिल गई, टूटा चश्मा मिल गया, खून के धब्बे दिख गए। अब और इसका

0: मतलब ये तो नहीं कि वो नहीं, वो जिंदा है, वो जरूर आएंगे।
1: और इसी उम्मीद में हम सब यहाँ मर जाएंगे।
0: शुभ शुभ बोलो बीबी रानी।
2: तो बुनियाद के बनने और टीवी पर आने की कहानी जो है वो शुरू होती है 1984 में सारा,
3: और बहुत ही नॉस्टैल्जिक लगा ये सुन के, स्पेशली आई डोंट नो द जनरेशन वुड नो दिस, बट दीज वर द सीरियल्स जिन्होंने यू कैन से एंटरटेनमेंट की बुनियाद भी डाली हमारी कंट्री में।
2: आज भी इस तरह के सीरियल्स को अगर हम याद करते तो मुझे लगता है अभी जो है इस तरह के सीरियल्स नहीं बन रहे।
3: यस, एंड थैंकफुली थैंक्स टू द वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म इट इज आर्काइव्ड, एंड आपको कोई भी अगर आज कभी भी जनरेशन का पहले आज की कोई भी वो इन सीरियल्स को फिर से देख सकता है।
2: अगर
3: worth watching.
2: हाँ, बिल्कुल सारा। और अगर आप सपने देखती हैं तो मुझे लगता है आपको मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो जरूर याद होगा।
3: बिल्कुल।
2: तो आइए सुन लेते हैं।

0: गुल खिलाएगी नया कोई गुल खिलाएगी।
1: अरे बंद कीजिए ना गाना टाना, हम कुछ भूल जाएंगी तो माई बाबूजी को तकलीफ हो जाएगा। अपना से तो आप कुछ याद रखते नहीं। अरे आप तो यहाँ तक बिसर जाइएगा कि रात की ट्रेन से माई बाबूजी आने वाले हैं धनबाद से।
2: अरे तुम्हारे माई बाबूजी हमारा गाना टाना बंद कर दिए, नहीं तो आज हम लता मंगेशकर होते।
1: अरे लता मंगेशकर और रफीक मोहम्मद तो आप बाद में होते, पहले यहाँ बेकारी और भूखमरी से परान निकल जाता। अरे वो तो धन है हमारे बाबूजी जे राम खिलावन मामा मंत्री जी का पैरवी लगाकर आपको नौकरी दिला दिए, नहीं तो हो गई होती छुट्टी।
3: तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने यही थे।
4: राइट। Today is also the birth anniversary of Sawan Kumar Taka, a film director, producer and lyricist. He directed many Hindi films, including successful films like Sajan Bina Suhagan, Sautan, Sautan Ki Beti, or Sabko Yaad Hoga Sanam Bewafa. Of course, he is credited with giving break to actors such as Sanjeev Kumar and Mehmood Jr. His most famous directorial venture was Rajesh Khanna star Sautan, which was the first Indian film to be shot in Mauritius. In fact, Sawan Kumar ne hi Sanjeev Kumar ko unka naam दिया था। इट वॉज सब लोग जानते हैं उनका रियल नेम हरि भाई जरीवाला था, तो एक हीरो जैसा नाम तो कहीं नहीं लगता। तो इट वॉज सावन कुमार हु सेड दैट ही शुड यू नो स्टिक टू द नेम संजीव कुमार। एंड नौनिहाल ऑफ कोर्स रिसीव प्रेसिडेंशियल मेंशन एट द नेशनल फिल्म अवार्ड्स देन। उसके अलावा सनम बेवफा का जब जिक्र हुआ है तो इस मूवी में बहुत ही खूबसूरत गाने थे, व्हाई नॉट लिसन टू वन ऑफ देम।

0: और सारा ये प्यारी सी आवाज़ जो आप सुन रही हैं, इसमें ये गीत गाया था अनुराधा पौडवाल ने और अमित कुमार ने, और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने.
1: And well, he was also a prolific lyricist and wrote songs for most of his produced and directed films. And apart from this, he also wrote lyrics for songs for movies that were produced and directed by other filmmakers. Among those were Sabak, the 1973 movie starring Shatrughan Sinha, and Poonam, featuring the popular song Barkha Rani Zara Jamke Barso. और आजकल के मौसम पे सही है ये गाना, लेकिन अब हमारे पास वक्त कम है इसलिए दूसरी पर्सनालिटीज़ की भी बात कर लेते हैं. टुडे इज़ द बर्थडे ऑफ महेश बाबू, ऑफ कोर्स अ वेरी वेरी अकम्प्लिश्ड एक्टर, प्रोड्यूसर, फिलैंथ्रोपिस्ट, वॉइस एक्टर हु वर्क्स प्रेडोमिनेंटली इन तेलुगु सिनेमा, वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स इन इंडियन सिनेमा एंड हैज़ बीन फीचर्ड इन फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 लिस्ट from 2012 to 2025. Referred to in the media as the superstar, he has appeared in over 30 films and has been a recipient of several accolades, including 9 Nandi Awards, 5 Filmfare Awards South, and 4 SEMA Awards. Let's listen to this song.

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। मौसम विभाग का उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप के अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमरीका के उपराष्ट्रपति जी डी वेंस से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान

0: दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है। ये अभियान 17 तारीख तक चलेगा। इसका उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
1: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
2: हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी और अब ये एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा।

14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्यिक दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्यपथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।

0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर पुद्दुचेरी में हैं। श्री शाह गोरीमेडू के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में पुद्दुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज पुडुचेरी पुलिस को औपचारिक झंडा सौंपेंगे। भारत के राष्ट्रपति ने 8 मई को पुडुचेरी पुलिस की असाधारण सेवा, अनुशासन और शानदार उपलब्धियों के सम्मान में उन्हें पुलिस कलर देने की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित औपचारिक परेड में केंद्र शासित प्रदेश पुलिस की विभिन्न शाखाओं के जवान भी भाग ले रहे हैं। इस समारोह में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन, मुख्यमंत्री एन रंगासामी और गृह मंत्री ए नमासीवयम भी मौजूद रहेंगे। दोपहर बाद अमित शाह पुडुचेरी में मुरुगा थिएटर सिग्नल पर हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए पूरे पुडुचेरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
0: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम शुरू करने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्र ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। से अधिक 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में की गई है। वहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय में 8, कर्नाटक उच्च न्यायालय में 6 और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 1 न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार इन 30 न्यायाधीशों में 20 वकील और 10 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। इन नियुक्तियों को राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय की कलीजियम की सलाह के बाद मंजूरी दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच आज दोपहर करीब 12 बजे अगले दौर की वार्ता होने की संभावना है।
2: सरकार के वार्ता दल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर छात्रों के साथ हुई पहली दौर की बातचीत में हुई प्रगति से उन्हें अवगत कराया है। सरकार

0: और आंदोलनकारी छात्रों के विभिन्न गुटों के बीच पहले दौर की उच्च स्तरीय वार्ता कल रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सकारात्मक माहौल में हुई थी। सरकार के प्रतिनिधियों ने परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के प्रति प्रतिबद्धता जताई। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिसके माध्यम से छात्र और हितधारक अपने सुझाव दे सकते हैं। इधर छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि छात्र पिछले 15 दिनों से अनिश्चितकाल धरने पर हैं और पहली वार्ता में उन्होंने अपनी मांगें विस्तार से सरकार के सामने रखी हैं। इस बीच कल शाम रांची में छात्रों ने जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के लिए जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर फ्लैशलाइट मार्च भी निकाला। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: जम्मू कश्मीर में वर्षा और खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुमान को देखते हुए यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई है। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कल किसी भी नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया। इस बीच बालतल आधार शिविर में ठहरे हुए 1202 तीर्थयात्रियों के 28वें जत्थे को 44 वाहनों में जम्मू के लिए रवाना किया गया। श्री अमरनाथ गुफा में कल 3336 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को पहलगाम के पारंपरिक चंदनवाड़ी मार्ग और गांदरबल के बालतल मार्ग से एक साथ शुरू हुई थी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को पारंपरिक छड़ी मुबारक समारोह के साथ होगा। इस बीच मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज वर्षा की आशंका है। विभाग ने जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक और आंधी तूफान की संभावना जताई है। इधर दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिन के दौरान हल्की वर्षा और बादल छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में अगले 48 घंटों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के पर्वतीय जिलों में तेज वर्षा की संभावना है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में कल भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। मौसम की स्थिति को देखते हुए सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने सभी संबंधित जिलों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। श्री सुमन ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: उड़ीसा में भी कई क्षेत्रों में तेज वर्षा जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बाढ़ के कारण बड़े स्तर पर फसलों को नुकसान होने की आशंका है।
3: उड़ीसा में एक बार फिर बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है। आईएमडी ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। सुंदरगढ़, संबलपुर, झारसुगड़ा और बरगढ़ जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों के लिए येलो वार्निंग है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों का जल स्तर बढ़ने से यहां निचले और जोखिम वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को फिर से बाढ़ आने का डर सता रहा है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और जोखिम वाले इलाकों में पूरी तैयारी बनाए हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। क्रोएशिया की एम फेरेनका और एफ कटुसिच ने दूसरा स्थान और चीन के जे हान और जेड वांग ने तीसरा स्थान हासिल किया। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में भारत की अश्मिता चालिहा और चीन की क्यू हान के बीच मुकाबला जारी है। मैच का पहला गेम क्यू हान ने 21-14 से अपने नाम कर लिया है। अमरीकी सरकार विदेशी कर्मचारियों को नई नौकरी खोजने के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय देने वाले नियम को समाप्त करने पर विचार कर रही है। ये प्रस्ताव व्हाइट हाउस के प्रबंधन और बजट कार्यालय के पास है। ये नियम लागू होने पर कई H-1B वीजा धारक कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को अमरीका छोड़ना पड़ सकता है। इस बदलाव का असर भारतीयों पर भी पड़ सकता है। H-1B वीजा धारकों में भारतीय नागरिकों की बड़ी हिस्सेदारी है। अमेरिका में भारतीय मूल के 52 लाख से अधिक लोग रहते हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाथ।

0: धन्यवाद मुकेश। आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी बोले, युवा सिर्फ सवाल ना पूछे समाधान भी खोजे, भारत को नए शोध की जरूरत। जनसत्ता की सुर्खी है, बिना सोचे समझे स्वीकार की जाने वाली बातों पर सवाल उठाएं विद्यार्थी। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, याद रखिएगा जो सीखेगा वो जीतेगा। जेंजी को पीएम ने दिया संदेश, कहा पैकेज और नौकरी की तुलना करने से बचे। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, जेंजी के रंग में मोदी, सतपुड़ा के पराठे हॉस्टल निकनेम के साथ भविष्य की सीख, आरा कारा विंधी जिया सराय का पोहा। पंजाब केसरी ने अकाली भाजपा का गठजोड़ शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, राज्य स्तर पर जब भी पंजाब में अकाली दल के नेतृत्व में प्रकाश सिंह बादल या उनके पुत्र सुखबीर बादल की सरकार बनी उसमें भाजपा के प्रतिनिधि शामिल हुए, लेकिन अकाली जनसंघ गठजोड़ की इस विरासत में इस दौरान राज्य की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप मूलभूत बदलाव भी आते रहे हैं। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, हाइब्रिड और ईवी कारें सस्ती होंगी, ज्यादा प्रदूषण वाली होंगी महंगी, ऑटो इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव, नई पॉलिसी अप्रैल 2027 से लागू होंगी। अमर उजाला की सुर्खी है, अंतरिक्ष के कचरे से होगा कारोबार, मलबा हटेगा, उपग्रहों की मरम्मत भी, एस्ट्रोस्केल क्लियर स्पेस जैसी कंपनियों ने शुरू किया काम। जनसत्ता ने आस्था शीर्षक से विशेष खबर में लिखा है, कावड़ियों पर पुष्प वर्षा, परंपरागत के साथ आधुनिक व्यंजन भी, मुख्यमंत्री योगी ने कहा 4.5 करोड़ कावड़िए जल लेकर आएंगे, श्रद्धालु अपने इलाके में शिव मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे। लोकसत्ता के अनुसार E20 विवाद के बीच सरकारी तेल कंपनियों का दावा, ईंधन पूरी तरह सुरक्षित, न घटेगी माइलेज न खराब होगा इंजन। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार बठिंडा में हनी ट्रैप गिरोह, 23 महिलाओं समेत 28 काबू, वायुसेना अफसर ने पाक को दी सैन्य जानकारी, गिरफ्तार। दैनिक जागरण का शीर्षक है, एआई ने भारत में जितनी नौकरियां घटाई उससे 2.5 गुना ज्यादा पैदा की, नोमुरा की रिपोर्ट में दावा, 83,100 एआई से जुड़ी नौकरियां बढ़ी, 31,921 पर पड़ा असर।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। सरकार ने मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित और साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप की अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and US Vice President J.D. Vance discuss ways to further strengthen comprehensive global strategic partnership in key areas. Har Ghar Tiranga campaign begins today, coinciding with 150th anniversary of India's national song Vande Mataram. Appointment of 30 judges for High Courts of Madras, Calcutta, Madhya Pradesh and Karnataka notified. Amarnath Yatra to remain suspended from both Pehelgam and Baltal routes due to repair of tracks and forecast of bad weather. IMD issues orange alert for heavy rainfall in Uttarakhand and Chhattisgarh today. Sagnik Roy and Sayantan Kushari win gold medal in under 31 pairs at 9th World Bridge Federation Youth Transnational Championships. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and US Vice President J.D. Vance discussed ways to further deepen India-US comprehensive global strategic partnership across key areas. Mr. Modi received a phone call from Vice President Vance yesterday. In a social media post, Mr. Modi said they noted the sustained momentum in the high-level engagements and reaffirmed their commitment to further strengthening cooperation in trade, defence, critical and emerging technologies, energy security and critical minerals. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. Prime Minister Narendra Modi has said new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. Addressing the 57th convocation of Indian Institute of Technology, IIT Delhi, yesterday, the Prime Minister cited

0: हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: இசை பெட்டகம் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை டாக்டர் ஸ்ரீபாத பினாகபாணி அவர்களின் பாட்டு கேட்டோம். அன்னவரப்பு ராமசுவாமி அவர்கள் வயலின், தண்டமூடி ராமமோகன ராவ் அவர்கள் மிருதங்கம். படைப்பு சென்னை வானொலி நிலையம்.
1: नरेंद्र मोदी ने कल अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेरी वेन से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेरी वेन्स और उनकी पत्नी उषा वेन्स को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है और इस महीने की 17 तारीख तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अभियान 2022 में शुरू हुआ था और अब एक बड़े जनभागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम शुरू करने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया। सरकार ने 4 उच्च न्यायालय में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे ज्यादा 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में हुई है। वहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय में 8, कर्नाटक उच्च न्यायालय में 6 और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 1 न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार इन नियुक्तियों को राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय की कलीजियम की सलाह के बाद मंजूरी दी है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। राज्य सरकार आज आंदोलनकारी छात्रों के साथ अगले दौर की वार्ता करेगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच आज दोपहर करीब 12 बजे अगले दौर की वार्ता होने की संभावना है। गृहमंत्री अमित शाह ने काकोरी रेल घटना के अमर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि काकोरी रेल घटना भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक अविस्मरणीय अध्याय है जिसने ब्रिटिश शासन के अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ सशस्त्र क्रांति को नई गति प्रदान की। जम्मू कश्मीर में वर्षा और खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुमान को ध्यान में रखते हुए यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई है।

0: के भगवती नगर आधार शिविर से कल किसी भी नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को पहलगाम के पारंपरिक चंदनवाड़ी मार्ग और गांधरबल के बालतल मार्ग से एक साथ शुरू हुई थी। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की आशंका है। वहीं ओडिशा के कई क्षेत्रों में तेज बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी ऊपर वाले निम्न दबाव क्षेत्र का असर राज्य में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 4 जिलों के लिए मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि शेष जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बैतरणी और सालंदी नदियों के जलस्तर बढ़ने से भद्रक जिले के कई लोगों की चिंता और बढ़ गई है। बड़े स्तर पर फसल नुकसान की भी आशंका बताई जा रही है। चीन के हेफई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के सांगनिक रॉय और सायंतम कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। क्रोएशिया के एम फेरेनेका और एफ कटुसिच ने दूसरा स्थान और चीन के जेहान और जेडे वांग ने तीसरा स्थान हासिल किया। भारत के अश्मिता चलेहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। वहीं फाइनल में आज अश्मिता ने चीन की हान चियानशी को 14-21, 21-14, 21-14 से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi and US Vice President J.D. Vance discussed ways to further deepen India-US comprehensive global strategic partnership across key areas. Mr. Modi received a phone call from Vice President Vance yesterday. In a social media post, Mr. Modi said, they noted the sustained momentum in the high-level engagements and reaffirmed their commitment to further strengthening cooperation in trade, defence, critical and emerging technologies, energy security, and critical minerals. Both the leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. The Har Ghar Tiranga campaign will begin today and will run through the 17th of this month. The initiative is aimed at encouraging citizens to hoist the national flag and participate in activities celebrating patriotism, national unity, and India's cultural heritage. This year's campaign holds special significance as it coincides with the 150th anniversary of India's national song Vande Mataram, bringing together the national flag and the national song in a unique celebration of patriotism. As part of the celebrations, mass singing of Vande Mataram will be organized across the country. More than 200 Indian embassies, high commissions and consulates will organize a series of events to mark the campaign. Union Home Minister Amit Shah will flag off the Har Ghar Tiranga Yatra at Muruga Theatre Signal in Puducherry today. Mr. Shah, who is on a two-day official visit, arrived in the Union Territory last night. Prime Minister Narendra Modi today paid tribute to all those who participated in the Quit India movement. In a social media post, Mr. Modi said, their courage will always remain an inspiration for every Indian. The Prime Minister said, inspired by the leadership of Mahatma Gandhi, the clarion call of Quit India infused new energy into India's freedom struggle and reflected the unwavering determination of the people to break free from colonial rule. The centre has notified the appointment of 30 judges for High Courts of Madras, Calcutta, Madhya Pradesh and Karnataka, with Madras High Court receiving the largest share of new appointees. According to a notification issued by the Ministry of Law and Justice, the appointments include 20 advocates, 10 judicial officers. Of the total, 15 judges have been appointed to the Madras High Court, 8 to Calcutta High Court, 6 to the Karnataka High Court and 1 to Madhya Pradesh High Court. The appointments were made by the President in consultation with the Chief Justice of India and the Supreme Court Collegium. Jharkhand students protesting against alleged irregularities in JPSC and JSSC recruitment examinations will hold another round of talks with the representatives of state government in Ranchi today. The next round of talks between the Jharkhand government and representatives of protesting students is scheduled for around noon today. The government panel held a meeting with Chief Minister Hemant Soren and briefed him on the progress made during the first round of dialogue.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरो रीफ को राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण क्षेत्र बनाने के चीन के फैसले को रद्द किया। अमेरिका में नए नियम के अंतर्गत H-1B वीजा धारकों पर नई नौकरी खोजने के लिए 60 दिन की समय सीमा समाप्त होने का खतरा। यूक्रेन और अमेरिका के बीच मिसाइल रोधी प्रणाली की नियमित आपूर्ति के लिए समझौता। और भारत की अश्मिता चलिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरो रीफ को राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण क्षेत्र बनाने के चीन के फैसले पर आपत्ति व्यक्त की है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि चीन का ये कदम फिलीपींस के मछुआरों को उनके पारंपरिक मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों में जाने से रोक सकता है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका ने कहा है कि वह स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के फिलीपींस के साथ खड़ा है। चीन ने 1 अगस्त को स्कारबोरो रीफ के प्रबंधन के लिए नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों में संबंधित एजेंसियों के बीच सहयोग और निगरानी बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। वहीं 2016 में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के तहत गठित न्यायाधीशों की समिति ने कहा था कि फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र में समुद्री संसाधनों पर चीन के ऐतिहासिक अधिकारों का कोई कानूनी आधार नहीं है। हालांकि चीन ने इस फैसले को स्वीकार नहीं किया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं टीना।
0: अमेरिकी सरकार विदेशी कर्मचारियों को नई नौकरी खोजने के 60 दिन का अतिरिक्त समय देने वाले नियम को समाप्त करने पर विचार कर रही है। ये प्रस्ताव व्हाइट हाउस की प्रबंधन और बजट कार्यालय के पास है। ये नियम लागू होने पर कई H-1B वीजा धारक कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है। इस बदलाव का असर भारतीयों पर भी पड़ सकता है। H-1B वीजा धारकों में भारतीय नागरिकों की बड़ी संख्या है। अमेरिका में भारतीय मूल के 52 लाख से अधिक लोग रहते हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल

0: सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। यूक्रेन और अमेरिका के बीच पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली के लिए इंटरसेप्टर मिसाइलों की नियमित आपूर्ति को लेकर एक समझौता हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में पत्रकारों से बातचीत में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका अब यूक्रेन को हर महीने इंटरसेप्टर मिसाइलों की आपूर्ति करेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि यह आपूर्ति देश की वायु रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन को 2026 में मिलने वाली इंटरसेप्टर मिसाइलों की संख्या 2025 की तुलना में कम होगी। श्री ज़ेलेंस्की ने कल सर्बिया की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा की। बेलग्रेड में ज़ेलेंस्की और उनके सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक के साथ बैठक के बाद दोनों नेताओं ने बताया कि दोनों देश यूरोपीय संघ में शामिल होने के साझा लक्ष्य पर मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वो वर्ष के अंत तक एक पारस्परिक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने का भी प्रयास करेंगे। सर्बिया की सरकार ने यूक्रेन को अतिरिक्त मानवीय सहायता, बुनियादी ढांचा और ऊर्जा उपकरण उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताई। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं फरहत नाज।
0: अमेरिका ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी हथियारों के भंडार पर दबाव बढ़ गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन ने अमेरिकी रक्षा कंपनियों को हथियारों का उत्पादन और उनकी आपूर्ति तेज करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा उद्योग के अधिकारियों को 21 दिन के भीतर उत्पादन बढ़ाने और हथियारों की जल्द आपूर्ति के लिए योजना तैयार करके देने को कहा गया है। पेंटागन पैट्रियट और थार जैसी मिसाइल प्रणालियों के भंडार को फिर से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के बाद अमेरिका के पैट्रियट मिसाइलों के भंडार में बड़ी कमी आई है। हालांकि हथियारों का उत्पादन बढ़ाने की इन योजनाओं के लिए अमेरिकी कांग्रेस से धनराशि मिलना जरूरी है। कांग्रेस में करीब $1.15 ट्रिलियन का रक्षा बजट विधेयक अभी अटका हुआ है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिशकियन ने कहा है कि अमेरिका के साथ शांति और बातचीत जारी रखी जाएगी। हालांकि इसके लिए अमेरिका को दोनों देशों के बीच भरोसे का माहौल बनाना होगा। श्री पजिशकियन ने कहा कि समझौते का ये सही समय है। उन्होंने साफ किया कि ईरान अमेरिका के कदमों के अनुसार ही अपनी प्रतिबद्धताएं निभाएगा। इससे पहले भी पजिशकियन ने कहा था कि ईरान अपने अधिकारों की रक्षा के लिए बातचीत जारी रखेगा, लेकिन किसी भी दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। जून में ईरान और अमेरिका ने युद्ध समाप्त करने को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। दोनों देशों के बीच 60 दिन के भीतर अंतिम समझौते के लिए बातचीत होनी थी। हालांकि क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच इन वार्ताओं का भविष्य फिलहाल अनिश्चित है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी अश्मिता चालिहा ने आज शानदार वापसी करते हुए विक्टर कोरिया मास्टर्स 2026 का महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में असम की अश्मिता ने चीन की हान चियानशी को 3 गेमों के मुकाबले में 14-21, 21-14 से हराया। पहला गेम गंवाने के बाद अश्मिता ने जोरदार वापसी की और 53 मिनट में मुकाबला अपने नाम कर लिया। ये अश्मिता का पहला BWF खिताब है। इससे पहले अश्मिता ने कल सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को 21-13, 16-21, 21-13 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं हान चियानशी ने दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की जी किम को 22-20, 18-21 और 21-14 से मात दी थी। अश्मिता ने इससे पहले 2024 एशिया टीम चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। वर्ष 2019 के दक्षिण एशियाई खेलों में भी उन्होंने महिला सिंगल्स और टीम स्पर्धा दोनों में स्वर्ण पदक हासिल किए थे। उधर चीन के हेफेई में आयोजित 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने भी कल Under-31 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। पहले चरण के खेले गए मुकाबले में 34 जोड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से शीर्ष 14 जोड़ियां फ्लाइट ए में पहुंच गईं। भारतीय जोड़ी भी इसमें शामिल रही। इसके बाद राउंड रॉबिन में साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने शीर्ष स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। क्रोएशिया के एम फेरेनेका और एस कटुसिचिक ने दूसरा स्थान और चीन के जेहान और जेड वांग ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।
0: पश्चिमी कनाडा के ओकानागन में तेजी से फैल रही जंगल की आग से कई लोग प्रभावित हुए हैं। इससे लगभग 20,000 से अधिक लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। तेज हवाओं और शुष्क मौसम के कारण आग बेकाबू हो गई थी। ब्रिटिश कोलंबिया के मुख्यमंत्री डेविड एबे ने आपातकाल की घोषणा की है। लगभग 12,000 लोगों की आबादी वाले समरलैंड को रातों रात खाली करने का आदेश दिया गया। साथ ही पास के पीचलैंड और इसके आसपास के लगभग 8,000 लोगों को भी जगह खाली करने को कहा गया है। इस्लामिक स्टेट समूह से जुड़े आतंकियों ने युगांडा की सीमा से लगे

पूर्वी कांगो के एक गांव पर हमला करके 13 लोगों की हत्या कर दी। ये हमला मामबासा के पास बनाना इकोले गांव में हुआ और इसे एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस ADF ने अंजाम दिया। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि कई निवासियों से अभी बातचीत नहीं हो पाई है। यमन में मारेब और हदर मौत प्रांतों में हाल ही में हुए हौसी विद्रोहियों के हमलों के जवाब में सशस्त्र बलों ने उनके खिलाफ सैन्य अभियान शुरू कर दिए हैं। ये घटनाक्रम क्षेत्रीय तनाव के बढ़ते हुए बीच के कारण आया है। इसमें ईरान समर्थित हौसी समूह यमन के अंदर सैन्य गतिविधियों को तेज कर रहा है और सऊदी अरब से जुड़े समुद्री ठिकानों पर हमले कर रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD Vance ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरो रीफ को राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण क्षेत्र बनाने की चीन के फैसले को रद्द किया। अमेरिका में नए नियम के अंतर्गत H-1B वीजा धारकों पर नई नौकरी खोजने के लिए 60 दिन की समय सीमा समाप्त होने का खतरा। यूक्रेन और अमेरिका के बीच मिसाइल रोधी प्रणाली की नियमित आपूर्ति के लिए समझौता। और भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: நொடிகள் இதுவரை சுகமான ராகங்கள் நிகழ்ச்சி கேட்டீர்கள். இன்னும் சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே விஷால் சர்மா. गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए तीन नए आपराधिक कानून तीन महत्वपूर्ण स्तंभों प्रौद्योगिकी, समयबद्धता और विश्वास पर आधारित हैं। गृहमंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में ये बात कही।
2: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर तीन भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये तीन पिल्लर पर खड़ी की गई है।
1: श्री शाह आज पुदुचेरी के मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू होकर 17 अगस्त तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अब एक बड़े जनभागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के करो या मरो के आह्वान से प्रेरणा लेकर इन सेनानियों ने देशवासियों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए एकजुट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने काकोरी रेल घटना के अमर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि काकोरी रेल घटना भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक अविस्मरणीय अध्याय है, जिसने ब्रिटिश शासन के अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ सशस्त्र क्रांति को नई गति प्रदान की। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में 124 पात्र कैदियों की सजा में कमी की जाएगी। इनमें से 118 आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को समय से पहले रिहा किया जाएगा। 6 अन्य पात्र कैदियों को विशेष छूट दी जाएगी। ये छूट अच्छे आचरण, अनुशासित व्यवहार और निर्धारित नियमों के पालन के आधार पर दी जाएगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे ज्यादा 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में हुई है। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार इन नियुक्तियों को राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय की कॉलेजियम की सलाह के बाद मंजूरी दी है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की ओर है। राज्य सरकार आज आंदोलनकारी छात्रों के साथ अगले दौर की वार्ता करेगी। सरकार और आंदोलनकारी विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज दोपहर करीब 12 बजे अगले दौर की

0: हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है और ये 17 अगस्त तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अब एक बड़े जनभागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्यिक दूतावास भी अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी आज से हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत सभी 20 जिलों में सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। इस दौरान सामूहिक वंदे मातरम गायन, तिरंगा रैलियां, प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया है। गृह मंत्री अमित शाह पुदुचेरी से हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। गृह मंत्री ने आज गोरीमेदु स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानून प्रौद्योगिकी, समयबद्धता और विश्वास के महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित हैं।
1: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के करो या मरो के आह्वान से प्रेरणा लेकर इन सेनानियों ने देशवासियों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए एकजुट किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है ताकि राज्य में धान की बम्पर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय पूल में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे ज्यादा 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में हुई है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की ओर है। राज्य सरकार आज आंदोलनकारी छात्रों के साथ अगले दौर की वार्ता करेगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। पंजाब में आज तड़के सरहिंद जीटी रोड पर एक कार की टक्कर में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वे उत्तराखंड के गंगोत्री से पवित्र जल लेकर पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकापुरा लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौके से फरार चालक की तलाश की जा रही है। आज विश्व जनजातीय दिवस के अवसर पर नागालैंड के राज्यपाल नंद किशोर यादव ने प्रकृति और समृद्ध संस्कृति तथा परंपराओं और विरासत का संरक्षण करने वाले सभी जनजातीय समुदाय के लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। नागालैंड जनजातीय मंच आज दीमापुर के टाउन हॉल में विश्व जनजातीय दिवस का आयोजन कर रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में नागालैंड पहली बार इस दिवस की मेजबानी कर रहा है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान चियनशी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay.

विरुद्ध न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर 1300 से अधिक उड़ानें रद्द, 3,00,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। और भारत की अश्मिता चालिया ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। हर घर तिरंगा अभियान आज से 17 अगस्त तक चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी से हर घर तिरंगा अभियान यात्रा रवाना की। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।

0: हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जा रहा है। यह अभियान हर घर तिरंगा पहल का 5वां वर्ष है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और तब से यह देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। इस पहल का उद्देश्य देशवासियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाने वाली गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इस वर्ष का अभियान विशेष महत्व रखता है। यह अभियान देशभक्ति के एक अनूठे उत्सव में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत को एक साथ लाता है। उत्सव के हिस्से के रूप में पूरे देश में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन आयोजित किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम स्थित फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने डॉ बीआर आम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में आयोजित राजकीय समारोह वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी भाग लिया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के गौरवशाली इतिहास को स्मरण किया। उन्होंने 30 दिसंबर 1943 के उस ऐतिहासिक दिन को भी याद किया जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया था।
2: इट इज इंडीड टू प्लेजर टू लॉन्च दिस कैंपेन टुडे ऑन द ऑगस्ट क्रांति दिवस एस वी कमेमोरेट द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। मिलियंस ऑफ इंडियंस रिस्पॉन्डेड टू दिस कॉल एंड रोज अगेंस्ट द ब्रिटिश विद द अनवावरिंग रिजॉल्व ऑफ डू ऑर डाई ऑन दिस डे। इट इज देयरफॉर डीपली सिग्निफिकेंट दैट वी लॉन्च द हर घर तिरंगा कैंपेन फ्रॉम द हिस्टोरिक आइलैंड्स ऑन दिस हिस्टोरिक डे।
1: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन 2 दिवसीय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा पर हैं। इधर दिल्ली में अभियान के हिस्से के रूप में लोकसभा में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने मालवीय नगर में पंडित मदन मोहन मालवीय के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद पिलांजी गांव से ग्रेटर कैलाश तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। संवाददाताओं से बातचीत में सुश्री स्वराज ने कहा कि ये स्वतंत्रता दिवस विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी स्वाधीनता का 80वां वर्ष मना रहा है।
3: भारत अपना 80th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने आज से एक सप्ताह की मुहिम शुरू करी है जहां पर हम हमारे राष्ट्र के नायक जितने भी हमारे शहीद स्मारक है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोकल RWAs, MWAs और स्थानीय निवासियों के साथ जाकर हमारे स्वच्छता वॉरियर्स के साथ यहाँ पर आकर स्वच्छता का अभियान भी शुरू करेंगे और पुष्पांजलि का भी कार्यक्रम करेंगे।
1: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी आज से हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत सभी 20 जिलों में सप्ताह भर के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह

0: लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। गृह मंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में ये बात कही।
1: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
0: श्री अमित शाह ने पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करने पर बधाई दी।
1: राष्ट्रपति ध्वज किसी भी डिसिप्लिन फोर्स के लिए उसके जीवन काल का सबसे गौरवपूर्ण क्षण होता है। पुदुचेरी पुलिस भले ही संख्या में 5,000 से कम हो, मगर आप इस देश की आध्यात्मिक धरोहर को संभाले हुए पुदुचेरी की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और पुदुचेरी के सम्मान की रक्षा करने का काम करते हैं।
0: राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित होने की इस उपलब्धि के साथ ही पुदुचेरी देश का 18वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसे पुलिस बल को दिए जाने वाले इस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और देश की महिलाओं के माथे के सिंदूर की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री ने ये बात नई दिल्ली के बेस अस्पताल में सिंदूर महारक्तदान यात्रा के शिविर उद्घाटन के अवसर पर कही। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर गतिरोध जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार और आंदोलनकारी छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीसरे दौर की वार्ता जारी है।
2: सरकार की 4 सदस्यीय मंत्री स्तरीय टीम छात्रों की मांगों पर चर्चा कर रही है। इधर जेकेएलएम विधायक जयराम महतो ने छात्रों के समर्थन में एक दिन की भूख हड़ताल शुरू की है। उन्होंने कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच और मुख्यमंत्री से छात्रों के सीधे संवाद की मांग की है। वहीं राज्य के सांसद और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की और उनकी मांगों का समर्थन किया। उन्होंने सीबीआई और ईडी जांच, जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाएं रद्द करने तथा पुलिस टेबल शारीरिक परीक्षा के दौरान जान गंवाने वाले 19 युवाओं के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: केंद्र सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। नवनियुक्त न्यायाधीश जल्द ही शपथ लेकर कार्यभार संभालेंगे। इन नियुक्तियों से 4 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी दूर करने और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि राज्य में धान की बंपर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय पूल में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। पंजाब में आज तड़के सरहिंद जीटी रोड पर एक कार की टक्कर में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वे उत्तराखंड के गंगोत्री से पवित्र जल लेकर पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकापुरा लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौके से फरार चालक की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर में रेल संपर्क को मजबूत करने के लिए कई बड़ी रेलवे परियोजनाओं का काम प्रगति पर है। जम्मू रियासी को पुंछ से जोड़ने वाली नई रेल लाइन सहित प्रमुख परियोजनाओं के लिए अंतिम स्थल सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी गई है। 190 किलोमीटर लंबी जम्मू रियासी पुंछ रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए फील्ड सर्वे शुरू कर दिया गया है। जम्मू और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच 78 किलोमीटर लंबी अतिरिक्त रेल लाइन के लिए भी सर्वे को मंजूरी दी गई है। इस बीच जालंधर कैंट जम्मू तवी के बीच 216 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है।

0: राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए ने 33 राज्य जैव विविधता बोर्डों, केंद्र शासित प्रदेशों की जैव विविधता परिषदों और राष्ट्रीय संस्थानों को अभिगमन तथा लाभ साझाकरण के तहत 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि ये राशि भारत के कृषि और पशुपालन क्षेत्र की जैव विविधता संरक्षण के लिए भी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर शंघाई के दोनों हवाई अड्डों पर 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। आसपास के क्षेत्रों के 3 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: तूफान के बाहरी हिस्से ने कल राजधानी ताइपे सहित उत्तरी ताइवान को भी प्रभावित किया और उन क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई। ताइवान की कुछ एयरलाइंस ने भी चीन जाने वाली अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। तूफान की अधिकतम निरंतर हवा की गति आज सवेरे तक लगभग 162 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी गई थी। इससे तेज बारिश हो रही है, जिससे भीषण बाढ़ और भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है और इसके चाचियांग प्रांत और पड़ोसी फुचियान प्रांत के उत्तरी हिस्सों को प्रभावित करने की आशंका है। अधिकारियों ने चाचियांग में भीषण भूस्खलन के खतरे की चेतावनी जारी कर दी है। शंघाई के हांगशाओ और पुडोंग हवाई अड्डों ने भी लगभग 60% अपेक्षित उड़ानों को रद्द कर दिया है। समाचार कक्ष से मुनीष शर्मा।
0: जापान में आज नागासाकी पर अमेरिका के परमाणु बम हमले की 81वीं बरसी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची ने परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की अपनी नीति दोहराई। ओडिशा में बारिश से कई इलाकों में नदियों का जलस्तर दोबारा बढ़ने से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन राज्य भर में निचले इलाकों और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रख रहा है।
2: उड़ीसा में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा फिर बढ़ गया है और कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में और ज्यादा पानी भरने की आशंका है। बालेश्वर के बस्ता इलाके में हालात फिर गंभीर हो गए हैं, क्योंकि मयूरभंज के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद जलका नदी का जलस्तर बढ़ गया है। राजगोविंदपुर, सुलियापदा, मोरड़ा और चित्रड़ा में बारिश से जलका नदी उफान पर है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है और सैकड़ों हेक्टेयर खेती की जमीन जलमग्न हो गई है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों के बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम और मेघालय में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। आज शाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान चेन शी को हराया। अमेरिका में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। भारत के बसंत कुमार मेघवाल ने हाई जंप में रजत पदक जीता, जबकि शाहनवाज खान ने लॉन्ग जंप में कांस्य पदक अपने नाम किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से समयबद्ध न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी, 2:30 PM।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। हर घर तिरंगा अभियान आज से 17 अगस्त तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी से हर घर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। गृहमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। श्री शाह ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में भागीदारी के दौरान ये बात कही। श्री शाह ने पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करने पर बधाई दी।
1: राष्ट्रपति ध्वज किसी भी डिसिप्लिन फोर्स के लिए उसके जीवन काल का सबसे गौरवपूर्ण क्षण होता है। पुदुचेरी पुलिस भले ही संख्या में 5,000 से कम हो, मगर आप इस देश की आध्यात्मिक धरोहर को संभाले हुए पुदुचेरी की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और पुदुचेरी के सम्मान की रक्षा करने का काम करते हैं।
0: राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोप

0: आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। केंद्र सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति जताई है, ताकि राज्य में धान के अधिक पैदावार की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय भंडार में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति की उम्मीद है। जापान में आज नागासाकी पर अमेरिका के परमाणु बम हमले की 21वीं बरसी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यथार्थवादी और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने की अपनी नीति दोहराई। ओडिशा में बारिश से कई इलाकों में नदियों का जलस्तर दोबारा बढ़ने से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन राज्य भर में निचले इलाकों और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रख रहा है।
1: उड़ीसा में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा फिर बढ़ गया है और कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में और ज्यादा पानी भरने की आशंका है। बालेश्वर के बस्ता इलाके में हालात फिर गंभीर हो गए हैं, क्योंकि मयूरभंज के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद जलका नदी का जलस्तर बढ़ गया है। राजगोविंदपुर, सुलियापदा, मोरड़ा और चित्रड़ा में बारिश से जलका नदी उफान पर है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है और सैकड़ों हेक्टेयर खेती की जमीन जलमग्न हो गई है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों के बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर देश में तैयारी के चलते शंघाई के दोनों हवाई अड्डों पर 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गईं। अधिकारियों ने आसपास के क्षेत्रों से 3 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। तूफान के बाहरी हिस्से ने कल राजधानी ताइपे सहित उत्तरी ताइवान को प्रभावित किया और उन क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा हुई। ताइवान के कुछ एयरलाइन ने भी चीन जाने वाली अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। अधिकारियों ने झेचियांग में भीषण भूस्खलन के खतरे की चेतावनी जारी की है। शंघाई के हांगचाओ और पुंडोंग हवाई अड्डों ने भी लगभग 60% अपेक्षित उड़ानें रद्द कर दी। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान चियन शी को हराया। अमेरिका में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। भारत के बसंत कुमार मेघवाल ने हाई जंप में कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Prashant Kumar Sinha. The Har Ghar Tiranga campaign is being celebrated nationwide to foster a sense of patriotism among citizens, strengthen national unity, and promote India's cultural heritage. The campaign marks the 5th year of the Har Ghar Tiranga initiative, which began in 2022 and has since evolved into one of the country's largest public participation movements. Ghar, ghar. The initiative is aimed at encouraging citizens to hoist the national flag and to participate in activities celebrating patriotism, national unity, and India's cultural heritage. This year's campaign holds special significance as it coincides with the 150th anniversary of India's national song Vande Mataram, bringing together the national flag and the national song in a unique celebration of patriotism. Vice President C.P. Radhakrishnan today hoisted the national flag at the flag point in Sri Vijayapuram, the capital of the Andaman and Nicobar Islands, as part of the Har Ghar Tiranga campaign. On the occasion, he paid tribute to the brave freedom fighters. The Vice President also attended the state function Tiranga Concert on Vande Mataram, held at the auditorium of Dr. B.R. Ambedkar Institute of Technology. In his address, the Vice President recalled the glorious history of the Andaman Andaman and Nicobar Islands

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: आमंत्रित कर रहा है उपाध्यक्ष और मुख्य अभियंता पदों के लिए आवेदन। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट jalshakti-dowr.gov.in। भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण में सचिव की नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विवरण और अन्य नियम और शर्तों के लिए देखिए गृह मंत्रालय की वेबसाइट mha.gov.in। इसके अतिरिक्त आप इस वेबसाइट से भी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ipai.gov.in। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कुल रिक्तियां हैं 24। भर्ती का माध्यम रहेगा प्रतिनियुक्ति। प्रशासनिक अधिकारी कुल 7 रिक्तियां, 100% पदोन्नति और ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की जाएगी। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी 3 पद पदोन्नति द्वारा, किंतु ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर ये भर्ती की जाएगी। विस्तृत विज्ञापन, अनुदेश, पात्रता अपेक्षा, आयु सीमा, आवेदन पत्र आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए सफदरजंग अस्पताल की वेबसाइट vmmc-sjh.mohfw.gov.in। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नागपुर में उपलब्ध हैं ये पद, नर्सिंग अधीक्षक समूह क 2 पद, उप नर्सिंग अधीक्षक समूह क 3 पद, सहायक लेखाधिकारी समूह ख 2 पद, कार्यालय अधीक्षक समूह ख 1 पद, सहायक समूह ख 1 पद, निजी सहायक 1 पद, तकनीशियन प्रयोगशाला 4 पद और वरिष्ठ प्रशासनिक सहायक 2 पद। आवेदन का प्रारूप, पात्रता की शर्तें और अन्य जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट aimsnagpur.edu.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, परिक्रमा के आज के संक में प्रशांत के साथ आज मैं हूं नवीन सक्सेना।

0: प्रशांत, अगस्त का महीना आते ही हवा में कुछ अलग सी सरगर्मी महसूस हो रही है। बाजारों में तिरंगे दिखाई देते हैं, स्कूलों में बच्चे देशभक्ति के गीत गाते हैं, सरकारी इमारतें तिरंगे की रोशनी में नहाती हैं और हर भारतीय के मन में बस एक ही भाव उमड़ता है, देश के प्रति गर्व का भाव। और इसी भावना को जन जन तक पहुंचाने वाला अभियान है हर घर तिरंगा। इस अभियान का उद्देश्य केवल घर पर तिरंगा फहराना नहीं, बल्कि तिरंगे के साथ हर भारतीय की भावनात्मक रिश्ता को मजबूत करना है। प्रशांत, जरा सोचिए, एक छोटा सा तिरंगा, तीन रंग, केसरिया, सफेद और हरा, और बीच में नीले रंग का अशोक चक्र, बहुत कुछ कह जाता है प्रशांत, लेकिन इन तीन रंगों में इतनी बड़ी कहानी समाई है। जानते हैं, ये रंग साहस, त्याग, शांति, सत्य, समृद्ध जीवन का प्रतीक है और अशोक चक्र निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।
1: Absolutely, नवीन।
0: और प्रशांत, यही तिरंगा कभी स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में था, यही तिरंगा आज हमारे सैनिकों के साथ सीमाओं पर लहराता है, और यही तिरंगा

हर घर तिरंगे का अर्थ है देश केवल संसद भवन में नहीं, देश केवल सरकारी कार्यालयों में नहीं, देश हमारे घर में भी और हमारे मन में भी है। और जानते हैं, जब कोई बच्चा अपने घर की बालकनी में तिरंगा लहराता है ना, तो वो केवल एक झंडा नहीं लगता प्रशांत, वो अपने भीतर देश के प्रति एक भावना को जगा देता है। जब कोई बुजुर्ग तिरंगे को सलाम करता है तो उसके सामने शायद स्वतंत्रता के वो दिन जीवंत तो हो उठते हैं जब देश के लिए असंख्य लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और गर्व है ये कहते हुए जब तिरंगा हमारी छाती पर होता है, मैं भारतीय हूँ और मुझे हर भारत पर, हर भारतवासी पर और इस भारत पर गर्व है। और यही है हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य।

0: Hello and good day everyone. We are tuned to Parikrama on 100.1 FM. I am Prashant Kumar Sinha and with me today is my co-host Naveen. And for you, we have a selection of news, our discussion segment Dateline India, reports, capsules, tributes and much more. All these coming over the next 30 minutes. Naveen, we begin with the news headlines first. Har Ghar Tiranga campaign begins with multiple events across the country to celebrate patriotism and national unity.
1: Gṛh Mantri Amit Shah ne kaha ki apnivēshik kaal ke kanūnon ki jagah laaye gaye teen naye aapradhik kanūnon ka uddeshy pradyogiki ke madhyam se samayabaddh nyay pradan karna hai.
0: NIA arrests one more accused in connection with seizure of huge consignment of illegal explosives in Malappuram, Kerala.
1: ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका. उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी.
0: इन चाइना मोर देन 1,300 फ्लाइट्स कैंसल्ड एंड ओवर 3 लाख पीपल रिलोकेटेड अहेड ऑफ टाइफून डॉल्फिन.
1: और खेलों में अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीत लिया है.
0: And now, listeners, time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. Today, we're talking about International Day of the World's Indigenous Peoples, or World Tribal Day, and Nagasaki Memorial Day, and August Kranti Din, or Quit India Movement Day.
1: Prashant, 9 August, ek tarikh, lekin itihas ke kai bhavnatmak adhyay apne bheetar samete huye hai. एक और ये दिन दुनिया के उन स्वदेशी समुदायों को सम्मान देता है जिन्होंने सदियों से अपनी संस्कृति, भाषा, परंपराओं और प्रकृति से अपने रिश्ते को संभाल कर रखा. और दूसरी ओर यही तारीख भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उस हुनकार की याद दिलाती है जब करो या मरो के संकल्प के साथ लाखों भारतीयों ने आज़ादी की लड़ाई को एक नई ताकत दी थी. और फिर यही दिन हमें नागासाकी की उस त्रासदी के सामने भी खड़ा करता है जहां युद्ध की विनाशकारी शक्ति ने हजारों जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए बदल दी. पहचान, आज़ादी और शांति, 9 अगस्त की ये तीन कहानियां हमें इतिहास याद करने के साथ साथ ये भी सोचने पर मजबूर करती हैं कि इंसानियत की असली ताकत आखिर है किसमें.
0: Let's begin today's discussion with a question. What does an indigenous midwife carry with her? Personal experience, of course, but perhaps something even more precious, that is generations of wisdom.
1: Indigenous midwife. सीधे सीधे शब्दों में कहें प्रशांत, तो वो महिला जो घर की सदस्य ना होते हुए भी घर की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाती है. और जब तब उस घर की महिला अगर गर्भधारण करती है तो उसकी देखभाल करना और प्रसव तक उसको पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी बन जाती है. और तब तब ये और भी ज़रूरी बन जाता है कि जब दूर दूर तक चिकित्सालय या अस्पताल नहीं होता तब उसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है. और फिर सिर्फ प्रसव में नहीं, देखभाल ही नहीं, बल्कि उसे नवजात शिशु की देखभाल से लेकर पारंपरिक जड़ी बूटियों और उस समुदाय से जुड़ी वो तमाम जानकारी होती है जो उसे पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बुजुर्गों, अपने बड़ों से मिलती है.
0: And Naveen, that is precisely the message of the International Day of the World's Indigenous Peoples. Observe

0: प्रशांत एक भारतीय परिवार के बारे में सोचिए जहाँ एक महिला गर्भवती है और वहाँ हर कोई उसे सलाह देने लगता है, ये खाओ वो मत खाओ, आराम करो, तुम्हारी दादी नानी ऐसा करा करती थी, वगैरह वगैरह। और इन सभी सलाहों के बीच अक्सर एक बुजुर्ग महिला ऐसी होती है जिसका अनुभव कई दशकों का होता है और वो यही बता पाती है और सही बता पाती है कि क्या सही है और क्या गलत है।
1: And the indigenous midwives especially become important in this scene, Naveen, as they are not merely helping with childbirth, they can also be carriers of traditional knowledge and custodians of community practices.
0: और 2026 का विषय भी हमें उस ज्ञान को समझने, उन्हें सम्मान करने को कहता है, और जबकि ये भी कहता है कि हमें महिलाओं को और नवजात शिशुओं को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और सांस्कृतिक जीवन को भी सहेज कर रखना चाहिए।
1: But who exactly are indigenous peoples? They are communities around the world with distinct cultures, languages, traditions, knowledge systems and historical connections with their lands and territories.
0: और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस तरह के लगभग 476 मिलियन लोग दुनिया भर के 90 देशों में रहते हैं और ये एक बहुत बड़ी संख्या है।
1: Yes, listeners, and on this day in 1982, the United Nations Working Group on Indigenous Populations held its first meeting. And more than a decade later, in December 1994, the UN General Assembly proclaimed 9th of August as the International Day of the World's Indigenous Peoples.
0: और इसका मकसद इन लोगों से जुड़े मुद्दों को एक वैश्विक मंच देना था, इसलिए हर साल 9 अगस्त का दिन खुद से ये पूछने का एक बेहतरीन मौका होता है कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जो ये सुनिश्चित कर सके कि हमारे फैसले उनकी जिंदगी पर बेहतर असर डालते हैं।
1: What exactly are we trying to protect in these indigenous communities? And the answer is much bigger than culture alone.
0: अब एक ऐसे बच्चे के बारे में सोचिए जो एक ऐसे समुदाय में बड़ा हो रहा है जहां उसकी पारंपरिक भाषा का इस्तेमाल कम होता जा रहा है। दादा नानी को सैकड़ों शब्द पता थे, माता पिता को उनसे कम शब्द पता है और बच्चे उनको शायद बहुत कम शब्द पता है उस कम्युनिटी के बारे में।
1: Absolutely, and one day some of these words may disappear completely. And when a language disappears, what disappears with it? Stories, songs, names of plants, traditional ecological knowledge, ways of understanding the world. In fact, listeners, an entire library can disappear without a single book being burnt. And now let's come home to India, because when we talk about indigenous and tribal communities, India has an extraordinary story to tell.
0: बहुत सारी कहानियाँ कहने को हैं प्रशांत। हमारा देश अनुसूचित जनजाति समुदायों की अद्भुत विविधता का घर है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जंगलों से लेकर झारखंड और उड़ीसा की पहाड़ियों तक, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, कई क्षेत्रों तक आदिवासी समुदाय भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक अहम हिस्सा हैं।
1: नवीन, यू वुड रिकॉल एज रविंद्रनाथ टैगोर ब्यूटीफुली सेड, द हाईएस्ट एजुकेशन इज दैट व्हिच डज नॉट मेरली गिव अस इंफॉर्मेशन बट मेक्स आवर लाइफ इन हार्मनी विद ऑल एग्जिस्टेंस, एंड परहैप्स दैट इज वन लेसन ट्रेडिशनल कम्युनिटीज कैन रिमाइंड टू द मॉडर्न वर्ल्ड।
0: प्रशांत, तो अब हम इस दिन को कैसे बना सकते हैं? बहुत छोटी सी बात है, एक बहुत छोटी सी शुरुआत कर सकते हैं। आदिवासी समुदायों के बारे में जानिए, उनके बारे में पढ़िए, सीखिए, उनका संगीत सुनिए, उनकी कला को जानिए, और अगर आप इस तरह के क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ के समुदाय के लोगों से मिलिए, उनकी संस्कृति को पहचानिए, परंपरागत तरीकों को उनको ढूंढिए और उनसे बात करने की कोशिश कीजिए।
1: एंड व्हेन बाइंग हैंडीक्राफ्ट्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स और अदर ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स, व्हेनेवर पॉसिबल सपोर्ट जेन्युइन ट्राइबल एंड इंडिजिनस आर्टिजंस एंड बिजनेसेस।
0: तो इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर तरक्की और विरासत, इनमें से किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं, बल्कि जरूरत है हम आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं भी अपना सकते हैं और पारंपरिक ज्ञान का सम्मान भी कर सकते हैं।
1: And perhaps that is the real beauty of India. India doesn't merely have diversity, India lives diversity. And listeners, when diversity survives, the world becomes richer. The Nagasaki Memorial Day and the August Kranti Din or Quit India Movement Day.
0: और जैसा कि हमने

0: कार्यक्रम के शुरुआत में बताया था कि विश्व आदिवासी दिवस के अलावा आज के दिन दो और महत्वपूर्ण अवसर भी हैं, नागासाकी मेमोरियल डे और अगस्त क्रांति दिवस यानी भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। और आज का दिन इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि ये दोनों अवसर हमें दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुनाते हैं।
1: Absolutely. One reminds us of the devastating cost of war, the other reminds us of the courage it takes to fight for freedom. On this day in 1945, at exactly 11:02 in the morning, an atomic bomb was dropped on the city of Nagasaki in Japan.
0: और कुछ ही सेकंड में एक आम दिन भयानक तबाही में बदल गया। हजारों जाने गई, घर और इमारतें नष्ट हो गईं और जो लोग बच गए उन्हें रेडिएशन के लंबे समय तक रहने वाले असर का सामना करना पड़ा।
1: And that is why remembering Nagasaki

0: असर का सामना करना पड़ा.
1: एंड दैट इज व्हाई रिमेंबरिंग नागासाकी इज नॉट सिंपली अबाउट रिमेंबरिंग समथिंग दैट हैपेंड मोर देन 8 डेकेड्स अगो. इट इज अबाउट आस्किंग अ क्वेश्चन दैट रिमेन्स रेलेवेंट इवन टुडे. हाउ मच डिस्ट्रक्शन आर वी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग एंड हाउ मच पीस आर वी केपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग. द ह्यूमन साइड ऑफ हिस्ट्री इज व्हाट नागासाकी मेमोरियल डे आस्क्स अस टू रिमेंबर.
0: और अब आइए जापान से भारत चले, क्योंकि 9 अगस्त का दिन हमारे लिए एक और अहम मतलब रखता है. अगस्त क्रांति दिवस 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत का प्रतीक.

0: Listeners, the country at that time was under British rule. The Second World War was underway, and on the 8th of August in 1942, the All India Congress Committee passed the Quit India Resolution in Bombay, and Mahatma Gandhi gave the country a powerful call, do or die.
1: और ठीक अगले ही दिन 9 अगस्त को गांधी जी और कई अन्य प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया। अब यहाँ एक खास बात सामने आती है। नेता तो जेल में थे, लेकिन आंदोलन नहीं रुका। 84 साल पहले 1942 में देश की सड़कों पर एक ऐसा जनसैलाब आया था जिसकी स्मृतियां प्रशांत आज भी भारतीयों को प्रेरित करती हैं। 9 अगस्त को ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी।
0: Indeed, students, workers, farmers, women, people from towns and villages joined protests, processions and strikes. At that time, people had to physically travel, meet others, distribute pamphlets, organize meetings and spread the message themselves.
1: प्रशांत, ये आंदोलन देश के इतिहास का एक ऐसा अनोखा आंदोलन था जो उस वक्त के अग्रणी नेताओं के बिना चला, कि इसलिए ये आज भी जन आंदोलनों की एक मिसाल है और सबक भी कि आम जनता अगर कुछ ठान ले तो बहुत कुछ कर सकती है। उनमें से कई लोग जानते थे कि इसमें शामिल होने का मतलब गिरफ्तारी, हिंसा या मौत भी हो सकती है, और शायद यही बात अगस्त क्रांति को इतना प्रभावशाली बनाती है। आज़ादी का आंदोलन सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं था जिनके नाम हमारी किताबों में मिलते हैं, इसे हजारों आम लोगों ने भी आगे बढ़ाया जिनके नाम शायद हमसे ज्यादातर लोग कभी नहीं जान पाएंगे।
0: So perhaps on this day there is one question worth carrying with us. If previous generations gave us the gift of freedom and the lesson of peace, what are we going to pass on to the generations that come after us?
1: तो ये थी डेटलाइन के बाद अब वक्त है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास जाने का और ये समझने का कि क्या कुछ उनके पास खास है।
0: The Har Ghar Tiranga campaign begins today and will run through the 17th of this month. Listeners, the initiative is aimed at encouraging citizens to hoist the national flag and to participate in activities celebrating patriotism, national unity and India's cultural heritage. The campaign, which began in 2022 as part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrations, has since evolved into one of the country's largest public participation movements. Let's listen to a report.

0: हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जा रहा है। यह अभियान हर घर तिरंगा पहल का 5वां वर्ष है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और तब से यह देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। इस पहल का उद्देश्य देशवासियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाने वाली गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इस वर्ष का अभियान विशेष महत्व रखता है। यह अभियान देशभक्ति के एक अनूठे उत्सव में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत को एक साथ लाता है। उत्सव के हिस्से के रूप में पूरे देश में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन आयोजित किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: प्रशांत, दिल्ली में इस अभियान के अंतर्गत बीजेपी की लोकसभा सांसद बांसुरी स्वराज ने मालवीय नगर में पंडित मदन मोहन मालवीय के स्मारक पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी और इसके बाद पिलंजी गांव से ग्रेटर कैलाश तक तिरंगा यात्रा निकाली। मीडिया से बात करते हुए

0: सुश्री स्वराज ने कहा कि बीजेपी ने आज से एक हफ्ते का अभियान शुरू किया है, जिसके दौरान पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता राष्ट्रीय नायकों और शहीदों के स्मारकों पर जाएंगे।
1: भारत अपना 80th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने आज से एक सप्ताह की मुहिम शुरू करी है, जहां पर हम हमारे राष्ट्र के नायक, जितने भी हमारे शहीद स्मारक हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, लोकल RWAs, MWAs और स्थानीय निवासियों के साथ जाकर, हमारे स्वच्छता वॉरियर्स के साथ यहां पर आकर स्वच्छता का अभियान भी शुरू करेंगे और पुष्पांजलि का भी कार्यक्रम करेंगे।
2: West Bengal has made significant progress under the center's Gyan Bharatam mission, surveying and documenting more than 3.5 lakh manuscripts within about 1.5 months of joining the initiative. More from our correspondent.
3: West Bengal Information and Cultural Affairs (INCA) department has been functioning as the nodal department for the Union Ministry of Culture's Gyan Bharatam mission since May 14 last. According to official figures, a total of 350,394 manuscripts had been surveyed and documented across the state as of July 29th. State Information and Cultural Affairs Secretary Soumitra Mohan participated in a national workshop on manuscript digitization under the Gyan Bharatam mission held at Hotel Ashok in New Delhi recently. The workshop focused on preserving and digitally documenting India's rich manuscript heritage. Officials said West Bengal's strategy of extending the survey beyond conventional repositories has played a key role in identifying valuable collections. In addition to libraries and archives, survey teams have covered monasteries, temples, royal collections and other custodial institutions, leading to the discovery of rare Tibetan, Newari and Sanskrit manuscripts. To widen public participation, the department has published advertisements in 19 newspapers inviting information on privately held manuscripts. Survey teams are also working in educational institutions and other potential repositories in coordination with district magistrates and district information and cultural affairs offices. Launched by the Union Ministry of Culture, the Gyan Bharatam mission aims to identify, document, preserve and digitize India's vast manuscript heritage, making these invaluable knowledge resources accessible for research and future generations. Sushmita Mondol, Akashvani News, Kolkata.
0: और अब रुक करते हैं गोवा का, जहां पे एक ऐसी प्रतियोगिता हो रही है जिसमें पेशेवर शेफ और कुलिनरी छात्र एक साथ आ रखे हैं और साथ ही स्वस्थ और टिकाऊ खान पान के तरीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। हाल ही में दक्षिण गोवा में इंडिया कुलिनरी चैलेंज 2026 आयोजित किया गया और जानकारी हमारे संवाददाता से।
4: द फर्स्ट प्रिलिमिनरी राउंड ऑफ द इंडिया कुलिनरी चैलेंज 2026 वॉज ऑर्गेनाइज एट द VM सागावकर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन एट राय इन साष्टी। The Interstate Professional Culinary Competition was jointly organized by the Directorate of Food and Drug Administration, Goa, the Culinary Forum of Goa, and the Food Safety and Standards Authority of India. 16 teams participated in the South Goa round. Guardian Angel Kursade and two teams from VM Sagarkar Institute have qualified for the final round to be held in Goa in September. The next preliminary round will be held in North Goa on August 19, followed by rounds in Mumbai, Indore, Ahmedabad, Bengaluru, and Hyderabad. The competition, conducted in professional chefs and culinary student categories, aims to create awareness about the Eat Right India initiative and encourage safe, healthy and sustainable food practices. For Parikrama, Mahesh Sobre, Akashwani News, Panji.
0: परिक्रमा में पलटते हैं अब एक और पन्ना और खेल की दुनिया की ओर चलते हैं। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल कर लिया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की खिलाड़ी को पराजित किया।
2: इंडियाज मेडल टैली राइजेस टू 3 एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। बसंत कुमार मेघवाल वन अ सिल्वर इन हाई जंप व्हाइल शाहनवाज खान विंस अ ब्रॉन्ज इन द लॉन्ग जंप टुडे। इन द मेंस हाई jump, 19-year-old Meghwal cleared his personal best of 2.21 meters to win a silver medal. He became the first Indian to win a medal in the high jump at the World Under-20 Championships. In the men's long jump, Shahnawaz clinched bronze with a best effort of 7.84 meters.

0: और अब याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को आजादी का सफर।
1: 9 अगस्त स्वतंत्रता सेनानी सैयद अहमदुल्ला कादरी की जयंती है। उनका जन्म 1909 में हैदराबाद में शमसुल्लाह कादरी के घर हुआ था। शमसुल्लाह कादरी प्रसिद्ध लेखक थे जिन्होंने सैयद को काफी कम उम्र में साहित्यकारों से परिचित कराया।
2: सैयद अहमद कादरी ने प्रसिद्ध समाचार पत्र सल्तनत की स्थापना की। उन्होंने पैसा और तारीख नामक दो समाचार पत्रों के लिए भी लिखा। 1946 में कादरी हैदराबाद राज्य के पहले पत्रकार थे जिन्होंने उर्दू समाचार दैनिक सल्तनत में एक राष्ट्र सिद्धांत के पक्ष में लिखा था। उन्होंने राष्ट्रव्यापी आंदोलन में शामिल होने का फैसला किया और आंध्र प्रदेश राज्य विधान परिषद के सदस्य बने। वे आंध्र प्रदेश राज्य हज समिति के अध्यक्ष भी रहे।
1: कादरी ने जीवन भर कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। वे लुत्फुद्दौला ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। सैयद अहमदुल्ला कादरी को 1966 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। 5 अक्टूबर 1985 को उनकी मृत्यु हो गई। स्वतंत्रता सेनानी सैयद अहमदुल्ला कादरी को हमारा सादर नमन।
2: 9 अगस्त त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती की पुण्यतिथि है। उनका जन्म 1889 में वर्तमान बांग्लादेश के मैमनसिंह में हुआ था। वो 1906 में मात्र 7 वर्ष की उम्र में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए और ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य बन गए। 1908 में उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए पहली बार गिरफ्तार किया गया जिसके परिणाम स्वरूप वे शिक्षा पूरी नहीं कर सके।
1: क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के कारण त्रैलोक्यनाथ को 1914 में कलकत्ता में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और बारीसाल षड्यंत्र के मामले के कारण अंडमान भेज दिया गया।
0: और अब वक्त है उन तमाम हस्तियों को, उन पर्सनालिटीज को जानने का जिनकी आज जयंती या पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले बात हिंदी के जाने माने लेखक, व्यंगकार, पत्रकार और पटकथा लेखक मनोहर श्याम जोशी की। आज ही के दिन 1933 में उनका जन्म हुआ था। कई रचनाएं उन्होंने लिखी लेकिन उनकी जो रचनाएं थी वो सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं थी। भारतीय टेलीविज़न के शुरुआती दौर में जो सीरियल्स आए उनमें भी मनोहर श्याम जोशी की लेखनी ने अपना पूरा पूरा सहयोग दिया। हम लोग और बुनियाद एक ऐसे ही धारावाहिक हैं जिसकी पटकथा और लेखन से उन्होंने घर घर अपनी पहचान बनाई। सुनते हैं बुनियाद।

0: जी मेरे को नाटक के रिहर्सल में जाना है।
1: इसी नाटक नौटंकी के शौक में बिगाड़ी है अपनी पोजीशन।
2: गाने बजाने और शेर व शायरी का शौक तो आपको भी बहुत ज्यादा था मास्टर जी।
1: ज्यादा तो मैंने कभी कोई चीज की ही नहीं लाजो जी। गाने में भजन कीर्तन से नहीं भटका और शेर व शायरी में गालिब और इकबाल से। लेकिन मैंने सुना है बरखुरदार तो अनारकली में उलझे।
3: Listeners, today is the birth anniversary of renowned Italian scientist Amedeo Carlo Avogadro, who played a vital role in the intersection of physics and chemistry. He is noted for his contribution to molecular theory known as Avogadro's Law, and in tribute to him, the ratio of the number of elementary entities in a substance to its amount of substance is known as the Avogadro constant, and is one of the seven defining constants of the International System of Units.
4: Aaj Hindi ke prasiddh upanyaskar, nibandhakar aur sampadak Shiv Pujan Sahai ki bhi jayanti hai. सरल भाषा, सामाजिक सरोकार और मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी हुई उनकी रचनाएं थी और बहुत कुछ उन्होंने ऐसा लिखा जो गांव, समाज और संस्कार को आज भी जोड़े हुए है।
3: Listeners, today is the birthday of Carnatic vocalist T.V. Ramachandran. He received the prestigious award of Madras Music Academy's Sangeet Kalanidhi in 2012. He is a recipient of the Sangeet Natak Academy Award in 2003 and was honored with the Padma Bhushan in 2003.
4: अब रुख करते हैं ओडिशा साहित्य की ओर या उड़िया साहित्य की ओर। गंगाधर मेहर, जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, ओडिया भाषा के

0: प्रसिद्ध कवि थे। साधारण परिवेश से निकलकर उन्होंने अपने काव्य प्रतिभा के बल पर साहित्य में एक विशिष्ट स्थान बनाया था।
1: Listeners, today is the birthday of gymnast Deepa Karmarkar. Born in 1993, she first gained attention when she won a bronze medal at the 2014 Commonwealth Games in Glasgow, becoming the first Indian female gymnast to do so in the history of the Games. For her performance in Rio Olympics 2016, she was honored with the Rajiv Gandhi Khel Ratna in August of
0: 2016. को याद करने का अवसर देती है। एस आर रंगनाथन, पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में उनका योगदान इतना महत्वपूर्ण है कि उन्हें भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहा जाता है। आज के दिन 1892 में उनका जन्म हुआ था और आज देश के पुस्तकालयों की व्यवस्था और पुस्तकालय विज्ञान की चर्चा रंगनाथन के योगदान के बिना अधूरी मानी जाती है। और अब मैं और प्रशांत रुख कर रहे हैं बॉलीवुड का, जहां आज जयंती है हिंदी के मशहूर निर्देशक सावन कुमार टाक की।
1: Yes, listeners, renowned film director, producer and lyricist. He directed several successful films including Sajan, Bina Sohagan, Southern and many others.
0: और बहुत ही खूबसूरत गीत है किशोर कुमार की आवाज़ में, जिंदगी प्यार का गीत है। आइए उसके साथ छोड़े जा रहे हैं सावन कुमार टाक की एक बेहतरीन फिल्म का ये गीत है।

0: तो देखा एक ही तारीख कितनी विविध प्रतिभाओं को अपने साथ जोड़ी हुई है। कोई साहित्य की दुनिया में अपनी छाप छोड़ गया, किसी ने शिक्षा और किसी ने पुस्तकालय विज्ञान को नई दिशा दी। आज के अंक में बस इतना ही। मुझे और प्रशांत को दीजिए इजाजत, लेकिन आप सुनते रहिए परिक्रमा।
1: नमस्कार, नमस्कार।

0: தொடர்வது ஹிந்தியில் செய்தி அறிக்கை டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।
2: हर घर तिरंगा, आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है।
1: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र शामिल होंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गृहमंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी से हर घर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हजारों लोग इस यात्रा में तिरंगे के साथ शामिल हुए। मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। इससे पहले गृहमंत्री पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से है। गृहमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान चीनी मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय करने पर बल दिया ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 2,09,000 से ज्यादा मकानों को मंजूरी दी गई है। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। महिला सिंगल्स फाइनल में आज अश्मिता ने चीन की हान क्यानशी को हराकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: தொடர்வது டெல்லி அஞ்சல்.
1: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सरफिरोजी। श्रोताओं, भारत आज ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास को प्राथमिकता देते हुए नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तेज गति से विस्तार किया जा रहा है। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा अब केवल भविष्य की संभावना नहीं बल्कि वर्तमान की एक मजबूत वास्तविकता बन चुकी है। सौर और पवन ऊर्जा की बढ़ती स्थापित क्षमता, घरेलू विनिर्माण में विस्तार, ऊर्जा भंडारण, हरित हाइड्रोजन और नई तकनीकों के विकास ने भारत के ऊर्जा क्षेत्र को नए चरण में पहुंचाया है। इसी क्रम में 31 जुलाई को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना यानी PMSSY को मंजूरी दी। ये योजना ऊर्जा भंडारण के साथ 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने पर केंद्रित है। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता किस तरह तेजी से बढ़ रही है, सौर और पवन ऊर्जा इस परिवर्तन के प्रमुख आधार क्यों बन रहे हैं, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना किस तरह फ्लोटिंग सोलर और ऊर्जा भंडारण को बढ़ावा दे सकती है और हरित हाइड्रोजन आधारित परिवहन में भारत ने किस महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल किया है। श्रोताओं, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा में पिछले एक दशक के दौरान उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। वर्ष 2014 में भारत की सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 2.82 गीगावाट थी। ये क्षमता 30 जून 2026 तक बढ़कर 162.15 गीगावाट हो चुकी है, यानी एक दशक से कुछ अधिक समय में सौर ऊर्जा क्षमता में 53 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। ये बदलाव केवल बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों तक सीमित नहीं है। सोलर पार्क, रूफटॉप सौर ऊर्जा, सौर कृषि पंप और अब फ्लोटिंग सौर ऊर्जा जैसी नई व्यवस्थाएं भारत के ऊर्जा परिदृश्य को व्यापक बना रही हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में वितरित सौर ऊर्जा ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस दौरान जोड़ी गई 44.61 गीगावाट सौर क्षमता में लगभग 16.3 गीगावाट यानी करीब 36% वितरित सौर ऊर्जा से आया। इसमें रूफटॉप सौर ऊर्जा और पीएम कुसुम के तहत स्थापित क्षमता का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इससे स्पष्ट है कि भारत का सौर परिवर्तन केवल बड़े बिजली संयंत्रों तक सीमित नहीं।

0: है, ये घरों, खेतों और स्थानीय स्तर तक पहुंच रहा है। अब बात करते हैं भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा के एक नए और महत्वपूर्ण आयाम फ्लोटिंग सौर ऊर्जा की।
1: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना भारत में फ्लोटिंग सौर ऊर्जा को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना का उद्देश्य ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक यानी FSPV परियोजनाओं को समर्थन देना है। योजना के तहत कम से कम 2 घंटे की ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी, जिसकी कुल क्षमता 10,000 मेगावाट होगी। इससे पीक डिमांड के समय बिजली की अतिरिक्त मांग पूरी की जा सकेगी। फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं में सौर पैनल जलाशयों और जल निकायों की सतह पर लगाए जाते हैं। इससे बड़े पैमाने पर भूमि की आवश्यकता कम होती है और उपलब्ध जल संसाधनों के साथ सौर ऊर्जा उत्पादन की नई संभावनाएं भी जन्म लेती हैं। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के लिए 5,070 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। योजना से हर वर्ष लगभग 1 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आने की उम्मीद है। इस योजना का महत्व केवल अतिरिक्त सौर क्षमता विकसित करने तक सीमित नहीं है। ऊर्जा भंडारण को सौर ऊर्जा के साथ जोड़ने से दिन में उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को आवश्यकता के समय इस्तेमाल करने में मदद मिल सकती है।
0: श्रोताओं, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा में सौर ऊर्जा के साथ पवन ऊर्जा भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुकी है। आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में।
2: भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में पवन ऊर्जा क्षमता में 6.057 गीगावाट की अब तक की सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। इसके साथ ही 30 जून 2026 तक देश की कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता बढ़कर 57.44 गीगावाट हो गई है। पवन ऊर्जा से वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 106 अरब यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ, जो पिछले वित्त वर्ष के 83 अरब यूनिट की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। भारत वर्तमान में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में दुनिया में चौथे स्थान पर है। मार्च 2014 में देश की पवन ऊर्जा क्षमता लगभग 21.04 गीगावाट थी, जो मार्च 2026 तक बढ़कर 56.09 गीगावाट हो गई। पवन ऊर्जा की खासियत ये भी है कि इसका उत्पादन सौर ऊर्जा के साथ बेहतर तालमेल बना सकता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पवन ऊर्जा उत्पादन का लगभग 45% हिस्सा पीक डिमांड के समय आता है। इससे ग्रिड की विश्वसनीयता मजबूत करने में मदद मिल सकती है। पवन टर्बाइन के घरेलू विनिर्माण में भी तेजी आई है। मार्च 2026 तक भारत की विंड टर्बाइन विनिर्माण क्षमता थी लगभग 24 गीगावाट, जबकि 2014 में ये करीब 10 गीगावाट थी। इस तरह सौर और पवन ऊर्जा मिलकर भारत के स्वच्छ ऊर्जा मिश्रण को मजबूत कर रहे हैं।
0: श्रोताओं, नवीकरणीय ऊर्जा की कहानी केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं है, अब स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल परिवहन जैसे क्षेत्रों में भी नए अवसर पैदा कर रहा है। इसका एक बड़ा उदाहरण है भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन।
3: 17 जुलाई 2026 को भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन को जीन सोनीपत रेल खंड पर हरी झंडी दिखाई गई। ये ट्रेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से ट्रेन के भीतर ही बिजली पैदा करती है। इसके संचालन के दौरान मुख्य उप उत्पाद के रूप में जल वाष्प निकलती है और टेल पाइप से कार्बन उत्सर्जन नहीं होता। भारत की ये हाइड्रोजन ट्रेन स्वदेशी तकनीक और आत्मनिर्भरता की दिशा में भी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 10 कोच वाली इस ट्रेन में 2 ड्राइविंग पावर कार हैं, जिनकी कुल क्षमता 2400 किलोवाट है। इसकी परिचालन गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा और डिजाइन गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाइड्रोजन की आपूर्ति के लिए जींद में समर्पित हाइड्रोजन भंडारण और रीफ्यूलिंग व्यवस्था भी विकसित की गई है। ट्रेन के संचालन के शुरुआती चरण में ही ये 1200 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर चुकी है और 3200 लीटर से अधिक डीजल की बचत दर्ज की गई है। ये उपलब्धि दिखाती है कि भारत स्वच्छ ऊर्जा को केवल बिजली उत्पादन में ही नहीं बल्कि परिवहन क्षेत्र में भी अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
0: श्रोताओं, सौर और पवन ऊर्जा के तेजी से विस्तार के साथ ऊर्जा भंडारण की आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं। सौर ऊर्जा का उत्पादन सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करता है, जबकि पवन ऊर्जा का उत्पादन हवा की गति पर। इसलिए भविष्य की ऊर्जा व्यवस्था के लिए केवल उत्पादन क्षमता बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा। हमें ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता होगी जो जरूरत के समय बिजली उपलब्ध करा सके और ग्रिड को स्थिर बनाए रखे। यहीं पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, पंप्ड स्टोरेज, स्मार्ट ग्रिड और फ्लोटिंग

सौर ऊर्जा जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ जाती है। श्रोताओं, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्रांति अब कई महत्वपूर्ण आयामों को एक साथ आगे बढ़ा रही है। पहला है अधिक स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, दूसरा ऊर्जा भंडारण और ग्रिड की विश्वसनीयता, तीसरा घरेलू विनिर्माण और रोजगार, और चौथा परिवहन तथा उद्योगों में स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग। वर्ष 2025-26 में भारत ने 55.3 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता जोड़ी, जो अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि है। मार्च 2026 तक देश की कुल गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 283.46 गीगावाट हो चुकी थी। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की दिशा में सौर और पवन ऊर्जा के साथ साथ ऊर्जा भंडारण, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ परिवहन की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा अब उस चरण में प्रवेश कर रही है जहां सूर्य, हवा, जल, हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण मिलकर देश के भविष्य की ऊर्जा व्यवस्था को आकार दे सकते हैं। स्वच्छ ऊर्जा से ऊर्जा सुरक्षा से आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भरता से विकसित भारत, यही भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्रांति की व्यापक दिशा है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, प्रस्तुति सहायक है अक्षत ममगई। नमस्कार।

0: ध्वजः राष्ट्रगीतं च देशभक्तेः अद्वितीयोत्सवे एकत्रम् आनयतः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य पुडुचेरी नगरस्य मुरुगा थिएटर सिग्नल इत्यस्मिन् स्थले हर घर तिरंगा यात्रायै हरित पताकां प्रदर्शितवान्। अत्रावसरे उपराज्यपालः के कैलासनाथनः, पुडुचेरी स्थलस्य गृहमन्त्री ए नमस्सिवयमः, कृषि कृषक कल्याण मंत्री जी एन एस राजशेखरन, बीजेपी अध्यक्षः वीपी रामलिंगम इत्येते तत्र उपस्थिताः आसन्। ध्वजान् धारयन्तः सहस्रशः जनाः अस्यां यात्रायां सोत्साहं भागं गृहीतवन्तः। इतः पूर्वं गृहमन्त्री गोरीमेडु स्थिते आरक्षक प्रशिक्षण क्रीडांगणे पुडुचेरी आरक्षक सेनायै राष्ट्रपति आरक्षक ध्वजः इति संप्रदान समारोहे भागम् अभजत। पुडुचेरी आरक्षक सेनां वर्धापयन् अमित शाहः अवदत् यत् राष्ट्रपति आरक्षक ध्वजः इति सम्मान प्राप्तिः कस्यापि अनुशासित आरक्षक बलस्य जीवने अतीव गौरवपूर्णः क्षणः भवति।
1: राष्ट्रपति ध्वज किसी भी डिसिप्लिन फोर्स के लिए उसके जीवन काल का सबसे गौरवपूर्ण क्षण होता है। पुदुचेरी पुलिस भले ही संख्या में 5000 से कम हो, मगर आप इस देश की आध्यात्मिक धरोहर को संभाले हुए पुदुचेरी की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और पुदुचेरी के सम्मान की रक्षा करने का काम करते हैं।
0: सः अकथयत् यत् यद्यपि पुडुचेरी आरक्षक सेनायां 5000+ न्यूनाः आरक्षकाः सन्ति, तथापि केन्द्रशासित प्रदेशस्य सुरक्षायाः, आन्तरिक सुरक्षायाः च उत्तरदायित्वम् एतेषां हस्तेषु अस्ति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चल दूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय अन्वेषण अभिकरणेन केरल राज्यस्य मलप्पुरम जनपदे अवैध विस्फोटक राशि ग्रहण प्रकरणे अपरः आरोपी निगडितः। संस्थया सूचितं यत् आरोपी गतदिने मलप्पुरम जनपदस्य मंजेरी स्थानात् निगृहीतः। अवधेयमिदं यत् असौ मुख्य षड्यंत्रकारीषु अन्यतमः अथ च अस्मिन् प्रकरणे प्राप्तानां विस्फोटक द्रव्याणां अवैध प्राप्तौ सह संलग्नः आसीत्। एतत् निगडनम् एनआईए संस्थया शुक्रवासरे कर्नाटक राज्यस्य विजयपुर स्थानात् त्रयाणाम् अन्य आरोपिणां निगडनानन्तरम् अभवत्, येन अस्मिन् प्रकरणे निगृहीतानां संख्या आहत्य 10 संजाता। नवीन वृष्टया ओडिशा राज्ये पुनः जलाप्लावस्य स्थितिः वर्धिता जाता। राज्यस्य बहवः प्रदेशाः पूर्वमेव जलाप्लावेन दुष्प्रभाविताः सन्ति। इदानीम् अनेकाः नद्यः पुनः जलस्तर वृद्धिं प्राप्नुवन्ति। बालासोर जनपदे जलका नदी अपि च भद्रक जनपदे वैतरणी सालन्दी नद्यः जलस्तर वृद्धिं प्राप्नुवन्ति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह अद्य प्रोक्तवान यत् ऑपरेशन सिंदूर इति सैन्याभियानेन विश्वपटले एषः संदेशः प्रेषितः यत् भारतं स्वनागरिकाणां सुरक्षायै सहैव देशस्य महिलानां सिंदूरं रक्षितुं यत्किमपि कर्तुं शक्नोति।
2: पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष नागरिकों पर कायराना आतंकी हमला हुआ था, तो उसके बाद हमारी बहादुर सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। हमने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके सरपरस्तों को नेस्त नाबूद कर दिया और सारी दुनिया को यह बता दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वह किसी हद तक जा सकता है। हमने दुनिया को बताया कि हमारी नारी शक्ति के सिंदूर की रक्षा करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।
0: रक्षामंत्री नवदिल्ल्याः मुख्य सैन्य चिकित्सालये आयोजितस्य सिंदूर महारक्तदान यात्रा रक्तदान शिविरस्य उद्घाटन समारोहे एतत् अवोचत्। रक्षामंत्रिणा पाकिस्ताने स्थितानां

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Today, being Sunday, we'll be taking calls on your mutual fund related queries. But do remember that we do not address fund specific queries. You can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. Along with my co-anchor Sonu Sood, I am Sarabjeet Kaur.
1: धन्यवाद सरबजीत. नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके प्रश्न इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फ़ोन कर सकते हैं, 2331-4444, 2371-0481 और 2371-7106. श्रोताओं, इससे पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता. आशुतोष, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
2: जी, धन्यवाद.
1: और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर.
0: Foreign portfolio investors infuse over 12,900 crore rupees into Indian equities during first week of August. Global crude oil prices tumble last week, and domestic investors to focus on inflation data, corporate earnings results and geopolitical developments for Q's next week.
1: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अगस्त के पहले सप्ताह के दौरान भारतीय शेयर बाजार में 12,900 करोड़ रुपए से अधिक का किया निवेश. कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में पिछले सप्ताह आई गिरावट और घरेलू निवेशकों का ध्यान अगले सप्ताह संकेतों के लिए मुद्रास्फीति के आंकड़ों, कंपनी आमदनी से जुड़े नतीजों और भू राजनीतिक गतिविधियों पर केंद्रित रहेगा.
0: And before we go any further in the program, may we once again remind our listeners, views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or

0: consult a registered professional before taking any investment decision. We also advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सरब जी।
0: जी।
1: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI अगस्त के पहले हफ्ते में भारतीय शेयर बाजार में शुद्ध खरीदार बने रहे। ताजा डिपॉजिटरी आंकड़ों के अनुसार FPI ने इस महीने अभी तक घरेलू शेयर बाजार में 12,921 करोड़ रुपए का निवेश किया है। जुलाई में खरीदारी में आई गति अगस्त में भी जारी रही है। ये तेजी घरेलू आर्थिक आंकड़े और कंपनियों की तिमाही आमदनी मजबूत रहने के बल पर आई है। इस बीच ऋण बाजार में निवेश का रुख मिला जुला रहा है। अभी तक अगस्त में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने जनरल लिमिट की श्रेणी में ऋण प्रतिभूतियों में 622 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। हालांकि फुली एक्सेसिबल और वॉलंटरी रिटेंशन श्रेणियों से आलोच्य अवधि के दौरान 350 करोड़ रुपए से अधिक की निकासी हुई है। और अब आज के हमारे पहले श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं चेन्नई से काशीनाथ। आपका स्वागत है मार्केट मंत्र में, सवाल पूछे।
2: गुड इवनिंग मार्केट मंत्र
1: जी। गुड इवनिंग।
2: मेरा सवाल है, मेरे पास दो फ्लेक्सी कैप फंड है, जैसे कि क्वांट फ्लेक्सी कैप और जेम फ्लेक्सी कैप, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए, फंड अच्छा है कि बुरा है। धन्यवाद
3: जी। देखिए, कोई भी फ्लेक्सी कैप फंड्स काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं। फंड मैनेजर के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो किस टाइप के मार्केट सेगमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और किसी भी फंड को अच्छे या बुरे आकलन के लिए आप बहुत छोटे अवधि के रिटर्न्स के ऊपर उस पर अपनी कोई भी धारणा ना बनाएं, थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेंड को देखें। और अगर फंड थोड़ा हाल फिलहाल में अंडर परफॉर्म करता भी है तो उससे बहुत ज़्यादा हताश ना हो, उसको थोड़ा टाइम दें। तो आप इन दोनों फंड्स का आकलन करें, थोड़ा 3-5 साल के रिटर्न्स देखें कि अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट कैटेगरी में बाकी पीयर्स के अगेंस्ट कैसे कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप इसमें अपना निर्णय लें। बहुत जल्दी ना करें बेचने की, क्योंकि अब इक्विटी में भी टैक्स लगता है। तो अगर आप कोई भी जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं फंड स्विच करने का, तो आपके लिए एक टैक्स का बड़ा कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होता है, तो डोंट बी इन अ हरी।
1: सो आशुतोष जी, सेबी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें कुछ तथ्य आए हैं जिन पर हम आपकी टिप्पणी चाहेंगे। उसमें कहा गया है कि SIP को ज़्यादा से ज़्यादा जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो एडॉप्ट कर रहे हैं, और जो अकाउंट्स हैं वो भी बड़े हैं, और जो वैल्यू है अगर हम पिछले वित्त वर्ष में देखें तो 40 लाख अकाउंट ऐड हुए टोटल नंबर में, और एवरेज नेट मंथली SIP इन्वेस्टमेंट भी 25.8% बढ़ी। तो इसको आप कैसे देखते हैं, ये क्या भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भरोसा बढ़ रहा है निवेशकों का?
3: जी बिल्कुल, मेरी राय में म्यूचुअल फंड्स एक रिटेल इन्वेस्टर के इक्विटी मार्केट्स में पार्टिसिपेट करने का, ब्रॉडली इक्विटी और डेट मार्केट्स में पार्टिसिपेट करने का एक बेहतरीन साधन है। वेल रेगुलेटेड, वेरी ट्रांसपेरेंट और रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये फंड्स आते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स की अच्छे से यहाँ पर प्रोटेक्शन की व्यवस्था है, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा सेटअप है। म्यूचुअल फंड्स एक काफ़ी रिलायबल और रोबस्ट वेल रेगुलेटेड प्रोडक्ट है, और इनमें इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ना हाल फिलहाल के सालों में ये एक अच्छा संकेत है। और SIP और भी अच्छा ट्रेंड है, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स में जिस तरह के उतार चढ़ाव देखे जाते हैं, तो अगर इन्वेस्टर्स एक साथ अपना पैसा ना लगाकर रेगुलर डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो वो मार्केट के उतार चढ़ाव से बहुत जल्दी निराश या परेशान नहीं होते। तो SIP एक बेहतरीन साधन है मार्केट्स में इन्वेस्ट करने का। दूसरा ये भी होता है कि जब भी मार्केट गिरती है, SIP निवेशक आमतौर पर देखा गया कि बहुत जल्दी मार्केट से भाग नहीं खड़े होते
1: जी
3: मार्केट फॉल में, और ये लंबे समय में इक्विटी मार्केट से रिटर्न बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप डाउन मार्केट में सब कुछ बेचकर भाग ना जाएं। तो SIP उसमें भी काफ़ी हेल्प करता है रिटेल इन्वेस्टर्स की बने रहने में मार्केट के उतार चढ़ाव के माहौल में। तो बहुत अच्छे ट्रेंड्स हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले सालों में जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है, अगर ये बरकरार रहता है, तो भारतीय निवेशकों, रिटेल आम निवेशक के लिए ये काफ़ी लाभदायक हो जाने में सक्षम है।
0: Ashutosh, we'll come back to you on that. Meanwhile, we connect with our next caller from

0: மும்பை. அமித் ஜி, பிளீஸ் ஆஸ்க் யுவர் க்வெஸ்சன்.
1: நமஸ்தே மேடம், மேன் அமித் பாத் கர் ரஹா ஹூன் மஹாராஷ்டிர வாராணசி சே.
0: ஜி,
1: மேரா சவால் ஹை ஜோ பேங்க் ஆஃப் பரோடா கா NFO நியூ ஃபண்ட் ஆஃபர், ஏக் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஹை, உஸ்மே மைனே அபி அபி இன்வெஸ்ட்மென்ட் கியா ஹை, தோ வோ அச்சா ஹை யா நஹி ஜரா பதாயியே. ஆர் தூஸ்ரா சவால், அப் மேன் இண்டியா ஃபர்ஸ்ட் கே பாரே மே பூச் சக்தா ஹூன் கே மேடம்?
0: சாரி,
1: ஹலோ. இண்டியா ஃபர்ஸ்ட் மே பி மைனே இன்வெஸ்ட்மென்ட் கியா ஹை 5 சால் கே லியே. ஹர் சால் மைனே 1-1 லாக் ருபே இன்வெஸ்ட் கர்த்தா ஹூன், ஆர் 5 சால் தக் வோ பைசே பர்னா யா 7 சால் கே பாத் முஜே மிலேகா, லேக்கின் வோ இன்வெஸ்ட்மென்ட் அச்சா ஹை யா நஹி யே பி பதாயியே. தேங்க் யூ.
2: ஆஷுதோஷ் ஜி, ஸ்ரேணி கே ஹிசாப் சே ஆப் பதா சக்தே ஹை.
3: ஜி, தோ தேகியே, பேங்க் ஆஃப் பரோடா கே ஆப்னே NFO கி பாத் கரி. தேகியே, மே ஆப்கோ சலாஹ் தூங்கா கி ஆம் தௌர் பர் ஆப் NFO மே நிவேஷ் கர்னே சே பச்சே. அபி ஆப்னே லகா தியா ஹை, தோ தேகியே, நயே ஃபண்ட் கே பாரே மே குச் பி ஜான்காரி தேனா கஹனா முஷ்கில் ஹோதா ஹை, ஜப் தக் கி உஸ்கா குச் ட்ராக் ரிகார்ட் நஹி பில்ட் ஹோதா கி ஃபண்ட் மேனேஜர் கிஸ் தரஹ சே மேனேஜ் கர் ரஹே ஹை, கிஸ் டைப் கே ஸ்டாக்ஸ் மே இன்வெஸ்ட் கர்தே ஹை, கியா உன்கா போர்ட்ஃபோலியோ பனானே கா ஸ்ட்ராட்டஜி ரஹதா ஹை. தோ நயே ஃபண்ட் கே பாரே மே குச் பி டிப்பணி கர்னா படா முஷ்கில் ஹை, லேக்கின் ஆம் தௌர் பர் மே ஆப்கோ யே சலாஹ் தூங்கா கி பஹத் சாரே அச்சே ரன்னிங் வெல் ரன்னிங் ஃபண்ட்ஸ், லாங் ஸ்டாண்டிங் ட்ராக் ரிகார்ட் வாலே ஃபண்ட்ஸ் உபலப்த ஹை ஆப்கே பாஸ். ப்ரெஃபர் கரியே கி நயா ஃபண்ட் அகர் குச் ஐசா காஸ் நஹி தே ரஹா ஹை ஜோ கி எக்ஸிஸ்டிங் ஃபண்ட் சே ஆப்கோ ஜோ இன்வெஸ்ட்மென்ட் நீட் பூரி நஹி ஹோ ரஹி ஹை, தோ ஹி ஆப் NFO கி தரஃப் ஜாயே. அதர்வாய்ஸ் ஆப் லாங் ஸ்டாண்டிங் ஃபண்ட்ஸ் மே ஹி அப்னா நிவேஷ் கரே. பஹரால் இஸ் ஃபண்ட் மே க்யூக்கி ஆப் நிவேஷ் அபி கர் சுகே ஹை, தோ அப் ஆப் இஸ்கோ தேக்கியே தோடா தைரிய சே, ஃபண்ட் மேனேஜர் கோ போர்ட்ஃபோலியோ பனானே தீஜியே கிஸ் டைப் கா வோ பர்ஃபார்ம் கர்த்தா ஹை, கம் சே கம் சால் டேட் சால் பாத் ஆப் சோச்சேகா இஸ் பாரே மே கி யே ஃபண்ட் கா க்யா கர்னா
2: ஹை. தில்லி சே ஹமாரே அகலே ஷ்ரோதா கே கே மதன் ஜுட் கயே ஹை, பஹத் பஹத் ஸ்வாகத், சவால் பூச்சே.
4: ஹா நமஸ்கார், மார்க்கெட் மந்த்ரா ஜி கோ
2: आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, थोड़ा सा आप यदि अपना स्थान चेंज करें. थोड़ी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है, अगर आप दोबारा हमें फिर फोन कर सकें फिर से.
4: आपकी आवाज मुझे बिल्कुल क्लियर.
2: हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए बताइए.
4: हाँ, एक क्वेश्चन ये है कि मैंने 2-3 फंड में शिफ्ट किया हुआ 5-5 हजार के, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, तो उसमें HDFC मिड कैप ऑपर्चुनिटी फंड, मिड फंड मल्टी कैप फंड, इन सब से मैं सेटिस्फाई हूँ, लेकिन एक्सिस लार्ज कैप फंड उसमें मेरा CAGR सिर्फ 7-8% आ रहा है, तो पिछले 4 साल से मेरा शिफ्ट चल रहा है, मैं इसको कंटिन्यू करूँ या डिसकंटिन्यू करूँ, मेरा ये क्वेश्चन.
3: जी देखिए, पहली बात तो आपका ओवरऑल आपने आपकी स्ट्रैटेजी सही है कि आपने डाइवर्सिफाइड फंड्स को चुना है, आपके पास एक मल्टी कैप फंड है, एक लार्ज कैप फंड है, एक मिड कैप फंड है, तो ओवरऑल आपने बहुत ज़्यादा सेक्टर थीमेटिक फंड्स की तरफ आप नहीं गए हैं, ये तो इसमें मैं आपकी सराहना करूँगा कि आपकी चॉइस ऑफ कैटेगरी ऑफ फंड्स अच्छा है. एक्स इज़ लार्ज कैप पिछले कुछ साल थोड़े निराशाजनक रहे हैं इस फंड के लिए ज़रूर, क्योंकि परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं दे पाए हैं, तो अगर आप काफ़ी निराश हैं इस फंड से तो आप अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन ले सकते हैं.
0: वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम दिल्ली. दिनेश जी, सवाल पूछें.
5: नमस्कार, मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली अशोक विहार से.
0: जी,
5: मेरे दो क्वेश्चन हैं. एक तो ये है कि जब गोल्ड फंड और सिल्वर फंड बढ़ते हैं या कम होते हैं, तो डिफरेंट म्यूचुअल फंड हाउसेज जो है वो गोल्ड या सिल्वर फंड या ETF के जो परसेंटेज इंक्रीज है वो अलग अलग क्यों दिखाते हैं, जबकि इट शुड बी सेम. दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे गोल्ड फंड है वो उसको FOF कहते हैं, फंड ऑफ फंड, तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि उस हम इन्वेस्टर जो है उसके भी एक्सपेंस बियर करता है, और वो फंड जिस फंड में इन्वेस्ट कर रहा है उसका भी एक्सपेंस होता होगा, वो भी बियर करता है, क्योंकि हमें जो पता चलता है केवल फर्स्ट फंड का ही एक्सपेंस रेशो पता चलता है, दूसरे फंड का एक्सपेंस रेशो नहीं पता चलता है. थैंक यू.
3: जी, तो पहला सवाल आपका कि गोल्ड और सिल्वर फंड्स में जब सारे ही ये फंड्स गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं तो इनके प्राइस में या इनके रिटर्न्स में डिफरेंस क्या होता है. काफ़ी अच्छा सवाल है, आपने काफ़ी आपने ऑब्जर्व किया उस बेसिस पे आप ये पूछ रहे हैं. तो देखिए, गोल्ड ETF, सिल्वर ETF, इनका जो आपको रिटर्न मिलता है वो डिपेंड करता है मार्केट के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर. तो जो ETFs होते हैं वो ट्रेड करते हैं

स्टॉक मार्केट में, और स्टॉक मार्केट में ये ज़रूरी नहीं है कि जो अंडरलाइंग एनएवी है फंड का, क्लोजिंग प्राइस या फंड्स का ट्रेडेड प्राइस एनएवी के आसपास हो। काफ़ी बार देखा गया है कि फंड्स प्रीमियम पे या कभी कभी डिस्काउंट पर भी ट्रेड करते हैं, तो जो इन्वेस्टर के रिटर्न्स होते हैं वो इन पर उनके ट्रेडेड प्राइस पर निर्भर करते हैं, ना कि अंडरलाइंग एनएवी पर, तो इस वजह से इनके रिटर्न्स डिफर कर जाते हैं। दूसरी बात, जो गोल्ड फंड ऑफ फंड्स होते हैं

0: फंड ऑफ फंड्स होते हैं, वो बेसिकली आप देखिएगा कि हर फंड कंपनी के पास एक ETF वेरिएंट होता है और एक FOF वेरिएंट होता है. FOF वेरिएंट सिंपली ये करता है कि आपका पैसा जो कलेक्ट करता है वो उठाकर ETF में लगा देता है, गोल्ड उन्हीं का जो गोल्ड ETF होता है. तो यहाँ पर भी जो आपको NAV डिक्लेयर होती है फंड ऑफ फंड्स की, वो ETF के ट्रेडेड स्टॉक मार्केट प्राइस पर निर्धारित होती है. इसलिए इनके रिटर्न्स डाइवर्ज करते हैं अलग अलग फंड में. कुछ फंड्स में जिनमें ट्रेडिंग वॉल्यूम काफ़ी अच्छे होते हैं, प्रीमियम या डिस्काउंट कम रहता है, NAV के क्लोज ट्रेड करते हैं, वो काफ़ी इन्वेस्टर सेंट्रिक है, मतलब वो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात है और उनके रिटर्न्स NAV के रिटर्न्स के आसपास रहते हैं. लेकिन जो फंड्स में ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होती है इसलिए प्राइस काफ़ी वेरी कर जाता है, प्रीमियम या डिस्काउंट पर रहता है, उनके रिटर्न्स में आपको काफ़ी बार कुछ उठापटक दिखेगी, NAV के क्लोज नहीं होगा. और आपका ये आंकलन बिल्कुल सही है कि क्योंकि ये FOFs ETFs में इन्वेस्ट करते हैं तो जो FOF के एक्सपेंस की लेयर होती है वो ETF के एक्सपेंस के ऊपर होती है. ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होता है, एक मामूली सा एक्स्ट्रा लेयर होता है, क्योंकि FOF अपने आप में कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ पैसे इकट्ठा कर आप जो पैसे उसमें निवेश करते हैं वो पैसा इकट्ठा करके ETF में लगा देता है. वहाँ पे और कोई काम नहीं हो रहा है, कोई और फंड मैनेजर का ऐसा कोई रोल नहीं होता है खास, तो वो एक्सपेंस की लेयर काफ़ी थिन होती है लेकिन ज़रूर होती है. तो अगर आप एक्सपेंस देखना चाहते हैं तो आप किसी भी फंड कंपनी के ETF का और FOF का, आप दोनों का अगर एक्सपेंस देखेंगे और उनको ऐड कर देंगे तो आपको थोड़ा अंदाज लगेगा कि आप टोटल एक्सपेंस कितना दे रहे हैं. आपको कौन सा चुनाव करना चाहिए, देखिए अगर आपके पास स्टॉक मार्केट में आप वैसे भी स्टॉक्स में निवेश करते हैं, आपके पास डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट है तो आप ETF की तरफ जा सकते हैं. लेकिन सिर्फ एक गोल्ड फंड में निवेश करने के लिए अगर आप आपके लिए कन्वीनियंट ज़्यादा होगा कि आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फॉर्मेट में FOF ही खरीदें, लेकिन अगर आप आमतौर पर वैसे भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आप ज़रूर ETF की तरफ भी जा सकते हैं. हाँ, ETF खरीदते हैं तो ज़रूर आप खरीदने से पहले देखिए कि क्या ये यूनिट्स NAV से बहुत ज़्यादा डिस्काउंट या प्रीमियम पे हैं. अगर प्रीमियम पे हैं तो आप समझिए कि आप एक्स्ट्रा खर्चा उठा रहे हैं. अगर 10 रुपये की NAV की चीज़ मार्केट में 12 रुपये पर ट्रेड हो रही है तो आप ये मानिए कि 10 रुपये का सामान आप 20% महंगा खरीद रहे हैं. तो ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा. NSE की वेबसाइट पे हर फंड की INAV बताई जाती है. INAV होता है रियल टाइम NAV इस फंड की क्या होनी चाहिए, उससे आप क्लोजिंग प्राइस को कंपेयर कर ये आप निर्धारित कर सकते हैं.
1: और अब शंकर भोपाल से हमें कॉल कर रहे हैं. शंकर जी आपका स्वागत है, सवाल पूछें.
2: मेरा पहला सवाल बड़ा जनरल है. क्या एक फंड हाउस में हम दो बैंक डिटेल्स ऑपरेट कर सकते हैं क्या, सो दैट मेरी जब मर्जी हो जहां से मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहूं या जिधर मैं पैसा रखना चाहूं मेरा ही अकाउंट है दोनों, क्या दो अकाउंट एक ही म्यूचुअल फंड हाउस में जैसे कोटक या टाटा या कोई भी अपरॉड कर सकते हैं. दूसरा सवाल मेरा है सर, मेरा एक्चुअली कुछ इन्वेस्टमेंट टाटा में है, टाटा म्यूचुअल फंड और कुछ एक्सिस में है, क्या इसमें कुछ अच्छे फंड हैं जो अच्छा कर रहे हैं, जैसे मिड कैप हुआ में की कैटेगरी में हुआ या लार्ज एंड मिड कैप हुआ एक्सिस में हुआ, तो इसमें कोई अच्छे फंड एक्सिस और टाटा इन दो में मेरा तो बता सकते हैं क्या प्लीज, थैंक यू.
0: आपका पहला सवाल, क्या दो बैंक अकाउंट में ऑपरेट कर सकते हैं सेम AMC में, जी बिल्कुल. देखिए म्यूचुअल फंड्स में जो भी आपका इन्वेस्टर डिटेल होता है वो फोलियो लेवल पर मैप होता है. आपकी नॉमिनेशंस, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सारी चीज़ें पर फोलियो होती हैं. तो आप अगर सेम फंड में भी दो अलग अलग फोलियो से आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये पॉसिबल है कि आप दोनों फोलियो में अगर अलग अलग बैंक अकाउंट से आपने इन्वेस्ट किया है तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है, आप बिल्कुल दो अकाउंट से मैनेज कर सकते हैं. बस ये आप ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी फोलियो में रिडम्पशन डालेंगे तो पैसा हमेशा उसी बैंक अकाउंट में आएगा जो उस फोलियो पे मैप्ड है. ये एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म है क्योंकि पैसा हमेशा निवेशक के खाते में ही जाएगा और उसी खाते में जाएगा जो आपने अपने फोलियो में मैप किया हुआ है. तो आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है. अगर आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता है मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में मैप करना तो ये फैसिलिटी आपके पास पॉसिबल है, ये फ्लेक्सिबिलिटी और ये निर्णय आपका है. दूसरा टाटा एक्सिस, देखिए मैं आपको राय दूंगा कि बहुत ज़्यादा किसी एक AMC से आप के लिहाज में ना देखें. आप पहले देखिए कि आपका निवेश की ज़रूरत क्या है और किस तरह का फंड आपके लिए सूटेबल रहेगा, उसके बाद आप उस कैटेगरी के फंड्स में चुनाव करें. तो स्टार्टिंग पॉइंट ये नहीं होना चाहिए कि टाटा या एक्सिस या कोई और AMC, स्टार्टिंग पॉइंट ये होना चाहिए कि आपकी निवेश की ज़रूरत क्या है और उसके लिए सही फंड कौन सा है, वहां से अपने फंड के चुनाव की शुरुआत करें.
3: लेट्स आस्क जितेंद्र फ्रॉम जयपुर व्हाट हिज क्वेश्चन इज.
4: हाँ हेलो सर, जैसे इतना दिन मार्केट में सुनने के बाद ऐसा हमको लगा कि नए निवेशक के लिए सबसे पहले कोई इंडेक्स फंड ले या एग्रेसिव हाइब्रिड फंड ले, तो क्या अगर एग्रेसिव हाइब्रिड फंड

0: इक्विटी सेविंग ले वो भी चलेगा, और निफ्टी 50 या जैसे कोई भी इंडेक्स फंड की जगह मिड कैप वर्ल्ड इंडेक्स फंड ले तो क्या चलेगा क्या नए निवेशक के लिए?
1: जी पहला आपने पूछा इक्विटी सेविंग्स, देखिए इक्विटी सेविंग्स आप ले सकते हैं लेकिन आपको अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल करना होगा। इक्विटी सेविंग्स फंड में आप मानिए कि आपका करीब 35-40% पैसा ही इक्विटी मार्केट का एक्सपोजर आपको मिलता है, बाकी जो इक्विटी का एक्सपोजर इन फंड्स में होता है वो डेरिवेटिव्स के जरिए हेज्ड रहता है, तो उसमें आपको मार्केट के रिटर्न्स मार्केट गेन्स नहीं मिलते हैं। तो इक्विटी सेविंग्स फंड्स आमतौर पर कंजर्वेटिव निवेशक जो एक मॉडेस्ट रिटर्न विद मॉडेस्ट रिस्क की उनकी अभिलाषा रहती है, रेगुलर इनकम सीकर्स हैं उनके लिए इक्विटी सेविंग्स को आमतौर पर देखा जाता है कि एक अच्छी कैटेगरी माना जाता है। तो अगर आपको मॉडेस्ट रिटर्न्स चाहिए तो आप इक्विटी सेविंग्स की तरफ जा सकते हैं। देखिए शुरुआती निवेशक के लिए मेन एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स इसीलिए ही रिकमेंड किए जाते हैं क्योंकि जिन नए निवेशक हैं जिनको इक्विटी मार्केट्स के उतार चढ़ाव का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उनके निवेश करते ही अगर मार्केट 20-25% कभी गिर जाती है तो वो निवेशक काफ़ी चांस होता है कि वो हताश होकर मार्केट को छोड़कर चले जाएंगे और फिर ज़िंदगी में शायद कभी वो इक्विटी मार्केट्स में वापस मुड़कर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इस पॉसिबिलिटी से बचे रहने के लिए एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स रिकमेंड किए जाते हैं क्योंकि इनमें 25% करीब पैसा आपका डेट में लगा रहता है, तो हमेशा ही जब भी मार्केट गिरती है फंड्स मार्केट से कुछ कम गिरते हैं तो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलता है नए इन्वेस्टर्स को। बाकी ये एडवांटेज इक्विटी सेविंग्स फंड में भी मिलेगा क्योंकि उनमें तो इक्विटी और भी कम होता है, लेकिन हाँ फिर आपको रिटर्न्स भी उनसे कम मिलेगा। दूसरा आपका सवाल इंडेक्स फंड में क्या मिड कैप इंडेक्स फंड की तरफ जा सकते हैं, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए मेरी सलाह होगी नहीं, इसी रीज़न से क्योंकि मिड कैप फंड्स में काफ़ी वॉलीटिलिटी रहेगी, अगर मार्केट गिरती है तो काफ़ी धड़ाम से गिर सकते हैं मिड कैप्स, तो सिर्फ इस रीज़न से मैं आपको सलाह दूंगा कि एज अ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट मिड कैप में इन्वेस्ट करने से बचें।
2: और असम से सुकृत है हमारे अगले कॉलर, आपका बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछिए।
3: गुड इवनिंग मैडम
2: जी। गुड इवनिंग
3: जी, मेरा सवाल ये है कि हमने चिल्ड्रेन बेनिफिट फंड मतलब SBI का वो म्यूचुअल फंड SIP किया था 4000 करके जी
2: जी,
3: तो उसमें से ये चिल्ड्रेन फंड ये मेरे लिए कैसे रहेगा, बच्चे के लिए मतलब सही रहेगा या नहीं रहेगा, और उसके लिए मेरे पास कोई बॉन्ड पेपर तो नहीं है अभी, तो उसके लिए कौन सा कैसे मेरे को बॉन्ड पेपर डाउनलोड करके मतलब हार्ड पेपर रखना है, यही मेरा सवाल है
1: जी। बच्चे के लिए निवेश किया है, लंबे समय का निवेश है तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, लंबे समय के लिए आप धैर्य के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक इक्विटी फंड है, आप ये मानकर चलिए कि इक्विटी मार्केट्स के उतार चढ़ाव के साथ साथ ये जब मार्केट गिरेगी तब तक ये फंड भी गिरेगा, तो अगर आप वो उतार चढ़ाव को बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं उससे आप बहुत हताश नहीं होंगे, लंबे समय के इन्वेस्टमेंट के लिए आप रख सकते हैं। आपको एक जैसे मैं समझ पाया हूँ, देखिए म्यूचुअल फंड्स में कोई बॉन्ड पेपर इस तरह से या सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप आपको नहीं मिलता है जैसे कि बॉन्ड्स में होता है। आप म्यूचुअल फंड कंपनी जिसमें भी आपका SBI में है तो आप SBI के इन्वेस्टर सर्विसेज में रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको एक वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ईमेल कर दें, आपके पास ईमेल पे आता भी होगा अगर आपने अपने फोलियो में अपना ईमेल मैप किया हुआ है, तो काफ़ी संभावना है कि आपका जब जब भी इसमें निवेश होता है SIP इंस्टॉलमेंट जाती है आपको एक स्टेटमेंट ईमेल करी जाती होगी, लेकिन अगर वो नहीं आ रही है तो आप SBI म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ आपको इन्वेस्टर सर्विस सेंटर का नंबर मिलेगा, वो नंबर डायल करके आप उनको अपना फोलियो या कुछ जानकारी वो मांगेंगे और आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आपको एक स्टेटमेंट इशू कर दें, आपको वो ईमेल पे मिल जाएगा।
2: हाँ वो बॉन्ड मांग रहे हैं क्योंकि उन्होंने अभी सो बॉन्ड आपके आपको लगता है फिजिकली होना चाहिए?
1: तो म्यूचुअल फंड्स में ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं इशू किया जाता बॉन्ड्स की तरह, तो स्टेटमेंट आपका जो स्टेटमेंट होता है वही आपका ओनरशिप का एंटाइटलमेंट होता है।
4: लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम दिल्ली, विनोद जी सवाल पूछे।
5: पूरी मार्केट मंत्रा टीम को मेरी तरफ से नमस्कार।
4: जी नमस्कार।
5: मेरी एक्सपर्ट टीम से मेरा ये सवाल है कि रिबैलेंसिंग के बारे में हम जैसे रिबैलेंसिंग करते हैं ना, तो उसमें एक तो टैक्सेशन का इशू आ जाता है और दूसरा वो जो फंड फिर हमारे सेविंग अकाउंट में आ जाता है वहां से खर्च हो जाता है, तो इसका कोई दूसरा रास्ता है कि टैक्सेशन से कैसे बचा जाए, और अगर हम लंबे समय तक रिबैलेंस ना करें तो इसका हमारी रिटर्न पे क्या प्रभाव पड़ता है? और एक सवाल और है कि अगर एक पर्टिकुलर फंड हाउस का हम स्विच करते हैं तो उसी फंड हाउस के सारे बाकी स्कीम्स दिखाता है वो, अगर मुझे किसी दूसरी फंड हाउस में जाना है तो कैसे करते हैं, स्विच करने में दिक्कत आती है?
1: जी देखिए पहला सवाल आपका टैक्सेशन को लेकर, देखिए टैक्सेशन एक हकीकत है, आप उससे बच नहीं सकते हैं। हाँ आपको ये देखना है कि आप रिबैलेंस

0: फाइनेंसिंग अगर आप डिसिप्लिन से करते हैं तो आप टैक्स से बच सकते हैं, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आप बहुत जल्दी जल्दी अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस ना करें। शायद साल में आप अगर एक बार अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं, रीबैलेंस करते हैं, तो मेरा ख्याल वो पर्याप्त है। और अपना कोई रूल बनाइए कि जब भी आपकी एसेट एलोकेशन 7-8-10% से डेविएट करेगा तभी आप रीबैलेंस करेंगे, और साल में एक बार करेंगे। और रीबैलेंसिंग के लिए फिर आप वही फंड्स यूज़ करिए जिनमें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की श्रेणी में आते हैं, वही यूनिट्स वही फंड्स के साथ आप करें। आपके पास 1,25,000 तक का एनीवेज टैक्स एग्जम्पशन है इक्विटी में। तो अगर आप ये सारे टूल्स यूज़ करते हैं, और उसके बाद आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि अपनी रीबैलेंसिंग को, आप अगर किसी एक साल में रीबैलेंस करना पड़ रहा है, मार्केट में इतना उठा पटक हुआ है कि आपको रीबैलेंस करना पड़ेगा, तो दो अगर आप फाइनेंशियल ईयर में कुछ आप मार्च में अगर यूनिट्स बेचते हैं, कुछ अप्रैल में बेचते हैं, तो आपको दो फाइनेंशियल ईयर का 1,25,000 रुपए का कैपिटल गेन एग्जेम्पशन मिल जाता है। तो 2,50,000 तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप की चीज़ें आप फॉलो कर अपना टैक्स मिनिमाइज ज़रूर कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपने कहा कि अगर आप रीबैलेंस नहीं करते, तो देखिए आप रीबैलेंस अगर नहीं करते, मानिए आप 70% इक्विटी 30% डेट आपने अपने लिए एसेट एलोकेशन निर्धारित करी थी जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे थे, अब अगर इक्विटी मार्केट चल पड़ती है और ये 70% जो आपका वेटेज था ये बढ़कर 80% हो जाता है, तो वो आप थोड़ा सा एडिशनल रिस्क ले रहे हैं। बस इतना ही है कि आपका उसके बाद ज़्यादा आप इक्विटी में ओवर एक्सपोज्ड हो गए हैं एज अ पोर्टफोलियो। आपकी ज़रूरत के लिए क्या वो सही है, उचित है, या आपको रीबैलेंस करना आवश्यक है, ये आपकी निजी नीड्स क्या हैं, इन्वेस्टमेंट की आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप नहीं करेंगे तो आपका रिस्क रिटर्न थोड़ा वेरी करेगा, उसको आपको देखना है।
1: अगले कॉलर है फरीदाबाद से मनिंदर। मनिंदर जी अपना सवाल पूछें।
2: हाँ सर, ये मैं जानना चाह रहा था कि स्विच आउट करने में कितना टाइम लेना चाहिए कंपनी को। सपोर्ट 4th को हमने स्विच आउट किया है दूसरे फंड में, तो वो 2 दिन लगा देते हैं, क्या सही है?
0: जी, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में इसी तरह होता है, क्योंकि आप जिस दिन सिप से आप जिस दिन भी आप रिडम्पशन डालिएगा, तो अगर आप 3 बजे से पहले रिडम्पशन डालेंगे तो उस दिन जो रात को एनएवी फंड डिक्लेयर करेगा आपके, उस एनएवी पर आपकी यूनिट्स रिडीम होंगी। अगर दोपहर 3 बजे के बाद अगर आप रिडम्पशन डालते हैं तो अगले दिन शाम की आपको एनएवी मिलेगी, और उसके बाद 1-2 दिन जो बैंक ट्रांसफर में पैसा लगता है, अगर बीच में छुट्टी आ जाती है, शनिवार इतवार आ जाता है, तो वो दिन इसमें ऐड होंगे। तो 2-3 दिन लगते हैं और ये नॉर्मल है।
3: Alright, and now let's see how has been the movement of crude oil. Global crude oil prices declined last week following a deal between Iran and Oman to reopen the Strait of Hormuz. The two countries are also seeking to charge a fee on ships crossing the strait. During the week at the Intercontinental Exchange, ICE, Brent crude October futures plunged 5% to settle at $83.55 per barrel. West Texas Intermediate crude September futures tumbled 7.7% to end at $78.18 per barrel.
1: Still in commodities, सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में इस सप्ताह तेजी दिखाई दी। अमरीकी डॉलर में नरमी और अमेरिका के सरकारी बॉन्ड पर ब्याज दर में कमी के बीच सोने चांदी की कीमतों में बढ़त देखी गई। अमरीका के श्रम आंकड़े उम्मीद से कमजोर आने से अमरीकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में वृद्धि की आशंका कम हो गई, और इससे भी निवेशकों की धारणा को बढ़ावा मिला। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर अनुबंध वाले सोने की कीमत सप्ताह के दौरान 5.9% के उछाल से 1,51,820 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दर्ज हुई। इस बीच सितंबर अनुबंध वाली चांदी की कीमत 6.6% बढ़कर 2,31,466 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। उधर कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर अनुबंध वाला सोना सप्ताह के दौरान 7.1% की वृद्धि से $4,399.70 प्रति ट्रॉय आउंस पर पहुंचा। वहीं सितंबर अनुबंध वाली चांदी सप्ताह के दौरान लगभग 10% उछाल दर्ज करती हुई $63.49 प्रति ट्रॉय आउंस पर पहुंच गई।
3: All right, now let's take a quick look as to how the markets are expected to show up next week. The domestic investors are set to navigate a week packed with key market triggers, including macroeconomic data, quarterly earnings reports, and geopolitical developments. Markets are likely to take cues from foreign institutional investor inflows, commodity prices, and currency movements. Market participants will

0: closely monitor monthly mutual fund data, the quarterly bulletin of the periodic labor force survey, and retail and wholesale inflation prints. Globally, investors will focus on geopolitical developments surrounding the West Asia conflict, along with oil market reports from the International Energy Agency and the Organization of the Petroleum Exporting Countries.
1: कार्यक्रम का समय समाप्त होने को है, सो चर्चा को भी अब हम यहीं विराम देंगे. आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, आप आए और आपने हमारे सभी श्रोताओं के विस्तृत सवालों के इतने अच्छे जवाब दिए.
2: जी धन्यवाद.
0: लिसनर्स, बिफोर वी रैप अप टुडे शो, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस. Foreign portfolio investors infuse over 12,900 crore rupees into Indian equities during first week of August. Global crude oil prices tumble last week, and domestic investors to focus on inflation data, corporate earnings results, and geopolitical developments for Q's next week. And that's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Until then, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।
1: हर घर तिरंगा, आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है।
0: इस वर्ष यह अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र शामिल होंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गृहमंत्री अमित शाह ने पुद्दुचेरी से हर घर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हजारों लोग इस यात्रा में तिरंगे के साथ शामिल हुए। इससे पहले गृहमंत्री पुद्दुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से है। गृहमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान चीनी के मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय करने पर बल दिया ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है ताकि प्रत्येक

0: विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1,00,00,000 मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 2,09,000 से ज्यादा मकानों को मंजूरी दी गई है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में हुई दुर्घटना की जांच कर रखा है। इसे गंभीर घटना के रूप में दर्ज किया गया है। दोनों पायलटों की मादक पदार्थों के सेवन की जांच की गई। जांच पूरी होने तक दोनों पायलटों को ड्यूटी से हटा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि जांच और अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जनजातीय लोगों के अधिकारों, संस्कृति, परंपरा और योगदान को मान्यता देने के लिए आज दुनिया भर में विश्व जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है जनजातीय धाई सम्मान, जीवन और देखभाल का संरक्षण। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय प्रशांत कुमार सिन्हा। The Har Ghar Tiranga campaign is being celebrated nationwide to foster a sense of patriotism among citizens, strengthen national unity, and to promote India's cultural heritage.

0: தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி ஏஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष यह अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र शामिल होंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गृहमंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी से हर घर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हजारों लोग इस यात्रा में तिरंगे के साथ शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को ये स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही। श्री सिंह ने भारतीय रक्षा बलों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों और उनके आकाओं का सफाया किया। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान चीनी मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय करने पर बल दिया ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। झारखंड सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शनकारी छात्रों की अधिकतर मांगों को लेकर समझौते पर पहुंच गई है। राज्य सरकार ने 14वीं JPSSC प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023-25 की पिछली परीक्षाएं रद्द करने पर सहमति जताई है। परीक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा। हालांकि JSSC CGL परीक्षा रद्द करने और इसकी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कराने की छात्रों की मांग पर सहमति नहीं बनी है। छात्रों ने कहा है कि उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में इस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग खेलों से जुड़ते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देशवासियों से भारत के खिलाड़ियों का हमेशा उत्साह बढ़ाने की अपील की। स्कॉटलैंड के

0: திரைகானம் கேட்டீர்கள். தொடர்வது டெல்லி அஞ்சல்.
1: திஸ் இஸ் டெல்லி. பிளீஸ் ஸ்டாண்ட் பை ஃபார் ஆர் நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம். திஸ் இஸ் ஆகாஷ்வாணி. We now bring you program Swar Dharohar based on the archival inputs of Akashvani.
2: ये आकाशवाणी है. प्रस्तुत है आकाशवाणी आर्काइव्स के सहयोग से निर्मित कार्यक्रम स्वर धरोहर.
1: नमस्कार श्रोताओ, मैं आशुतोष
2: और मैं श्वेता आपका स्वागत करते हैं आज के स्वर धरोहर के स्वतंत्रता दिवस के विशेष कार्यक्रम में, जो समर्पित है उन वीरों को जिन्होंने हमें आजादी दिलाई.
1: तो चलिए शुरू करते हैं वो यात्रा जिसने 200 साल की गुलामी को तोड़कर भारत को स्वतंत्र राष्ट्र बनाया.

0: महात्मा गांधी जिन्होंने सत्य और अहिंसा से अंग्रेजों को झुकाया, सुभाष चंद्र बोस जिनकी आवाज तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा आज भी गूंजती है, उन्होंने जापान की मदद से भारत में ब्रिटिश सरकार पर हमला करने की योजना बनाई। भले ही फौज सफल न हो पाई लेकिन नेताजी का जोश आज भी देशभक्त युवाओं के दिलों में जिंदा है।
1: जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं की दूरदर्शिता और संघर्ष को भी हम सलाम करते हैं।
0: लेकिन श्रोताओं, जब हम आजादी की बात करते हैं तो सिर्फ उन चेहरों को याद करना काफी नहीं जिनके नाम किताबों में दर्ज हैं।
1: इस देश की आजादी में हजारों ऐसे नाम भी शामिल हैं जिन्हें इतिहास ने ज्यादा जगह नहीं दी, लेकिन उनका योगदान किसी भी मशहूर सेनानी से कम नहीं था।
0: क्या आपने कभी सुना है श्यामलाल गुप्त पार्षद का नाम? वो कवि जिनकी कलम से निकले देशभक्ति के गीत आज भी परेड में गूंजते हैं।
1: श्यामलाल गुप्त पार्षद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक सेनानी, पत्रकार, समाज सेवी और अध्यापक थे। वो 1916 से 1947 तक कर्मठ स्वतंत्रता सेनानी रहे। उन्होंने नमक आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये प्रसिद्ध गीत जिसे झंडा गीत के रूप में भी जाना जाता है, देश के महान स्वतंत्रता सेनानी श्यामलाल गुप्त पार्षद ने ही इस गीत की रचना की। 13 अप्रैल 1924 को कानपुर के फूलबाग में जलियावाला बाग दिवस पर पहली बार सार्वजनिक रूप से सामूहिक गान किया गया था। 15 अगस्त 1952 को इसे लाल किले में गाकर देश को समर्पित किया गया।
0: झंडा गीत भारत के हर महत्वपूर्ण अवसर पर गाया जाता है और ये देश के गौरव और देशभक्ति का प्रतीक बन गया है। आइए सुनते हैं इस गीत की कुछ पंक्तियाँ।

0: आंदोलनों में कई स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लिया। कई सेनानी ऐसे भी थे जो अज्ञात रह गए। आइए सुनते हैं उनमें से एक बहादुर सेनानी नैनीताल के रघुनंदन प्रसाद लोहिया जी के संस्मरण।
1: करो या मरो तथा अंग्रेजों भारत छोड़ो क्विट इंडिया हमारा नारा था। 28 अगस्त 1942 को पुलिस श्री लोकमान सिंह त्यागी को गिरफ्तार करके जसपुर से काशीपुर लाई। मैं यहाँ उनसे मिला। पुलिस ने उन्हें बुरी तरह पीटा तथा एक हाथ भी तोड़ दिया। मुरादाबाद जेल में हम सभी को शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न दिया गया, लेकिन किसी भी साथी पर इसका कोई प्रभाव न हुआ और आंदोलन के प्रति अडिग रहे।
2: ऐसे ही एक क्रांतिकारी थे लखनऊ के शिव प्रसाद पांडे, जिन्होंने युवाओं को संगठित कर अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाई। इनको भी जेल में बंद कर दिया गया। इनको और इनके साथियों को जेल में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
3: लखनऊ कैम जेल के अधीक्षक एक अंग्रेज क्या कहें, बल्कि वो दानव लेडली साहब था। उसको भी हम लोगों ने अपनी बहादुरी से एक भी चलने नहीं दी। तकली जो सूत काटने हैं दी जाती थी, उसे डोरी पानी भरने वाली बना देते थे। आटा पीसने को देते थे तो उसे दरिया की तरह दर देते थे। काफी हम लोगों को उसके लिए तन्हाई पड़ी, बेड़ी पड़ी, मत भंगे पड़े। उसने कहा कि अगर आप लोग चक्की घर में आटा नहीं पीसोगे तो आटा रोटी बनने हैं नहीं दूंगा। हम लोगों ने भी 9 महीने तक उस जेल में रहे। किसी भी सत्याग्रही ने एक भी छटाक आटा नहीं पीसा, केवल चने व गेहूं की घुघरी खा खा कर पूरी सजा काट दी।

0: श्रोताओ, जहां गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग चुना, वहीं कई युवाओं ने सशस्त्र क्रांति की राह अपनाई। इनमें प्रमुख थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और सुखदेव।
1: इन्हें विश्वास था कि अंग्रेजी हुकूमत सिर्फ सशस्त्र संघर्ष से ही खत्म होगी। भगत सिंह ने संसद में बम फेंका, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उनका मकसद था केवल अंग्रेजों को चेतावनी देना। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दे दी गई और वो इतिहास में अमर हो गए।
0: भगत सिंह से हुई आखिरी मुलाकात के बारे में उनकी माता जी ने क्या कहा था, आइए सुनते हैं।
2: आखिरी मुलाकात मेरे नाल ये गल्लां कीतियां उसने, बेबे जी तुसी आउणा ना जिद्दन मेरी फांसी होगी लाश लैण, जे तू आई तैनू गश पै जानी आ, तू रोवेंगी, तू रोई ना, गश खा के ना पई, लोग कहणगे भगत सिंह दी मां गश खा के पै गई आ, फिर देखी मेरा नाम बदनाम हो जाऊगा, तू ना आई, जे आया तां कुलवीर समावे ते लाश लै जावे, अब्बल ताई नी लाश देनी नी, इन्नी मैनू उधर पाड़ के जेल कढ़ण, तू इत्थे ना रही लाहौर, तू बंगी चली जाई, ते तेनू उत्थे सब कुछ आ जाया करूंगा।
1: भारत की आजादी की लड़ाई में महिलाओं ने भी कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, कस्तूरबा गांधी, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, दुर्गावती देवी, इन जैसी महिलाओं ने सत्याग्रह किया और आंदोलन का नेतृत्व भी किया। उषा मेहता, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, दुर्गावती देवी ने आजादी के बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं।
3: सन 1940 में जब मैं जेल गई थी तो मेरे साथ करीब करीब 60-70 आदमी जेल में गए थे। ये सब जेल पहुंच गए, जेल जाने के बाद सबको सजा हुई और सजा होने के बाद हम लोग रहे। इसके बाद हम लोगों ने जेल में सत्याग्रह करा, क्योंकि कुछ साथी हमारे ऐसे थे जिनको कुछ खाना ठीक से नहीं मिलता था, तो हम लोगों ने उनसे अनशन करा और अनशन पर हम लोगों को जेल वालों ने बहुत परेशान किया। 1942 में तीसरी बार जब जेल गए तब भी हमारे पति हमारे साथ में थे और हमारे साथ में 38 आदमी हमारे संग में थे। 38 चली और 38 में 38 लोगों को सजा हुई। उस सजा में 3-3 महीने की हम लोगों को सजा सुनाई गई।

0: गई, लेकिन हमारे शाहजहांपुर के और पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता ये सलाह किया करते थे कि भाई कुछ भी हो, हिंदुस्तान आजाद होना चाहिए और हम लोग अपनी तरफ से किसी बात की कमी नहीं रखेंगे।
1: हमारा महिलाएं अपने बहादुरी और अपना देश प्रेमी सब दिखाया है बार बार। हमारा इतिहास देखने से आपको मालूम है 1857 का उस लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई झांसी, बेगम हजरत महल, अनेक अनेक साधारण महिलाएं भी हमारा फौज को तो उन्होंने मदद दिया और बहुत सारे लोगों को मौत के घाट पे भी अंग्रेज ने पहुंचाया। और फिर महात्मा गांधी का तो आंदोलन में तो सामने ही है, तो बहुत महिलाएं भी उसमें है। और उसके अलावा भी हमारा बंगाल का तो टेररिस्ट मूवमेंट, हालांकि हम उसमें तो यकीन नहीं करते हैं, पर इसमें भी नौजवान लड़कियां अपने जान कुर्बानी किया। तो इसलिए एकदम से नज़रअंदाज करना बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात है, हमारा महिलाएं सिर्फ देश का आजादी नहीं है, अपने मुक्ति के लिए भी लड़ना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम सोचता है हमारा देश में हम सामाजिक दबाव बहुत ज्यादा महिलाओं के ऊपर तो लगता है, और इसके हटाने के लिए सबसे पहले हमको आजादी चाहिए और उसके साथ ही साथ नारी मुक्ति भी होना चाहिए।
2: सन 1921 का कांग्रेस आंदोलन हम लोगों के जीवन का एक बड़ा मोड़ बना। शायद उस समय का देश का विद्यार्थी वर्ग कुछ अधिक स्वाभिमानी और चिंतनशील रहा है, क्योंकि देखा गया कि बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने उस कांग्रेस आंदोलन को देश की आजादी की लड़ाई का सुअवसर समझा और वे उसमें जी जान से कूद पड़े।
3: कैप्टन राम सिंह का जन्म 15 अगस्त 1914 को हिमाचल प्रदेश में हुआ था। राम सिंह गोरखा स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ गीतकार और संगीतकार भी थे। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वे पहली गोरखा राइफल्स के बैंड में भर्ती हुए। वहां उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और पश्चिमी संगीत की शिक्षा ली।
4: इन्होंने कई गीत लिखे, उनमें से काफी प्रसिद्ध गीत है कदम कदम बढ़ाए जा। आइए सुनते हैं उनका ये गीत।
5: कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा।
4: जयप्रकाश नारायण, जिन्हें जेपी और लोकनायक, जनता के नेता के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय राजनीतिज्ञ, सिद्धांतकार और स्वतंत्रता सेनानी थे।
3: देश को आजाद कराने के लिए किसी ने बंदूकें उठाई तो किसी ने कलम से क्रांति लाई, किसी ने कविता लिखकर तो किसी ने जेल में बंद रहकर देश को जिंदा रखा। उन गुमनाम नायकों को भी याद रखना हमारा कर्तव्य है, जिनका नाम तो नहीं छपा लेकिन जिनका त्याग हमारी आजादी की बुनियाद बना।
4: आइए इस 15 अगस्त को हम झंडा फहराते समय इन सभी वीर सेनानियों के बलिदान को भी नमन करें।

0: कार्यक्रम स्वर धरोहर की आज की कड़ी के निर्माता थे आशुतोष कुमार, आलेख था दीपा कुमारी का और प्रस्तुति सहयोग था डिंपल का। कार्यक्रम में वाचन स्वर था आशुतोष और श्वेता का। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया अनुराग उपाध्याय और विशाल ने। यू वर लिसनिंग टू द वीकली प्रोग्राम स्वर धरोहर बेस्ड ऑन द आर्काइवल इनपुट्स ऑफ आकाशवाणी। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे थे आकाशवाणी आर्काइव्स के सहयोग से निर्मित साप्ताहिक कार्यक्रम स्वर धरोहर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: திரைகணம் நிறைவு பெற்றது. தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत, प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा, जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने लाभार्थियों को 1 करोड़ से अधिक घर सौंपकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3 लाख लोग विस्थापित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर इस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग खेलों से जुड़ते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देशवासियों से खिलाड़ियों का हमेशा उत्साह बढ़ाने की अपील की।
3: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की
4: जय।
3: भारत माता की
4: जय।
3: भारत माता की
4: जय।
2: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में 4th स्थान पर था। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।
5: आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है।
2: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े भारत छोड़ो आंदोलन का स्मरण किया।
6: To launch this campaign today on the August Gandhi Divas as we commemorate the Quit India Movement of 1942. Millions of Indians responded to this call and rose against the British with the unwavering resolve of do or die on this day. It is therefore deeply significant that we launch the Har Ghar Tiranga campaign from the historic islands on this historic day.
2: गृह मंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी में तिरंगा यात्रा को

0: रवाना किया। हजारों लोगों ने इस यात्रा में तिरंगे के साथ भागीदारी की। मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हुए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: झारखंड सरकार ने आंदोलनरत छात्रों की अधिकांश मांगों पर सहमति जताई है। राज्य के मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023 से 25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। आज सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद में मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ED जांच और आपराधिक मामलों की CID जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए IIT ISM IIM रांची और XLRI के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी। छात्रों ने कहा कि CBI जांच की मांग पर कोई समझौता नहीं होगा। इस बीच झारखंड लोक सेवा आयोग के 3 मौजूदा सदस्यों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। तीनों को CID ने कल पूछताछ के लिए तलब किया है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को ये स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही।
2: पहलगाम में धर्म पूछ कर हमारे निर्दोष नागरिकों पर कायराना आतंकी हमला हुआ था, तो उसके बाद हमारी बहादुर सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। हमने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके सरपरस्तों को नेस्त नाबूद कर दिया और सारी दुनिया को यह बता दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वह किसी हद तक जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने दुनिया को बताया कि हमारी नारी शक्ति के सिंदूर की रक्षा करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से है। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय निश्चित करना है।
3: ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान चीनी मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय करने पर बल दिया ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित

0: दिए गए हैं एक रिपोर्ट।
1: दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी में स्वीकृत 2,09,000 आवासों में से 2,03,000 से अधिक आवास महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए 16,600 से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जबकि करीब 22,000 आवास अनुसूचित जाति, 14,000 से अधिक अनुसूचित जनजाति और 75,000 से अधिक आवास अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित किए गए हैं। इस योजना में आवासों के स्वामित्व में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। पीएम आवास योजना शहरी की शुरुआत वर्ष 2015 में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं से युक्त हर मौसम के लिए उपयुक्त पक्के मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है। इसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है, जो वर्ष 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में हुई घटना की जांच कर रहा है। इसे गंभीर घटना के रूप में दर्ज किया गया है। दोनों पायलट की मादक पदार्थों के सेवन की जांच की गई। जांच पूरी होने तक दोनों पायलट को ड्यूटी से हटा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि जांच और अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जनजातीय लोगों के अधिकारों, संस्कृति, परंपरा और योगदान को मान्यता देने के लिए आज दुनिया भर में विश्व जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1994 में जनजातीय लोगों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिवस की शुरुआत की थी। इस वर्ष का विषय है जनजातीय धाय सम्मान, जीवन और देखभाल का संरक्षण। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरियाणा में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित पवित्र कलश वंदन यात्रा आज कंबोपुरा गांव पहुंची। बड़ी संख्या में लोगों ने संत श्री रविदास मंदिर में यात्रा का स्वागत किया। ये यात्रा गुरु रविदास की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश के काशी स्थित सीर गोवर्धनपुर से शुरू हुई थी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, आसाम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। ओडिशा में एक बार फिर तेज बारिश होने के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
3: उड़ीसा में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस सीजन में बैतरणी नदी में तीसरी बार बाढ़ आई है, जिससे जाजपुर और भद्रक जिलों के कुछ हिस्सों में फिर से पानी भर गया है। जबकि बैतरणी की एक शाखा कानी नदी के कारण जाजपुर जिले में फिर से बाढ़ आ गई है। IMD ने पूरे राज्य के लिए येलो वार्निंग जारी की है और अनुमान लगाया है कि उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम उड़ीसा के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के आसपास के इलाके में कम दबाव वाले सिस्टम के कारण भारी बारिश होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: चीन के पूर्वी तट से तूफान डॉल्फिन के टकराने से झेजियांग और फुजियान प्रांत प्रभावित हुए हैं। मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच शंघाई के दोनों हवाई अड्डों ने 1300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी हैं और 3,00,000 लोग विस्थापित हुए हैं। तूफान के तट से टकराने के बाद उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और धीरे धीरे कमजोर पड़ने की संभावना है। उज्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुंग पंडियन ने 65 किलो वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने आज कुल 285 किलो का भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद JPSC प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा। JPSC के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत

0: जो लोग खेलों से जुड़ते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देशवासियों से खिलाड़ियों का हमेशा उत्साह बढ़ाने की अपील की।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
0: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही। श्री सिंह ने भारतीय रक्षा बलों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों और उनके आकाओं का सफाया किया और भारत पर बुरी नजर डालने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। जेपीएससी प्रारंभ परीक्षा और वर्ष 2023-25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। आज सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की सीआईडी जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की बात भी कही गई है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। ओडिशा में एक बार फिर तेज बारिश होने के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। उज्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने आज कुल 285 किलो का भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Prime Minister Narendra Modi today met the medal winners of the Commonwealth Games 2026 at his residence in New Delhi. Sharing a video message, Mr. Modi said that those who participate in sports will

0: रूस और यूक्रेन ने रात भर एक दूसरे पर कई हमले किए, कई नागरिकों की मौत और कई घायल। इसराइल ने गजा के लिए अमेरिका की 15 सूत्री शांति योजना को खारिज किया। डॉल्फिन तूफान चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, रेड अलर्ट जारी, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द, 3,00,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। और विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में बसंत कुमार मेघवाल ने ऊंची कूद में रजत पदक जीता, शाहनवाज खान ने लंबी कूद में कांस्य पदक अपने नाम किया। अब समाचार विस्तार से। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अमेरिका के साथ किसी भी तरह की सीधी बातचीत नहीं हो रही, बल्कि केवल मध्यस्थों के माध्यम से संदेश भेजे जा रहे हैं। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार श्री अराघची ने कहा है कि कई देश ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत फिर शुरू करने के लिए अनुकूल स्थिति बनाने के प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक अमेरिका जून में दोनों पक्षों के बीच सहमति बने 14 बिंदुओं का पालन नहीं करता, तब तक ईरान अमेरिका के साथ दोबारा बातचीत नहीं करेगा। श्री अराघची ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य से यातायात प्रबंधन के लिए एक कानूनी तंत्र पर ओमान के साथ समझौता लगभग पूरा होने वाला है। हालांकि इस जलमार्ग को फिर से खोलना कुछ शर्तों के अधीन है। इसमें अमेरिका द्वारा समझौते का उल्लंघन करने पर मुआवजे का भुगतान भी शामिल है। रूस और यूक्रेन ने रात भर एक दूसरे पर हमले किए। इन हमलों में दोनों देशों के कई नागरिकों की मौत और कई घायल होने की खबर है। रूस के बेलगोरोद में यूक्रेन के ड्रोन हमले में 5 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा घायल हो गए।
1: क्षेत्रीय अधिकारियों ने बताया है कि हमले में 29 अपार्टमेंट भवन और 5 निजी मकान क्षतिग्रस्त हो गए। यूक्रेन के खार्किव में साल्तिवस के जिले में एक ऊंची आवासीय इमारत को रूस की मिसाइलों ने निशाना बनाया। क्षेत्रीय गवर्नर ओलेह साइनी हुबूब ने बताया कि इस हमले में 2 लोग मारे गए और 13 घायल हुए हैं। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार काला सागर में ओडिशा और आसपास के क्षेत्रों में दर्जनों मिसाइल और ड्रोन हमलों में 8 लोग घायल हो गए। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रात भर चले ड्रोन हमलों में यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र में तेल डिपो तथा सैन्य आपूर्ति केंद्रों को निशाना बनाया गया है। मंत्रालय ने दावा किया कि रात भर में क्रीमिया, काला सागर और आजोव सागर के ऊपर यूक्रेन के 153 ड्रोन मार गिराए गए। विश्व दर्पण के लिए मैं वीरेंद्र कौशिक।
0: दूसरी ओर यूक्रेन ने अमेरिका के साथ अपने पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली में मिसाइल इंटरसेप्टर की मासिक आपूर्ति के लिए समझौता किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बेलग्रेड में संवाददाताओं को बताया कि अमेरिका मासिक आधार पर यूक्रेन को मिसाइल इंटरसेप्टर की आपूर्ति करेगा। उन्होंने कहा कि ये देश की हवाई सुरक्षा आवश्यकताओं से अब भी कम रहेगी। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का ये बयान उनकी सर्बिया की पहली यात्रा के दौरान आया है। इस यात्रा का उद्देश्य आपसी सहयोग बनाना है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा के लिए 15 सूत्री योजना खारिज कर दी है। आज कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि हमास के पूरी तरह हथियार डालने तक इसराइल अपनी सेना वापस नहीं बुलाएगा। उन्होंने कहा कि इसराइल के अधिकारी आगे की कार्रवाई के बारे में अमरीका के साथ चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस ने पिछले महीने गजा में हमास के पूर्ण निरस्त्रीकरण के उद्देश्य से एक समझौते पर सहमति जताई थी। हालांकि हमास ने कहा है कि हथियारों को सौंपने की प्रक्रिया इस शर्त पर आधारित है कि इसराइल अपनी सैन्य कार्रवाई रोके और गजा से अपनी सेना वापस बुलाए। पिछले अक्टूबर में हुए प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते के बावजूद इसराइल का गजा में हमला जारी है। रूस ने रणनीतिक समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए भारत और हिंद महासागर तक रेल मार्ग विकसित करने की संभावना तलाशने का प्रस्ताव किया है। रूस के उप प्रधानमंत्री मराद खुसरूलिन ने कहा कि वैकल्पिक रेल मार्गों से होर्मुज और बास्फोरस जलडमरू मध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों से जुड़े जोखिम कम किए जा सकते हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के रास्ते भारत तक रेल संपर्क की संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है। ये प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है। प्रस्तावित रेल मार्ग से रूस को मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के रास्ते हिंद महासागर तक वैकल्पिक जमीनी संपर्क मिल सकता है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। जापान में आज नागासाकी पर अमेरिका के परमाणु बम हमले की 81वीं बरसी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची ने

0: परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की अपनी नीति दोहराई। जापान के प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की नीति परमाणु और प्रसार संधि एनपीटी के दायरे में काम करने की है। नागासाकी के पीस पार्क में आयोजित स्मृति समारोह में 90 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और सुबह 11:02 पर मौन रखा। 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी पर फैट मैन नामक प्लूटोनियम बम गिराया था। इस हमले में उस वर्ष के अंत तक करीब 74,000 लोगों की मौत हुई थी। इस हमले के बाद जापान ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया था। चीन के पूर्वी तट से तूफान डॉल्फिन के टकराने से झेजियांग और फुजियान प्रांत प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने तूफान के कारण देश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच शंघाई के दोनों हवाई अड्डों ने 1300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी, जबकि आसपास के क्षेत्रों में लगभग 3,00,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तूफान के तट से टकराने के बाद उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और धीरे धीरे कमजोर पड़ने की संभावना है। ओरेगन के यूजीन में अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बसंत कुमार मेघवाल ने पुरुषों की ऊंची कूद में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने 2.21 मीटर की अपनी व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ कूद की बराबरी की। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इसी प्रतियोगिता की पुरुष लंबी कूद स्पर्धा में कांस्य पदक विजेता शाहनवाज खान को बधाई दी है। आइए सुनते हैं नवीन की रिपोर्ट।
1: बसंत ने पहले 2.06 मीटर, फिर 2.12 मीटर और 2.17 मीटर की ऊंचाई पार की। इसके बाद 2.21 मीटर की शानदार जंप ने पोडियम पर उनकी जगह पक्की कर दी। टॉप 3 एथलीटों में 2.21 मीटर की ऊंचाई पार की, लेकिन काउंटबैक नियम के आधार पर बसंत ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इसके अंतर्गत अल्जीरिया के यूनिस अयाची ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि ब्रिटेन के ओटिस पूल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं शाहनवाज खान ने पुरुषों की लंबी कूद में 7.84 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद के साथ कांस्य पदक जीता। ये लंबी कूद में किसी भारतीय पुरुष का पहला विश्व स्तरीय पदक भी है। शाहनवाज ने पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए तीसरे राउंड में 7.84 मीटर की जबरदस्त जंप लगाई और फिर पांचवे राउंड में 7.83 मीटर की जंप के साथ दुनिया के बेहतरीन एथलीटों के बीच अपनी जगह और पोडियम पर अपना स्थान बनाया। इटली के इंजोली ने 7.97 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि ऑस्ट्रेलिया के मैक ग्रोडर ने 7.96 मीटर के साथ रजत पदक पर कब्जा जमाया।
0: इसके साथ ही भारतीयों ने 2021 की अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपने अब तक के सबसे अच्छे प्रदर्शन, कुल 3 पदकों की बराबरी कर ली है। प्रतियोगिता खत्म होने में अभी एक दिन बाकी है और भारत के पास टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा मेडल जीतने का रिकॉर्ड कायम करने का सुनहरी मौका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर इस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग खेलों से जुड़ते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देशवासियों से खिलाड़ियों का हमेशा उत्साह बढ़ाने की अपील की। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 39 पदक जीतकर तालिका पदक में चौथे स्थान पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ईरान ने कहा अमेरिका के साथ अभी सीधी बातचीत नहीं हो रही है, केवल मध्यस्थों के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है। रूस और यूक्रेन ने रात भर एक दूसरे पर कई हमले किए, कई नागरिकों की मौत और कई घायल। इसराइल ने गजा के लिए अमेरिका की 15 सूत्री शांति योजना को खारिज किया। डॉल्फिन तूफान चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, रेड अलर्ट जारी, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द, 3,00,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में बसंत कुमार मेघवाल ने ऊंची कूद में रजत पदक जीता, शाहनवाज ने लंबी कूद में कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: This is Akashvani. I'm Abhineet Shukla with the World News. The headlines. Iran says it is not engaged in direct talks with US currently and exchanging messages only through intermediaries.

0: Please stay tuned in for the news in Hindi.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी। श्री मोदी ने एक वीडियो संदेश साझा करते हुए कहा कि जो खेलेंगे वे आगे बढ़ेंगे और उन्होंने नागरिकों से हमेशा भारत का उत्साह बढ़ाने की अपील की। जो खेल

0: खेलेगा वो खिलेगा. ऑलवेज चीयर फॉर भारत. भारत माता की
1: जय.
0: भारत माता की
1: जय.
0: भारत माता की
1: जय.
2: इस मौके पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे. स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा. भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं. हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है. 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है.

0: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही। श्री सिंह ने भारतीय रक्षा बलों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों और उनके आकाओं का सफाया किया और भारत पर बुरी नजर डालने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1,00,00,000 मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग JPSSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। राज्य के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023-25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। आज सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ED जांच और आपराधिक मामलों की CID जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय ED के निदेशक राहुल नवीन का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। ये कार्यकाल इस महीने की 13 तारीख से शुरू होकर अगले वर्ष 13 अगस्त तक रहेगा। सेवा में ये विस्तार 31 जुलाई 2027 को उनकी तय सेवा निवृत्ति के बाद भी जारी रहेगी। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राहुल नवीन का कार्यकाल बढ़ाने को मंजूरी दी है। वे 1993 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुडे मेट द मेडल विनर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 एट हिज रेजिडेंस इन न्यू दिल्ली। ड्यूरिंग द इंटरेक्शन द मेडल विनर्स शेयर्ड देयर एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द गेम्स विद द प्राइम मिनिस्टर। इन अ सोशल मीडिया पोस्ट मिस्टर मोदी सेड that each one of them has made the nation proud through their exceptional performances and their success will motivate many youngsters. India finished at the 4th spot on the medal table at the Games held in Glasgow, Scotland between 23rd of July to 2nd of August. Indian athletes won 39 medals, including 13 gold, 17 silver.

0: and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. Along with my co-anchor Sonu Sood, I am Sarabjeet Kaur.
1: धन्यवाद सरबजीत. नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके प्रश्न इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फ़ोन कर सकते हैं, 2331-4444, 2371-0481 और 2371-7106. श्रोताओं, इससे पहले एसटीडी कोड 011 का भी डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता. आशुतोष, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
2: जी, धन्यवाद.
1: और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर.
0: Foreign portfolio investors infuse over 12,900 crore rupees into Indian equities during first week of August. Global crude oil prices tumble last week, and domestic investors to focus on inflation data, corporate earnings results and geopolitical developments for Q's next week.
1: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अगस्त के पहले सप्ताह के दौरान भारतीय शेयर बाजार में 12,900 करोड़ रुपए से अधिक का किया निवेश. कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में पिछले सप्ताह आई गिरावट और घरेलू निवेशकों का ध्यान अगले सप्ताह संकेतों के लिए मुद्रास्फीति के आंकड़ों, कंपनी आमदनी से जुड़े नतीजों और भू राजनीतिक गतिविधियों पर केंद्रित रहेगा.
0: And before we go any further in the program, may we once again remind our listeners, views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We also advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सरबजीत.
0: जी,
1: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI अगस्त के पहले हफ्ते में भारतीय शेयर बाजार में शुद्ध खरीदार बने रहे. ताज़ा डिपॉजिटरी आंकड़ों के अनुसार FPI ने इस महीने अभी तक घरेलू शेयर बाजार में 12,921 करोड़ रुपए का निवेश किया है. जुलाई में खरीदारी में आई गति अगस्त में भी जारी रही है. ये तेजी घरेलू आर्थिक आंकड़े और कंपनियों की तिमाही आमदनी मजबूत रहने के बल पर आई है. इस बीच ऋण बाजार में निवेश का रुख मिला जुला रहा है. अभी तक अगस्त में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने जनरल लिमिट की श्रेणी में ऋण प्रतिभूतियों में 622 करोड़ रुपए निवेश किए हैं. हालांकि फुली एक्सेसिबल और वॉलंटरी रिटेंशन श्रेणियों से आलोच्य अवधि के दौरान 350 करोड़ रुपए से अधिक की निकासी हुई है. और अब आज के हमारे पहले श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, चेन्नई से काशीनाथ. आपका स्वागत है मार्केट मंत्र में, सवाल पूछे.
3: गुड इवनिंग मार्केट मंत्र जी.
1: जी, गुड इवनिंग.
3: मेरा सवाल है, मेरा पास दो फ्लेक्सी कैप फंड है, जैसे कि क्वांट फ्लेक्सी कैप और जेम फ्लेक्सी कैप, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए, फंड अच्छा है कि बुरा है. धन्यवाद
2: जी. देखिए, कोई भी फ्लेक्सी कैप फंड्स काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं. फंड मैनेजर के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो किस टाइप के मार्केट सेगमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप. और किसी भी फंड को अच्छे या बुरे आकलन के लिए आप बहुत छोटे अवधि के रिटर्न्स के ऊपर उस पर अपनी कोई भी धारणा ना बनाएं. थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेंड को देखें, और अगर फंड थोड़ा हाल फिलहाल में अंडर परफॉर्म करता भी है तो उससे बहुत ज़्यादा हताश ना हो, उसको थोड़ा टाइम दें. तो आप इन दोनों फंड्स का आकलन करें, थोड़ा 3-5 साल के रिटर्न्स देखें कि अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट कैटेगरी में बाकी पीयर्स के अगेंस्ट कैसे कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप इसमें अपना निर्णय लें. बहुत जल्दी ना करें बेचने की, क्योंकि अब इक्विटी में भी टैक्स लगता है. तो अगर आप कोई भी जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं फंड स्विच करने का, तो आपके लिए एक टैक्स का बड़ा कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होता है. तो डोंट बी इन अ हरी.
1: सो आशुतोष जी, सेबी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें कुछ तथ्य आए हैं जिन पर हम आपकी टिप्पणी

0: फंड, उसमें मेरा CAGR सिर्फ 7% 8% आ रहा है, तो पिछले 4 साल से मेरा सिर्फ चल रहा है, तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा या डिसकंटिन्यू कर दूंगा, मेरा ये प्रश्न
1: जी. देखिए, पहली बात तो आपका ओवरऑल आपने आपकी स्ट्रैटेजी सही है कि आपने डाइवर्सिफाइड फंड्स को चुना है. आपके पास एक मल्टी कैप फंड है, एक लार्ज कैप फंड है, एक मिड कैप फंड है, तो ओवरऑल आपने बहुत ज़्यादा सेक्टर थीमेटिक फंड्स की तरफ आप नहीं गए हैं. ये तो इसमें मैं आपकी सराहना करूँगा कि आपकी चॉइस ऑफ कैटेगरी ऑफ फंड्स अच्छा है. एक्स इज लार्ज कैप पिछले कुछ साल थोड़े निराशाजनक रहे हैं इस फंड के लिए ज़रूर, क्योंकि परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं दे पाए हैं. तो अगर आप काफ़ी निराश हैं इस फंड से, तो आप अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन ले सकते हैं.
2: वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम दिल्ली. दिनेश जी सवाल पूछे.
3: नमस्कार, मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली अशोक विहार से.
2: जी,
3: मेरे दो क्वेश्चन हैं. एक तो ये है कि जब गोल्ड फंड और सिल्वर फंड बढ़ते हैं या कम होते हैं, तो डिफरेंट म्यूचुअल फंड हाउसेज जो है वो गोल्ड या सिल्वर फंड या ETF के जो परसेंटेज इंक्रीज है वो अलग अलग क्यों दिखाते हैं, जबकि इट शुड बी सेम. दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे गोल्ड फंड है वो उसको FOF कहते हैं, फंड ऑफ फंड्स, तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि उस हम इन्वेस्टर जो है उसके भी एक्सपेंस बियर करता है, और वो फंड जिस फंड में इन्वेस्ट कर रहा है उसका भी एक्सपेंस होता होगा, वो भी बियर करता है, क्योंकि हमें जो पता चलता है केवल फर्स्ट फंड का ही एक्सपेंस रेशो पता चलता है, दूसरे फंड का एक्सपेंस रेशो नहीं पता चलता है. थैंक यू.
1: जी, तो पहला सवाल आपका कि गोल्ड और सिल्वर फंड्स में जब सारे ही ये फंड्स गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं, तो इनके प्राइस में या इनके रिटर्न्स में डिफरेंस क्या होता है. काफ़ी अच्छा सवाल है, आपने काफ़ी आपने ऑब्जर्व किया, उस बेसिस पे आप ये पूछ रहे हैं. तो देखिए, गोल्ड ETF, सिल्वर ETF, इनका जो आपको रिटर्न मिलता है वो डिपेंड करता है मार्केट के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर. तो जो ETFs होते हैं वो ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट में, और स्टॉक मार्केट में ये ज़रूरी नहीं है कि जो अंडरलाइंग NAV है फंड का, क्लोजिंग प्राइस या फंड्स का ट्रेडेड प्राइस NAV के आसपास हो. काफ़ी बार देखा गया है कि फंड्स प्रीमियम पे या कभी कभी डिस्काउंट पर भी ट्रेड करते हैं. तो जो इन्वेस्टर के रिटर्न्स होते हैं वो इन पर उनके ट्रेडेड प्राइस पर निर्भर करते हैं, ना कि अंडरलाइंग NAV पर. तो इस वजह से इनके रिटर्न्स डिफर कर जाते हैं. दूसरी बात, जो गोल्ड फंड ऑफ फंड्स होते हैं वो बेसिकली आप देखिएगा कि हर फंड कंपनी के पास एक ETF वेरिएंट होता है और एक FOF वेरिएंट होता है. FOF वेरिएंट सिंपली ये करता है कि आपका पैसा जो कलेक्ट करता है वो उठाकर ETF में लगा देता है, गोल्ड उन्हीं का जो गोल्ड ETF होता है. तो यहां पर भी जो आपको NAV डिक्लेयर होती है फंड ऑफ फंड्स की, वो ETF के ट्रेडेड स्टॉक मार्केट प्राइस पर निर्धारित होती है. इसलिए इनके रिटर्न्स डाइवर्ज करते हैं अलग अलग फंड में. कुछ फंड्स में जिनमें ट्रेडिंग वॉल्यूम काफ़ी अच्छे होते हैं, प्रीमियम या डिस्काउंट कम रहता है, NAV के क्लोज ट्रेड करते हैं, वो काफ़ी इन्वेस्टर सेंट्रिक है, मतलब वो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात है, और उनके रिटर्न्स NAV के रिटर्न्स के आसपास रहते हैं. लेकिन जो फंड्स में ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होती है इसलिए प्राइस काफ़ी वेरी कर जाता है, प्रीमियम या डिस्काउंट पर रहता है, उनके रिटर्न्स में आपको काफ़ी बार कुछ उठापटक दिखेगी, NAV के क्लोज नहीं होगा. और आपका ये आंकलन बिल्कुल सही है कि क्योंकि FOFs ETFs में इन्वेस्ट करते हैं, तो जो FOF के एक्सपेंस की लेयर होती है वो ETF के एक्सपेंस के ऊपर होती है. ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होता है, एक मामूली सा एक्स्ट्रा लेयर होता है, क्योंकि FOF अपने आप में कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ पैसे इकट्ठा कर आप जो पैसे उसमें निवेश करते हैं वो पैसा इकट्ठा करके ETF में लगा देता है. वहाँ पे और कोई काम नहीं हो रहा है, कोई और फंड मैनेजर का ऐसा कोई रोल नहीं होता है खास, तो वो एक्सपेंस की लेयर काफ़ी थिन होती है, लेकिन ज़रूर होती है. तो अगर आप एक्सपेंस देखना चाहते हैं तो आप किसी भी फंड कंपनी के ETF का और FOF का, आप दोनों का अगर एक्सपेंस देखेंगे और उनको ऐड कर देंगे, तो आपको थोड़ा अंदाज लगेगा कि आप टोटल एक्सपेंस कितना दे रहे हैं. आपको कौन सा चुनाव करना चाहिए, देखिए, अगर आपके पास स्टॉक मार्केट में आप वैसे भी स्टॉक्स में निवेश करते हैं, आपके पास DMAT ट्रेडिंग अकाउंट है, तो आप ETF की तरफ जा सकते हैं. लेकिन सिर्फ एक गोल्ड फंड में निवेश करने के लिए, अगर आप आपके लिए कन्वीनियंट ज़्यादा होगा कि आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फॉर्मेट में FOF ही खरीदें, लेकिन अगर आप आमतौर पर वैसे भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आप ज़रूर ETF की तरफ भी जा सकते हैं. हाँ, ETF खरीदते हैं तो ज़रूर आप खरीदने से पहले देखिए कि क्या ये यूनिट्स NAV से बहुत ज़्यादा डिस्काउंट या प्रीमियम पे हैं. अगर प्रीमियम पे हैं तो आप समझिए कि आप एक्स्ट्रा खर्चा उठा रहे हैं. अगर 10 रुपये की NAV की चीज़ मार्केट में 12 रुपये पर ट्रेड हो रही है, तो आप ये मानिए कि 10 रुपये का सामान आप 20% महंगा खरीद रहे हैं. तो ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा. NSE की वेबसाइट पर हर फंड की INAV बताई जाती है. INAV होता है रियल

0: टाइम एनएवी इस फंड की क्या होनी चाहिए, उससे आप क्लोजिंग प्राइस को कंपेयर कर ये आप निर्धारित कर सकते हैं।
1: और अब शंकर भोपाल से हमें कॉल कर रहे हैं। शंकर जी आपका स्वागत है, सवाल पूछे।
2: मेरा पहला सवाल बड़ा जनरल है, क्या एक फंड हाउस में हम दो बैंक डिटेल्स ऑपरेट कर सकते हैं क्या, सो दैट मेरी जब मर्जी हो जहां से मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहूं या जिधर मैं पैसा रखना चाहूं मेरा ही अकाउंट है दोनों, क्या दो अकाउंट एक ही म्यूचुअल फंड हाउस में जैसे कोटक या टाटा या कोई भी ऑपरेट कर सकते हैं क्या। दूसरा सवाल मेरा है सर, मेरा एक्चुअली कुछ इन्वेस्टमेंट टाटा में है, टाटा म्यूचुअल फंड, और कुछ एक्सिस में है, क्या इसमें कुछ अच्छे फंड हैं जो अच्छा कर रहे हैं, जैसे मिड कैप हुआ में की कैटेगरी में हुआ या लार्ज एंड मिड कैप हुआ एक्सिस में हुआ, तो इसमें कोई अच्छे फंड एक्सिस और टाटा इन दो में मेरा, तो बता सकते हैं क्या प्लीज, थैंक यू।
0: आपका पहला सवाल, क्या दो बैंक अकाउंट में ऑपरेट कर सकते हैं सेम एएमसी में, जी बिल्कुल। देखिए म्यूचुअल फंड्स में जो भी आपका इन्वेस्टर डिटेल होता है वो फोलियो लेवल पर मैप होता है, आपकी नॉमिनेशंस, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सारी चीज़ें पर फोलियो होती हैं। तो आप अगर सेम फंड में भी दो अलग अलग फोलियो से आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये पॉसिबल है कि आप दोनों फोलियो में अगर अलग अलग बैंक अकाउंट से आपने इन्वेस्ट किया है तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है, आप बिल्कुल दो अकाउंट से मैनेज कर सकते हैं। बस ये आप ध्यान रखें कि जब भी आप किसी फोलियो में रिडम्पशन डालेंगे तो पैसा हमेशा उसी बैंक अकाउंट में आएगा जो उस फोलियो पे मैप्ड है, ये एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, क्योंकि पैसा हमेशा निवेशक के खाते में ही जाएगा और उसी खाते में जाएगा जो आपने अपने फोलियो में मैप किया हुआ है। तो आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता है मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में मैप करना, तो ये फैसिलिटी आपके पास पॉसिबल है, ये फ्लेक्सिबिलिटी और ये निर्णय आपका है। दूसरा टाटा एक्सिस, देखिए मैं आपको राय दूंगा कि बहुत ज़्यादा किसी एक एएमसी से आप के लिहाज में ना देखें, आप पहले देखिए कि आपका निवेश की ज़रूरत क्या है और किस तरह का फंड आपके लिए सूटेबल रहेगा, उसके बाद आप उस कैटेगरी के फंड्स में चुनाव करें। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये नहीं होना चाहिए कि टाटा या एक्सिस या कोई और एएमसी, स्टार्टिंग पॉइंट ये होना चाहिए कि आपकी निवेश की ज़रूरत क्या है और उसके लिए सही फंड कौन सा है, वहाँ से अपने फंड के चुनाव की शुरुआत करें।
3: लेट्स आस्क जितेंद्र फ्रॉम जयपुर व्हाट हिज क्वेश्चन इज।
4: हाँ हेलो सर, जैसे इतना दिन मार्केट में सुनने के बाद ऐसा हमको लगा कि नए निवेशक के लिए सबसे पहले कोई इंडेक्स फंड ले या एग्रेसिव हाइब्रिड फंड ले, तो क्या अगर एग्रेसिव हाइब्रिड फंड के जगह इक्विटी सेविंग ले वो भी चलेगा, और निफ्टी 50 या जैसे कोई भी इंडेक्स फंड के जगह मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ले तो क्या चलेगा क्या नए निवेशक के लिए?
0: जी पहला आपने पूछा इक्विटी सेविंग्स, देखिए इक्विटी सेविंग्स आप ले सकते हैं लेकिन आपको अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल करना होगा। इक्विटी सेविंग्स फंड में आप मानिए कि आपका करीब 35-40% पैसा ही इक्विटी मार्केट का एक्सपोजर आपको मिलता है, बाकी जो इक्विटी का एक्सपोजर इन फंड्स में होता है वो डेरिवेटिव्स के जरिए हेज्ड रहता है, तो उसमें आपको मार्केट के रिटर्न्स मार्केट गेन्स नहीं मिलते हैं। तो इक्विटी सेविंग्स फंड्स आमतौर पर कंजर्वेटिव निवेशक जो एक मॉडेस्ट रिटर्न विद मॉडेस्ट रिस्क की उनकी अभिलाषा रहती है, रेगुलर इनकम सीकर्स हैं उनके लिए इक्विटी सेविंग्स को आमतौर पर देखा जाता है कि एक अच्छी कैटेगरी माना जाता है। तो अगर आपको मॉडेस्ट रिटर्न्स चाहिए तो आप इक्विटी सेविंग्स की तरफ जा सकते हैं। देखिए शुरुआती निवेशक के लिए मेन एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स इसीलिए ही रिकमेंड किए जाते हैं क्योंकि जिन नए निवेशक हैं जिनको इक्विटी मार्केट्स के उतार चढ़ाव का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उनके निवेश करते ही अगर मार्केट 20-25% कभी गिर जाती है तो वो निवेशक काफ़ी चांस होता है कि वो हताश होकर मार्केट को छोड़कर चले जाएंगे और फिर ज़िंदगी में शायद कभी वो इक्विटी मार्केट्स में वापस मुड़कर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इस पॉसिबिलिटी से बचे रहने के लिए एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स रिकमेंड किए जाते हैं क्योंकि इनमें 25% करीब पैसा आपका डेट में लगा रहता है, तो हमेशा ही जब भी मार्केट गिरती है फंड्स मार्केट से कुछ कम गिरते हैं तो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलता है नए इन्वेस्टर्स को। बाकी ये एडवांटेज इक्विटी सेविंग्स फंड में भी मिलेगा क्योंकि उनमें तो इक्विटी और भी कम होता है, लेकिन हाँ फिर आपको रिटर्न्स भी उनसे कम मिलेगा। दूसरा आपका सवाल इंडेक्स फंड में क्या मिड कैप इंडेक्स फंड की तरफ जा सकते हैं, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए मेरी सलाह होगी नहीं, इसी रीज़न से क्योंकि मिड कैप फंड्स में काफ़ी वॉलीटिलिटी रहेगी, अगर मार्केट गिरती है तो काफ़ी धड़ाम से गिर सकते हैं मिड कैप्स, तो सिर्फ इस रीज़न से मैं आपको सलाह दूंगा कि एज अ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट मिड कैप में इन्वेस्ट करने से बचें।
1: और असम से सुकृत है हमारे अगले कॉलर, आपका बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछिए।
5: गुड इवनिंग मैडम
1: जी। गुड इवनिंग
5: जी, मेरा सवाल ये है कि हमने चिल्ड्रेन बेनिफिट फंड मतलब SBI का वो म्यूचुअल फंड SIP किया था 4,000 करके जी
1: जी।
5: तो उसमें से ये चिल्ड्रन

0: फंड ये मेरे लिए कैसे रहेगा, बच्चे के लिए मतलब सही रहेगा या नहीं रहेगा? और उसके लिए मेरे पास कोई बॉन्ड पेपर तो नहीं है अभी, तो उसके लिए कौन सा कैसे मेरे को बॉन्ड पेपर डाउनलोड करके मतलब हार्ड पेपर रखना है, यही मेरा सवाल है
1: जी। बच्चे के लिए निवेश किया है, लंबे समय का निवेश है, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। लंबे समय के लिए आप धैर्य के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक इक्विटी फंड है, आप ये मानकर चलिए कि इक्विटी मार्केट्स के उतार चढ़ाव के साथ साथ ये जब मार्केट गिरेगी तब तब ये फंड भी गिरेगा। तो अगर आप वो उतार चढ़ाव को बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं, उससे आप बहुत हताश नहीं होंगे। लंबे समय के इन्वेस्टमेंट के लिए आप रख सकते हैं। आपको एक जैसे मैं समझ पाया हूँ, देखिए म्यूचुअल फंड्स में कोई बॉन्ड पेपर इस तरह से या सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप आपको नहीं मिलता है जैसे कि बॉन्ड्स में होता है। आप म्यूचुअल फंड कंपनी जिसमें भी आपका SBI में है, तो आप SBI के इन्वेस्टर सर्विसेज में रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको एक वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ईमेल कर दें। आपके पास ईमेल पे आता भी होगा, अगर आपने अपने फोलियो में अपना ईमेल मैप किया हुआ है तो काफ़ी संभावना है कि आपका जब जब भी इसमें निवेश होता है, SIP इंस्टॉलमेंट जाती है, आपको एक स्टेटमेंट ईमेल करी जाती होगी। लेकिन अगर वो नहीं आ रही है तो आप SBI म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ आपको इन्वेस्टर सर्विस सेंटर का नंबर मिलेगा, वो नंबर डायल करके आप उनको अपना फोलियो या कुछ जानकारी वो मांगेंगे और आप उनसे रिक्वेस्ट करिएगी आपको एक स्टेटमेंट इशू कर दें, आपको वो ईमेल पे मिल जाएगा।
2: हाँ, वो बॉन्ड मांग रहे हैं क्योंकि उन्होंने अभी बॉन्ड आपको लगता है फिजिकली होना चाहिए?
1: तो म्यूचुअल फंड्स में ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं इशू किया जाता बॉन्ड्स की तरह, तो स्टेटमेंट आपका जो स्टेटमेंट होता है वही आपका ओनरशिप का एंटाइटलमेंट होता है।
3: लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम दिल्ली, विनोद जी सवाल पूछें।
4: पूरी मार्केट मंत्रा टीम को मित्र से नमस्कार।
3: जी नमस्कार।
4: मेरी एक्सपर्ट टीम से मेरा ये सवाल है कि रिबैलेंसिंग के बारे में, हम जैसे रिबैलेंसिंग करते हैं ना, तो उसमें एक तो टैक्सेशन का इशू आ जाता है और दूसरा वो जो फंड फिर हमारे सेविंग अकाउंट में आ जाता है वहां से खर्च हो जाता है, तो इसका कोई दूसरा रास्ता है कि टैक्सेशन से कैसे बचा जाए? और अगर हम लंबे समय तक रिबैलेंस ना करें तो इसका हमारी रिटर्न पे क्या प्रभाव पड़ता है? और एक सवाल और है कि अगर एक पर्टिकुलर फंड हाउस का हम स्विच करते हैं तो उसी फंड हाउस के सारे बाकी स्कीम्स दिखाता है वो, अगर मुझे किसी दूसरी फंड हाउस में जाना है तो कैसे करते हैं, स्विच करने में दिक्कत आती है?
1: जी देखिए, पहला सवाल आपका टैक्सेशन को लेकर, देखिए टैक्सेशन एक हकीकत है, आप उससे बच नहीं सकते हैं। हाँ, आपको ये देखना है कि आप रीबैलेंसिंग अगर आप डिसिप्लिन से करते हैं तो आप टैक्स से बच सकते हैं, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आप बहुत जल्दी जल्दी अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस ना करें। शायद साल में आप अगर एक बार अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं, रीबैलेंस करते हैं, तो मेरा ख्याल वो पर्याप्त है। और अपना कोई रूल बनाइए कि जब भी आपकी एसेट एलोकेशन 7-10% से डेविएट करेगा तभी आप रीबैलेंस करेंगे, और साल में एक बार करेंगे। और रीबैलेंसिंग के लिए फिर आप वही फंड्स यूज़ करिए जिनमें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की श्रेणी में आते हैं, वही यूनिट्स वही फंड्स के साथ आप करें। आपके पास 1,25,000 तक का एनीवेज टैक्स एग्जम्पशन है इक्विटी में, तो अगर आप ये सारे टूल्स यूज़ करते हैं, और उसके बाद आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि अपनी रीबैलेंसिंग को, आप अगर किसी एक साल में रीबैलेंस करना पड़ रहा है, मार्केट में इतना उठा पटक हुआ है कि आपको रीबैलेंस करना पड़ेगा, तो दो अगर आप फाइनेंशियल ईयर में कुछ आप मार्च में अगर यूनिट्स बेचते हैं, कुछ अप्रैल में बेचते हैं, तो आपको दो फाइनेंशियल ईयर का 1,25,000 रुपए का कैपिटल गेन एग्जेम्पशन मिल जाता है, तो 2,50,000 तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप की चीज़ें आप फॉलो कर अपना टैक्स मिनिमाइज ज़रूर कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपने कहा कि अगर आप रीबैलेंस नहीं करते, तो देखिए आप रीबैलेंस अगर नहीं करते, मानिए आप 70% इक्विटी 30% डेट आपने अपने लिए एसेट एलोकेशन निर्धारित करी थी जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे थे, अब अगर इक्विटी मार्केट चल पड़ती है और ये 70% जो आपका वेटेज था ये बढ़कर 80% हो जाता है, तो वो आप थोड़ा सा एडिशनल रिस्क ले रहे हैं। बस इतना ही है कि आपका उसके बाद ज़्यादा आप इक्विटी में ओवर एक्सपोज्ड हो गए हैं एज अ पोर्टफोलियो। आपकी ज़रूरत के लिए क्या वो सही है, उचित है, या आपको रीबैलेंस करना आवश्यक है, ये आपकी निजी नीड्स क्या हैं, इन्वेस्टमेंट की आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप नहीं करेंगे तो आपका रिस्क रिटर्न थोड़ा वेरी करेगा, उसको आपको देखना है।
2: अगले कॉलर है फरीदाबाद से मनिंदर। मनिंदर जी अपना सवाल पूछें।
5: हाँ सर, ये मैं जानना चाह रहा था कि स्विच आउट करने में कितना टाइम लेना चाहिए कंपनी को? सपोर्ट फोर्थ को हमने स्विच आउट किया है दूसरे फंड में, तो वो 2 दिन लगा देते हैं, तो क्या सही है?
1: जी, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में इसी तरह होता है, क्योंकि आप जिस दिन सिप से आप जिस दिन भी आप रिडम्पशन डालिएगा, तो अगर आप 3 बजे

0: से पहले रिडम्पशन डालेंगे तो उस दिन जो रात को एनएवी फंड डिक्लेयर करेगा आपके उस एनएवी पर आपकी यूनिट्स रिडीम होंगी। अगर तीन बजे दोपहर तीन बजे के बाद अगर आप रिडम्पशन डालते हैं तो अगले दिन शाम की आपको एनएवी मिलेगी, और उसके बाद एक से दो दिन जो बैंक ट्रांसफर में पैसा लगता है, अगर बीच में छुट्टी आ जाती है, शनिवार इतवार आ जाता है, तो वो दिन इसमें ऐड होंगे। तो दो से तीन दिन लगते हैं और ये नॉर्मल है।
1: All right, and now let's see how has been the movement of crude oil. Global crude oil prices declined last week following a deal between Iran and Oman to reopen the Strait of Hormuz. The two countries are also seeking to charge a fee on ships crossing the strait. During the week at the Intercontinental Exchange, ICE, Brent crude October futures plunged 5% to settle at $83.55 per barrel. West Texas intermediate crude September futures stumbled 7.7% to end at $78.18 per barrel.
2: स्टील एंड कमोडिटीज, सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में इस सप्ताह तेजी दिखाई दी। अमरीकी डॉलर में नरमी और अमेरिका के सरकारी बॉन्ड पर ब्याज दर में कमी के बीच सोने चांदी की कीमतों में बढ़त देखी गई। अमरीका के श्रम आंकड़े उम्मीद से कमजोर आने से अमरीकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में वृद्धि की आशंका कम हो गई और इससे भी निवेशकों की धारणा को बढ़ावा मिला। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर अनुबंध वाले सोने की कीमत सप्ताह के दौरान 5.9% के उछाल से 151,820 रुपए प्रति 10 ग्राम पर दर्ज हुई। इस बीच सितंबर अनुबंध वाली चांदी की कीमत 6.6% बढ़कर 231,466 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। उधर कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर अनुबंध वाला सोना सप्ताह के दौरान 7.1% की वृद्धि से $4,399.70 प्रति ट्रॉय आउंस पर पहुंचा। वहीं सितंबर अनुबंध वाली चांदी सप्ताह के दौरान लगभग 10% उछाल दर्ज करती हुई $63.49 प्रति ट्रॉय आउंस पर पहुंच गई।
1: All right, now let's take a quick look as to how the markets are expected to show up next week. The domestic investors are set to navigate a week packed with key market triggers, including macroeconomic data, quarterly earnings reports, and geopolitical developments. Markets are likely to take cues from foreign institutional investor inflows, commodity prices, and currency movements. Market participants will closely monitor monthly mutual fund data, the quarterly bulletin of the periodic labor force survey and retail and wholesale inflation prints. Globally, investors will focus on geopolitical developments surrounding the West Asia conflict, along with oil market reports from the International Energy Agency and the Organization of the Petroleum Exporting Countries.
2: कार्यक्रम का समय समाप्त होने को है, सो चर्चा को भी अब हम यहीं विराम देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, आप आए और आपने हमारे सभी श्रोताओं के विस्तृत सवालों के इतने अच्छे जवाब दिए।
0: जी धन्यवाद।
1: लिसनर्स, बिफोर वी रैप अप टुडेज शो, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन्फ्यूज ओवर 12,900 करोड़ रुपीज इनटू इंडियन इक्विटीज ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ ऑगस्ट। Global crude oil prices tumbled last week, and domestic investors to focus on inflation data, corporate earnings results, and geopolitical developments for cues next week. And that's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Until then, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.
5: Namaskar, main Delhi ki mukhyamantri.
6: Neeram 11 mani 40 nimidam Akashvani.
7: நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆகாஷவாணியின் சென்னை எஃப்எம் கோல்டு 100.1.
6: திரைகானம் முதலில் சின்னத்தம்பி திரைப்படத்துக்காக ஸ்வர்ணலதா எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் பாடியுள்ள பாடல்.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
0: इस मौके पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

0: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को ये स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही। श्री सिंह ने भारतीय रक्षा बलों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों और उनके आकाओं का सफाया किया और भारत पर बुरी नज़र डालने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज़्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1,00,00,000 मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। राज्य के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023-25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। कल सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच करेगी और आपराधिक मामलों की CID जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की बात भी कही गई है। मणिपुर पुलिस ने राज्य के कई इलाकों में घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया। इम्फाल वेस्ट जिले के खोईरुम सबल में मणिपुर पुलिस और 33वीं असम राइफल्स ने एक संयुक्त अभियान में 8 बंदूकें, 9 mm पिस्तौल, 1 दंगारोधी बंदूक और 4 हथगोला बरामद किए। एक अन्य अभियान में पुलिस ने इम्फाल ईस्ट जिले के पोर्ट शांगबंग खुनों की तलहटी में घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान 1.32 पिस्तौल तथा बंदूक और 20 हथगोले बरामद किए। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। IMD ने पूरे राज्य के लिए येलो वार्निंग जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhineet Shukla. The Har Ghar Tiranga campaign is being celebrated across the country to promote patriotism, national unity, and India's rich cultural heritage.

0: அடுத்த அந்த பாடலுடன் இரவின் மடியில் நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகிறது. தொடர்வது செய்திகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की. पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए. सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी.
2: जो खेलेगा वो खिलेगा. ऑलवेज चीयर फॉर भारत. भारत माता की
3: जय.
2: भारत माता की
3: जय.
2: भारत माता की
3: जय.
1: इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे. स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा. भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं. हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया है. 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है.

इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ

0: शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने आज़ादी की भावना का जश्न मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम वाली एक खास मेट्रो ट्रेन शुरू की है। DMRC ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न के तहत आयोजित हफ्ते भर चलने वाले कार्यक्रमों के हिस्से के तौर पर कल से इस ट्रेन की शुरुआत की गई है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने नागरिकों से गर्व के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने और डिजिटल कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का आग्रह किया। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें से करीब 1,00,00,000 मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग JPSSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। राज्य के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023 से 2025 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। कल सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच करेगी और आपराधिक मामलों की CID जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की बात भी कही गई है। पाकिस्तान में दक्षिणी वजीरिस्तान के जारमिलान इलाके में हथियारबंद हमलावरों ने 2 बुजुर्ग आदिवासी नेताओं की गोली मारकर हत्या कर दी। पीड़ित गाड़ी से जा रहे थे, तभी डोरजांडा में अज्ञात बंदूकधारियों ने उन पर गोलियां चला दी। दोनों आदिवासी नेताओं को कई गोलियां लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक हाजी गुल और मलिक बादशाह सुलेमान खेल कबीले से थे। गोलीबारी के तुरंत बाद हमलावर मौके से भागने में सफल रहे। उज्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुग पंडियन ने 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने कुल 285 किलो का भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। ओडिशा में लगातार बारिश जारी है। IMD ने पूरे राज्य के लिए येलो वार्निंग जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. The Har Ghar Tiranga campaign is being celebrated across the country to promote patriotism, national unity, and India's rich cultural heritage.

அடுத்து டி எம் சவுந்தரராஜன் பாடியுள்ள பாடல்.

பரணி.

சரி நீ தாதா, சரி நீ தாதா, சரி நீ தாதா, குழ

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
0: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने आज़ादी की भावना का जश्न मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम वाली एक खास मेट्रो ट्रेन शुरू की है। DMRC ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न के तहत आयोजित हफ्ते भर चलने वाले कार्यक्रमों के हिस्से के तौर पर कल से इस ट्रेन की शुरुआत की गई है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षाओं में कथित

अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। कल सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की सीआईडी जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की बात भी कही गई है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। ओडिशा में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस सीजन में वैतरणी नदी में तीसरी बार बाढ़ आई है। आईएमडी ने पूरे राज्य के लिए येलो वार्निंग जारी की है। भारत ने बोलीविया की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा क्षमता को मजबूत करने के लिए 8 मीट्रिक टन जीवन रक्षक और जरूरी दवाएं भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत एकजुटता और साझा प्रगति के जरिए सहयोग बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार है। संयुक्त राज्य अमेरिका के यूजीन में हुई विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में बसंत कुमार मेघवाल और शाहनवाज खान ने इतिहास रचा है। बसंत कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में रजत पदक और शाहनवाज खान ने लंबी कूद में कांस्य पदक जीता, जिससे चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या 3 हो गई। बसंत विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में ऊंची कूद में और शाहनवाज लंबी कूद में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बने। उज्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने कुल 285 किलोग्राम भार वर्ग उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
2: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
1: इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। मणिपुर भी देश के बाकी हिस्सों की तरह हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुआ। इम्फाल पश्चिम जिले के सिंगजामेई में अपने घर से इस अभियान में शामिल हुए मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद ने लोगों से अपील की कि वे खुद को पहले भारतीय और फिर मणिपुरी कहें। उन्होंने कहा कि जब तक लोग खुद को अपनी जातीय पहचान से जोड़कर देखेंगे तब तक राज्य में शांति कायम करना मुश्किल होगा। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं, जिनमें करीब 1,00,00,000 मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। कल सरकार और छात्रों के बीच हुई

वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की सीबीआई जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की बात भी कही गई है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव श्री वत्स कृष्णा ने सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय में योजना और डिजिटल परिवर्तन के उपमंत्री अब्दुल अजीज अल मथानी से मुलाकात की। उन्होंने भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए हज के अनुभव को बेहतर बनाने के मकसद से हज पोर्टल्स के तकनीकी एकीकरण पर चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने हज और उमराह मामलों के उपमंत्री अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहीम वज्जान से भी मुलाकात की और मदीना में हज यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने पर सार्थक चर्चा की। इस दौरान आवास, परिवहन, समन्वय और तीर्थयात्रा से जुड़ी अन्य जरूरी व्यवस्थाओं पर खास जोर दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के यूजीन में हुई विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में बसंत कुमार मेघवाल और शाहनवाज खान ने इतिहास रचा है। बसंत कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में रजत पदक और शाहनवाज खान ने लंबी कूद में कांस्य पदक जीता, जिससे चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या 3 हो गई। बसंत विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में ऊंची कूद में और शाहनवाज लंबी कूद में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बने। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், साथ में अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
2: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की
3: जय।
2: भारत माता की
3: जय।
2: भारत माता की
3: जय।
1: इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। मणिपुर भी देश के बाकी हिस्सों की तरह हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुआ। इम्फाल पश्चिम जिले के सिंगजा मेई में अपने घर से इस अभियान में शामिल हुए मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद ने लोगों से अपील की कि वे खुद को पहले भारतीय और फिर मणिपुरी माने। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। कल सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की सीआईडी जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की बात भी कही गई है। भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना का विस्फोटक आयुध निरोधक ईओडी अभ्यास आज से 14 अगस्त तक दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की विशेषज्ञ गोताखोरी और ईओडी टीमों के बीच अंतर संचालन को बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को मजबूत करना है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के प्रति संयम बरत रहा है

0: और फिलहाल कोई नया सैन्य हमला करने की योजना नहीं बना रहा। ट्रंप ने कहा कि ईरान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और दावा किया कि उसके पास अपने सैनिकों को वेतन देने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी ने ईरानी सरकार की आर्थिक चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। उनकी ये टिप्पणी ईरान, ओमान और अमेरिका के बीच हुरमुस जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए चल रही बातचीत के रुकने के बीच आई है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. The Har Ghar Tiranga campaign is being celebrated across the country to promote patriotism, national unity, and India's rich cultural heritage.

0: நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது பொங்கும் மங்களம். இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஃபர்ஹத் நாஸ். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
2: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की
3: जय।
2: भारत माता की
3: जय।
2: भारत माता की
3: जय।
1: इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल ने स्वतंत्रता की भावना का जश्न मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम से सजी एक विशेष मेट्रो ट्रेन का अनावरण किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डीएमआरसी ने बताया कि भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों के तहत इस ट्रेन का अनावरण किया गया। निगम ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। मणिपुर भी देश के बाकी हिस्सों की तरह हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुआ। इम्फाल पश्चिम जिले के सिंगजामेई में अपने घर से इस अभियान में शामिल हुए मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद ने लोगों से अपील की कि वो खुद को पहले भारतीय और फिर मणिपुरी माने। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों के अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। कल सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद उन्होंने बताया कि कथित अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की CID जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। उत्तराखंड सरकार ने कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 20 साल की उत्तराखंड कृषि कार्य योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना में राज्य के सभी 13 जिले शामिल होंगे। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. शिवेंद्र कुमार कश्यप को इस परियोजना का समन्वयक नियुक्त किया गया है। इस कार्य योजना में 21 मुख्य विषय शामिल होंगे, जैसे कृषि, बागवानी, पशुपालन, वानिकी, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, पलायन और रोजगार पैदा करना। पहाड़ी और मैदानी इलाकों की खास स्थितियों के आधार पर अलग अलग रणनीतियां बनाई जाएंगी। भारतीय नौसेना और अमरीकी नौसेना का विस्फोटक आयुध निरोधक EOD अभ्यास कल से 14 अगस्त तक दक्षिणी नौसेना कमान कोची में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की विशेषज्ञ गोताखोरी और EOD टीमों के बीच अंतर संचालन को बढ़ाना और पेशेवर सही

को मजबूत करना है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।